सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्र मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 सितंबर 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक समय की बात है, जंगल में एक चींटी रहती थी जो बहुत ही मेहनती थी। उसी के पड़ोस में एक टिड्डा भी रहता था जिसे गाना गाना बहुत पसंद था। गर्मियों के दिन थे, जंगल में खुशनुमा माहौल था, हर जगह फूल खिले हुए थे। जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। चींटी सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रही थी। वो अपनी साथी चींटियों के साथ मिलकर छोटे छोटे घास के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी ताकि सर्दियों के समय उसे कोई परेशानी ना हो। वहीं दूसरी तरफ टिड्डा पूरे दिन इधर उधर मस्ती करता रहता और गाना गाता रहता। टिड्डे को यूं समय बर्बाद करते हुए देखकर चींटी को बहुत बुरा लगता। आखिर कैसा भी हो, था तो वो उसका दोस्त थी। वो टिड्डे के आलस से परेशान थी और चाहती थी कि वो भी मेहनत करे ताकि सर्दियों में उसे कोई दिक्कत ना हो। यही सोचकर एक दिन चींटी ने टिड्डे को सलाह देते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है जिस वजह से यहाँ कोई फसल नहीं हो पाती, तो तुम अपने लिए अभी से अनाज क्यों नहीं इकट्ठा करते? क्या तुम्हें कल की कोई चिंता नहीं? लेकिन टिड्डा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उसे भी अक्सर कहता था कि अरे चींटी रानी, अभी तो सर्दियों को आने में बहुत समय है, थोड़ा मस्ती करो, घूमो फिरो, थोड़ा इसका मजा लो, हर समय क्या काम करती रहती हो। टिड्डे की बात सुनकर चींटी को लगा कि इससे तो बात करना ही बेकार है। ये सोचकर उसने उससे बात करना छोड़कर अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते गर्मियां चली गईं और सर्दियां आ गईं। टिड्डे ने सारा समय मौज मस्ती करने में ही निकाल दिया और चींटी ने पूरी गर्मियों में इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसकी सर्दियां बहुत आराम से कट जाए। सर्दियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही टिड्डे को एहसास हो गया कि चींटी सही कह रही थी। काश उसने उसकी बात मान ली होती तो आज उसके पास भी खाने को बहुत कुछ होता। अब टिड्डा भूख से इधर उधर भटक रहा था कि तभी चींटी ने उससे पूछा, क्या हुआ टिड्डा भाई, तुम इतनी सर्दी में बाहर क्यों घूम रहे हो? टिड्डे ने चींटी से कहा, तुम सही कह रही थी, अगर मैंने उस समय अनाज इकट्ठा कर लिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैंने पिछले 15 दिनों से कुछ नहीं खाया है और भूख की वजह से मुझे बहुत कमजोरी भी हो रही है। टिड्डी की बात सुनकर चींटी को उस पर दया आ गई और वो बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अनाज है, तुम वो खा लो, लेकिन हाँ तुम मुझसे वादा करो कि अब से तुम अपना समय इस तरह से बर्बाद नहीं करोगे और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारोगे। टिड्डी ने कहा, हाँ मुझे समझ आ गया है कि मेहनत की क्या कीमत होती है, अब मैं अपना समय कहीं भी बर्बाद नहीं करूँगा। टिड्डी को अपना सबक मिल गया था और चींटी भी उसकी मदद करके बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय रहते अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए।
0: जीवन सौरभ।
2: अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रम। अब आप सुनेंगे अक्षय निधि एक छोटे से अंतराल के बाद, और उसके बाद सुनेगा भक्ति संगीत। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। गणेश घोष इन पर आधारित होगा आज का ही कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। प्रकृति की पुकार कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। आज का विषय है मृदा, मृदा यानी मिट्टी। डॉक्टर संजीव गर्ग से फयाज की बातचीत आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे। सुबह 9 बजे सुनिए योग संवाद, देव के स्वरूप का विवेचन और सत्कर्म की प्रेरणा। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से सुनीता सिंह की बातचीत आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर विज्ञान पत्रिका भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय युवा वैज्ञानिक मनीषा चतुर्वेदी और विजयकांत नायक के स्वर होंगे कार्यक्रम में। सुबह 10 सुनिए रेडियो रिपोर्ट संभावना अहिल्या लीला नाट्य पर, रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने, और उसके ठीक बाद आनंद लीजिएगा परिक्रमा का। आजाद हिंद ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। सुबह 11 सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें, विषय होगा आज का, और विशेषज्ञ कनक जी से दीप्ति तंतुवाई की बातचीत इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। और 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब से लेकर दोपहर 12 तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद सुनिए अक्षय निधि।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र, छंद है त्रिष्टुप।
2: अपायस्मान् धसो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रयसः यस्मिन्निन्द्रः प्रदिवि वावृधान ओको दधे ब्रह्मण्यंतश्च नरः। सोमरस को परिष्कृत करने वाले ज्ञानी यजमान के द्वारा आनंद प्रदान करने के लिए दिए गए अन्न आहार को इंद्रदेव ग्रहण करें। वे इंद्रदेव तथा ज्ञानी यजमान उत्तम स्थान प्राप्त करें। अस्य मंदानो मध्वो वज्रहस्तो हिमिंद्रो अर्णो वृतम विवृश्चत प्रयद्वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनाम चक्रमंत। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों में जाते हैं, उसी प्रकार नदियों की धाराएं प्रवाहित होती हैं। ऐसे प्रवाहित सोमपान से आनंदित इंद्रदेव ने हाथ में वज्र धारण करके जल को रोकने वाले अहि नामक राक्षस को मारा था। स माहिन इंद्रो अरुणो आपाम प्रैर यदहिहाच्छा समुद्रम अजनयत सूर्यम विदद्गा अक्तुनाहनाम वयुनानि साधत। अहि नामक राक्षस को मारने वाले इंद्रदेव ने अंतरिक्ष में जल को सीधे समुद्र की ओर प्रवाहित किया। उन्हीं ने सूर्य तथा सूर्य रश्मियों को प्रकट किया, जिसके प्रकाश से दिन में होने वाले सभी कार्यों को हम करते हैं। सो अप्रतीनि मनवे पुरुणीन्द्रो दाशदाशुषे हन्ति व्रतम् सद्यो यो नृभ्यो अतसाइयो भूतपस्पृधानेभ्यः सूर्यस्य सातौ। जो इंद्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप प्राप्त करने के लिए सब दिन समान रूप से स्पर्धा करते हैं, वे इंद्रदेव दानशील मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ धनों के प्रदाता हैं। वे ही वृत्र राक्षस को मारते हैं। स सुन्वत इंद्रः सूर्यमा देवो ऋणं मर्त्याय स्तवान् आयद्रियं गुहदवद्मस्मै भरदंशं नैतशो दशस्यन्। जिस प्रकार पुत्र को पिता अपने धन का एक अंश देता है, उसी प्रकार जब इंद्रदेव को दान दाता एतश ने यज्ञ के समय अमूल्य तथा उत्तम धन प्रदान किया, तब पूज्य तथा तेजस्वी इंद्रदेव ने यज्ञ की कामना वाले मनुष्य के लिए सूर्य को प्रकाशित किया। सरंधयत सदिवाह सारथये शुष्णमशुसं कुयवं कुत्साय दिवो दासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य। उन तेजस्वी इंद्रदेव ने सारथि कुत्स के निमित्त शुष्ण अशुष कुयव नामक असुरों का संहार किया तथा दिवोदास के निमित्त शंबराशुर के 99 नगरों को ध्वस्त किया। एवा त इंद्रो चथ महेम श्रवस्या नत्मना वाजयन्तः अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः। हे इंद्रदेव, हम अन्न और बल की कामना से आपकी स्तुतियां करते हैं। आपने देवों की अवमानना करने वाले तथा हिंसक दुष्टों के हिंसाकारी कृत्यों को नष्ट किया। हम आपसे परम मैत्री भाव बनाए रखें। एवा ते गृत समदाह शूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षुः ब्रह्मण्यंत इंद्र ते नवीय ईशमूर्जम सुक्षितिम सुम्नमश्युः। हे शूरवीर इंद्रदेव, गृत समदगण अपने उत्तम संरक्षण की कामना से आपकी उत्तम एवं मनोरम स्तोत्रों के द्वारा स्तुतियां करते हैं। उसी प्रकार नए ब्रह्मज्ञानी स्तोताजन भी उत्तम आश्रय अन्न बल और सुख की प्राप्ति के लिए स्तुतियां करते हैं। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धग्भगो नो ब्रह्मद्वदेम विदथे सुवीराः। हे इंद्रदेव, यज्ञ काल में आपके द्वारा दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चय ही स्तोताओं को धन प्राप्त कराती है, अतः हमें भी स्तोताओं के साथ वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा दें जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों से आपकी स्तुतियां करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर

कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बिहार का शोरा और साम्राज्य की तोपें। एक ईस्ट इंडिया मैन जहाज के गोदाम में भारतीय रेशम की चमकदार परतों के नीचे एक और भी अधिक विस्फोटक माल छिपा होता था, साल्ट पीटर शोरा। जैसे जैसे 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के युद्ध के मैदान लहूलुहान होते गए, युद्ध की प्रगति के लिए बारूद की मांग महाद्वीप की अपनी रासायनिक आपूर्ति से कहीं आगे निकल गई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे हल करने के लिए एक शानदार लॉजिस्टिक तरकीब खोज निकाली। जहाज के निचले हिस्से को स्थिर करने के लिए बेकार लोहे के पत्थरों या बजरी को भरने के बजाय उन्होंने साल्टपीटर का उपयोग युद्ध के भार के रूप में किया। इसकी आदर्श आपूर्ति पटना के पास बिहार के मैदानों से होती थी, जहां हर भारत में कहीं भी मिलने वाली शोरे की तुलना में सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला था। यह भारी था, खराब नहीं होता था और घर की लंबी यात्रा के लिए जहाज के गोदाम के तल में वजन के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त था। जहां वस्त्रों ने फैशन दिया, वहीं साल्टपीटर ने संप्रभुता प्रदान की। कंपनी ब्रिटिश सेना की प्राथमिक आपूर्तिकर्ता बन गई, जो अक्सर सीधे क्राउन ब्रिटिश राज को भारी मात्रा में और चौंका देने वाले मुनाफे पर शोरा बेचती थी, जहां कीमतें अक्सर लागत से 4 गुना अधिक होती थीं। इस भारी रासायनिक स्टेबलाइजर के बिना कंपनी के जहाज सुरक्षित रूप से गहरे समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते थे और ब्रिटिश राज अपनी बंदूकों को लैस नहीं कर सकता था। ढाका की मलमल की सुंदरता के पीछे बारूद की ठंडी वास्तविकता छिपी थी, जिसने हर व्यापारिक यात्रा को साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक मिशन बना दिया था।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है।
3: अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का।
4: श्रोताओं, प्रकृति की पुकार में आज हम बात करेंगे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की।
2: सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
5: नमस्कार जी।
2: नमस्कार प्रवीण जी, पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
5: जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और वहीं से मैंने कुछ समस्याएं देखी थी कि एक तरफ हमें देखने को मिलता था कि जो आसुत जल है, मतलब गंदा पानी है, वो बहुत ज्यादा है, उसके प्रबंधन की समस्या हो रही है और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल है वो पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है।
2: जी।
5: तो वहीं से मैंने इस दिशा में कुछ कार्य करने का फैसला किया था और देखते देखते मैंने इस क्षेत्र में बीएससी कृषि किया, फिर एमएससी कृषि किया, उसमें पर्यावरण विज्ञान विषय लिया और फिर पीएचडी, जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है
2: जी,
5: वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहां से मैंने पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी किया, जहां पर गंदे पानी को कैसे कम किया जाए और उसका उपयोग कैसे कृषि कार्यों के लिए किया जाए, ताकि कृषि कार्यों की जो शुद्ध जल पर निर्भरता है वो कम हो, शुद्ध जल केवल पानी के लिए उपयोग किया जाए
2: जी।
5: और जितना भी गंदा पानी है, चाहे उसको एक लेवल के तक शुद्ध किया जाए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग किया जाए
2: जी।
5: कृषि में भी कोशिश ये की है हमने कि उस पानी को नॉन एडिबल, मतलब जो खाने के लिए उपयोग नहीं करना है, उसके लिए करना है। जैसे पूरे फ्लावर
2: जी,
5: फ्लावर को हम यदि गंदे पानी से भी सिंचाई करें तो उसमें कीटाणु या फिर हैवी मेटल की कोई समस्या नहीं रह जाती है। इसलिए मैंने इस तरीके से आगे बढ़ के और विगत 8 वर्षों में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में मृदा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमने खेती किसानी में कैसे किसान कम खाद का उपयोग करके, मिट्टी परीक्षण करवा के, हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी कैसे संरक्षित करे, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है आवश्यक, वो हमारे फल के जो फूड के जो चेन है उसमें आते हैं और उसी से हमें फिर पोषक तत्व मिलते हैं।
2: अच्छा जी।
5: मिट्टी की उर्वरता में भी हमारा बहुत पूर्ण योगदान है। हम केंद्र के माध्यम से नवीन कार्यक्रम करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास, लेकिन ट्रूथफुल प्रयास, एक मीनिंगफुल प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है, वातावरण की शुद्धता है
2: जी,
5: वो बनी रहे और सतत टिकाऊ का जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा योगदान करते रहे।
2: विश्व मृदा दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई?
5: कभी भी हमें अगर कोई दिन या फिर कोई विशेष अभियान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाना होता है तो निश्चित ही उसमें उस लेवल का मोटो दिया जाता है, उसे मनाने का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी एक बड़ा बेस बनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो एक जो थाईलैंड के महाराजा थे वो मृदा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते थे, तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 दिसंबर को आता है और उनका जो नाम है राजा भूमिबोल, उनके जन्मदिन को यादगार के रूप में इस दिन का चयन किया गया। उसके बाद फिर 2002 में जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस का यूनियन है
2: जी,
5: उसने भी इसको हरी झंडी दे दी कि ठीक है 5 दिसंबर को मनाना चाहिए। और आखिरी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अनुशंसा पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है
2: जी,
5: उसने इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी 2013 में। उस साल से ये विधिवत रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि जो हर 10 साल का एक कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस का
2: जी,
5: उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर सॉइल संरक्षण, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम चलाता है यूनाइटेड नेशंस। तो वो 2015 से 2025 तक हो चुका है, मतलब ये अपना 2025 जो है वो उसका 10वां साल है उस कार्यक्रम का, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस चलाता है जहां यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में 10 साल तक कार्य करने की जरूरत है, तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़े प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और उसके संरक्षण में वो महत्वपूर्ण कार्य कर सके।
2: सर, मृदा हमारे जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आप समझाएं।
5: देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भोजन में वही पोषक तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी में है
2: जी,
5: है ना। मिट्टी में वो भोजन के जो पोषक तत्व, जो भोजन पौधा जो पोषक तत्व दोहन करता है, वो ही पौधा पोषक तत्वों को अनाज में भी डालता है। अगर एक इसे उदाहरण से समझें कि अगर हम ऐसी मिट्टी का लगातार गेहूं खा रहे हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, लोहे की कमी है, तो निश्चित ही हमारे गेहूं में भी आयरन की डिफिशियंसी रहेगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी की उर्वरता और हमारा भोजन, हमारा जीवन का संतुलन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संतुलन है पोषक तत्वों के मापदंड से, वो हमेशा संतुलित बना रहना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कि कैसे ये संतुलन बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व कम हुआ तो निश्चित ही वो हमारे अनाज में भी कम होगा, और अनाज में यदि कम हुआ और उसी अनाज को हम लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। फिर हम केवल पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, क्योंकि पहले जो सिद्धांत था वो फूड सिक्योरिटी का था, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, इतना उत्पादन करना है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज जो उत्पादन है वो तो पर्याप्त है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम है, मतलब जो पोषण सुरक्षा है, जो पोषक तत्व की सुरक्षा है कि हमने अगर भोजन करा है तो हमारे शरीर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो सब उसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर हमें हमारी बैलेंस को डाइट करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वव्यापी बात आती है, हर गरीब को भी बैलेंस डाइट मिले, तो वो तभी मिल पाएगा जब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गेहूं है उस गेहूं में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहे
2: जी,
5: तभी तो पोषक तत्व सुरक्षा होगी ना
2: जी।
5: हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर ले, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे सॉइल में ही न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए ताकि जो भी प्रोडक्शन हो
2: जी,
5: वो फुलफिल करे सारे न्यूट्रिएंट्स को।
2: आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और सब इससे जुड़े हैं, शहरों में, गांवों में, तो इसके जरिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है?
5: जी, बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी तो ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है कि जो चीज पहले 10 दिन में पता चलती थी,
2: जी
5: जो जो चीज पहले 1 दिन में पता चलती थी, वो आज सेकंड्स में पता चलती है।
2: जी
5: इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जो भी अवेयरनेस है तो उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। कैसे हम सॉइल को वापस न्यूट्रिएटिव कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हमने हरी खाद का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने किसानों को लाइव दिखाया था
2: जी
5: कि कैसे हम लोग हरी खाद की फसल को 35 दिन या जो भी फसल हो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर रोटावेटर कर देते हैं, पानी चला देते हैं और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 लीटर प्रति एकड़ डाल देते हैं। तो
2: जी
5: ये जो ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा सॉइल में जाके सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको मिट्टी की जान कहते हैं, वो अगर बढ़ जाता है तो निश्चित ही हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो
2: जी
5: इस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल आसानी से वीडियोग्राफी करके भी बताना बहुत आसान हो गया है। मतलब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनाकर तुरंत ही लाइव टेक्नोलॉजी से उसको डिसिमिनेट कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सबसे हम लोग किसानों को कनेक्ट करके रखे हैं और जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो तुरंत तो उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि किसान को इजी टू अंडरस्टैंड रहे और दूसरा वो तुरंत टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ले। ये बहुत जरूरी है आज।
2: जी
5: जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इफको का वेस्ट डिकम्पोजर का भी डेमो किया था कि कैसे हम नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो हमने पूरा यहाँ डेमो बनाकर दूसरे ही दिन उसको सारे यूट्यूब फेसबुक पे डाल दिया और किसानों के फीडबैक भी आने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कम समय में हमारी जो टेक्निक है उसको किसान तक इजी वे में पहुंचा सकते हैं।
2: एक सवाल और ये निकल के आता है कि मृदा क्षरण एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
5: मृदा क्षरण देखिए एक चुनौती इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम एक तो फसल एकीकरण बहुत अपनाया है किसानों ने। किसानों की दृष्टि से यदि बात करें तो उसने फसल एकीकरण अपनाया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने भी मृदा क्षरण में बहुत योगदान दिया है। कहीं
2: जी
5: ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की बात करें या रेलवे रोड की, या फिर जो कहीं भी अगर कोई अगर सिटी बनता है
2: जी
5: तो वो सिटी पूरा आप ये मान लीजिए कि स्क्वायर किलोमीटर मोर देन दैट
2: जी
5: पूरा सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट।
2: यस
5: मतलब वहां का जो वाटर होल्डिंग या यूं कहें कि वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जीरो हो जाता है।
2: जी
5: अब पानी की इंटेंसिटी तो उतनी ही है रेनफॉल की, तो वो जितना भी पानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में गिरा है वो पूरा फ्लडिंग करके बिल्कुल स्पीड से नदी का रास्ता ढूंढेगा,
2: जी
5: है ना। जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एब्जॉर्प्शन था वो पूरा एब्जॉर्ब न होके पूरा आगे बढ़ जाएगा।
2: जी
5: इसे बहुत शुद्ध तरीके से यूं समझें कि अगर हम हमारे एक शर्ट पे पानी डालेंगे तो वो 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा,
2: जी
5: वहीं अगर 1 लीटर पानी अगर हम रेनकोट पे डालेंगे पूरा
2: जी
5: उसको रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा देगा।
2: सही
5: तो वो जो वाटर की इंटेंसिटी है और वो जो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसने सॉइल इरोजन को बहुत बढ़ाया है। मतलब
2: जी
5: सॉइल को पूरा इरोज इरोज करके बहा के अपने साथ नदी नाले में ले गया।
2: जी
5: इसी तरीके से किसान ने भी केवल एक ही फसल एकीकरण किया है। मतलब अभी अगर हम नर्मदापुरम का उदाहरण लें तो हमारे जिले में अभी 90% एरिया में गेहूं लगा है, तो
2: जी जी
5: गेहूं को धान के बाद लगाया गया है।
2: जी
5: 90% एरिया में धान भी था, तो
2: जी
5: धान को भी वही न्यूट्रिएंट चाहिए जो गेहूं को चाहिए, गेहूं को भी वही चाहिए जो धान से ले ऑलरेडी ले चुके हैं धान। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जो सॉइल में बैलेंस है वो बिगड़ जाता है।
2: जी
5: मतलब हमारी सॉइल में से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट है जिनको फसल की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि फसल को बदल के नहीं लगाया गया। तो
2: जी
5: ऐसे में किसानों को चाहिए कि जैसे अभी मैंने अगर गेहूं का उदाहरण दिया तो चना भी लगाए कुछ किसान, या
2: जी
5: फिर सेम किसान 10 एकड़ है तो इस बार 3 एकड़ में गेहूं, 3 एकड़ में चना, 3 एकड़ में मटर मसूर, इस तरीके से अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल विविधीकरण,
2: जी
5: फसल एकीकरण की जगह यदि फसल विविधीकरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
2: जी
5: इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट भी यदि होता है तो
2: जी
5: कहीं ना कहीं हमें जो इथिकल नॉर्म्स है, जो सीएसआर का जो नॉर्म्स होता है, जो इन्वायरमेंटल सिंपैथी होती है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है, तो उसमें प्रॉपर प्लांटेशन, यदि हमने कोई रोड निकाला है और उसमें प्लांट कटे हैं, तो बी इंश्योर कि उससे ज्यादा प्लांट वापस नए रोड के आउट साइड में लगाए जाए, ताकि वो जो बैलेंस में मिसमैच किया है प्रकृति का, वो वापस मैच हो जाए। नहीं
2: अच्छा
5: तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि मृदा का जो क्षरण है
2: जी,
5: वो करना आसान है, लेकिन उसको वापस रोकना या बढ़ाना बहुत मुश्किल है। हमने सुना है कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1,000 साल लगते हैं। अगर कोई चट्टान है, उस 1 इंच की चट्टान पे 1 इंच मिट्टी बनना है, तो वो 1,000 साल लगते हैं। 1,000ों साल की प्रोसेस होती है,
2: जी
5: वेदरिंग की और केमिकल ऑक्सीडेशन की, फिजिकल फिक्सेशन की, तब जाके 1 इंच मिट्टी बनती है। तो इस क्षरण पे बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है, चाहे वो किसान की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की,
2: जी
5: अर्बनाइजेशन की। तो वहां पर जो भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन या फिर जो भी अपन हरी खाद की फसल या फसल विविधीकरण है, वो सभी अपनाने चाहिए।
2: सर, मृदा स्वास्थ्य को किस तरह से मेजर किया जा सकता है?
5: जी, अगर एक किसान की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि मिट्टी दो तरीके से स्टडी की जाती है मिट्टी की। एक तो होता है पेडोलॉजी, मतलब मिट्टी कैसे बनी है, उसका विकास कैसे हुआ, और उस पे कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है, मतलब अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, सुनामी की दृष्टि से। तो ये पूरा अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो दूसरा अध्ययन होता है इडेफोलॉजी, मतलब इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता क्या है, इसको कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। किसान की दृष्टि से इडेफोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, मतलब हम मिट्टी परीक्षण से, सामान्य प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की जो भी मशीनें होती हैं, उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। तो इस तरीके से 12 पैरामीटर ज्ञात करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी की क्या उर्वरता की स्थिति है। अब अगर उर्वरता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो हमें उसमें क्या उपाय करने चाहिए, ताकि हम एक औसत उपज प्राप्त कर सकें। तो ये पूरा अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है, ताकि हम किसानों को भी बता सकें कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है, और अगर आप धान लगा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको जिंक डालना है। अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है, तो आपको उसको मृदा सुधारक के द्वारा ऑप्टिमम पीएच तक लाना है, ताकि जो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता है वो अच्छी रहे। तो इस तरीके से हम मिट्टी को जांच कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा मैंने बताया पेडोलॉजी का, उसमें ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाला अध्ययन होता है। ये जनरली जब बहुत बड़ी बिल्डिंग, जो मुख्यतः भूकंप के जोन में आती है, वहां बनाना है, या फिर बहुत बड़ा डैम बनाना है, तब वहां पर ये इडेफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, ताकि ये पता कर सकें कि वहां पर क्या बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए, या फिर करें भी तो कितने फ्लोर तक बनाना है। दैट्स इट।
2: सर, एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि मृदा की जो उर्वरता कम होने के मुख्य कारण आप किन को समझते हैं?
5: देखिए, जो मुख्य कारण है वो तो मृदा उर्वरता की, यदि खेती किसानी की दृष्टि से बात करें, तो एक किसानों ने क्या है, नरवाई का प्रबंधन सही से नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है।
2: जी
5: क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का प्रयास करूं किसानों को, अगर आज से 25 साल पहले की खेती यदि देखें, तो उसमें जो मृदा उर्वरता या फिर पोषक तत्व प्रबंधन का जो सबसे ताकतवर सिद्धांत था, वो था कि जो भी फसलों से अवशेष निकलते हैं, वो पशुओं को खिलाए जाते हैं, और पशुओं से जो भी अवशेष मल मूत्र, गोबर, उनकी त्वचा से गिरने वाले बाल, लार इत्यादि, ये सभी पोषक तत्व खाद के रूप में किसान वापस मिट्टी में डालता था।
2: जी
5: मतलब जो पोषक तत्व पौधे ने लिए हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से सारे मिट्टी में डालता था।
2: जी जी
5: अब ये कार्य किसान ने करना बंद कर दिया है। कारण चाहे कुछ भी कहें, एक तो वो नरवाई जला देते हैं, गोबर गोमूत्र की बहुत ही कमी है, पशु नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ सिद्धांत हैं,
2: जी
5: मतलब वास्तविक सिद्धांत था जो पोषक तत्व प्रबंधन का, मृदा उर्वरता का। ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल कारण कह लीजिए मृदा उर्वरता को खत्म करने का, कि उसने नरवाई का सही प्रबंधन नहीं किया, गोबर गोमूत्र नहीं डाला और फसल का एकीकरण किया। मतलब कुछ ऐसी ही फसलें बहुत ज्यादा लगातार लगाई जिनका पोषक तत्व की आवश्यकता समान थी, इसलिए मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए। भाई
2: जी जी
5: मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत था उसमें मांग ही मांग बढ़ती गई, बस
2: जी
5: उसने वो पोषक तत्व डाले कम और कुछ पोषक तत्व बहुत मात्रा में मिट्टी में आज भी है, जैसे पोटेशियम है, लोहा है, तो ये मिट्टी में है क्योंकि इनकी जिन फसलों को आवश्यकता है वो तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं लगाई गई।
2: जी
5: तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो क्षरण या उर्वरता की जो समस्या आई है उसमें ये जो दो तीन कारण है ये
2: जी
5: बहुत ज्यादा रूप से मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किए हैं।
2: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल कहेगी, जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्रण का की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है?
5: अच्छा एक प्रश्न है, या यूं कहूं कि किसानों के लिए सुझाव है कि
2: जी
5: फसल चक्रण की, यदि जैसे मैंने अभी बताया कि जब किसान फसल चक्र अपनाता है तो निश्चित ही उस चक्र की फसलों का जो पकने की अवधि रहती है वो भी अलग-अलग होती
2: जी
5: है। जैसे मैंने कहा कि कोई किसान गेहूं लगा रहा है और कोई किसान चना लगा रहा है, चना
2: जी
5: तुलनात्मक रूप से जल्दी कट जाएगा, उसकी नरवाई भी कम निकलती है, उसको पोषक तत्व भी कम लगते हैं और वो पशुओं के लिए एक टेस्ट में डिफरेंट लाने का भी काम करता है। तो ये चीज अगर हम अपनाते हैं तो किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है और नरवाई प्रबंधन में भी, और पशुओं को भी वैरायटी वाला फूड मिल जाता है। इसी तरीके से नरवाई प्रबंधन की भी यदि बात करें तो हमने उस नरवाई ने जितने पोषक तत्व मिट्टी से लिए हैं अगर वो पोषक तत्व वापस किसी भी तरीके से प्रबंधित करके मिट्टी में डाल दें तो वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है मिट्टी की उर्वरता को प्रबंधन करने का। तो
2: जी
5: इसमें सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूंगा किसानों को आपके रेडियो के माध्यम से, कि जैसे किसानों की नरवाई निकली, अभी धान की नरवाई निकली हुई है,
2: जी
5: उसको खेत के पास एक गड्ढा बना ले नरवाई के मात्रा के अनुसार, बड़ा छोटा,
2: जी
5: उस गड्ढे में नरवाई डालना है 1 फीट की परत, फिर उस पे थोड़ा गोबर का लपेटा, फिर दूसरी परत नरवाई की डाल देंगे, फिर गोबर का लपेटा, और इस तरीके से डालते जाएंगे।
2: जी
5: और अंत में जो भी आपके पास, या तो वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं अभी इफको द्वारा बनाया गया है,
2: जी
5: या फिर अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो जो ट्राइकोडर्मा वीरडी है ये भी डाल देंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत जल्दी सड़ गल कर अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और ये नरवाई का प्रबंधन का सबसे अच्छा मतलब तरीका है, इससे हम लोग केंद्र पर भी करते हैं
2: जी
5: ताकि ये जितनी भी नरवाई है वापस मिट्टी में चले जाए पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए। तो ये
2: अच्छा
5: बहुत अच्छा एक मृदा उर्वरता को संरक्षित करने का तरीका है।
2: सर, किसानों के लिए मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है और ये कब करना चाहिए, अगर आप इस पर कुछ बताएं?
5: जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो शिक्षा है उसमें हमने ये पढ़ा है, प्रोफेसर जस्टिस वान लिबिग ने बताया है कि
2: जी
5: हर पोषक तत्व का एक विशेष कार्य होता है और वो कार्य अन्य पोषक तत्व से नहीं कर सकते हैं,
2: जी जी
5: है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर जिंक की कमी से पौधों में ये विकार हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नत्रजन बहुत ज्यादा दे दिया तो अब वो समस्या समाधान हो गया, नहीं ऐसा नहीं है।
2: जी
5: इसलिए अब मिट्टी में जिंक कम है या नाइट्रोजन ज्यादा है ये पता करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना पड़ेगा।
2: जी
5: तो मिट्टी परीक्षण करवाने से हमें पता चलता है कि किस पोषक तत्व में मिट्टी बहुत अच्छी है, किसमें कमी है। तो मिट्टी परीक्षण करवाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो एक तो अप्रैल महीने होता है और एक ये नवंबर दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय एक फसल कट के दूसरी फसल लगाने की तैयारी होती है। कहने
2: अच्छा,
5: का मतलब है कि खेत खाली रहता है, तो
2: जी
5: जब खेत खाली रहता है तब मिट्टी का नमूना लेना बहुत अच्छा रहता है। इसको 3 साल में एक बार टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नमूना लेने का एक छोटा सा तरीका होता है, इस तरीके का हमने वीडियो बना के भी केंद्र के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे लें मृदा का नमूना। अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो
2: जी
5: कृषि विज्ञान केंद्र के फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप या फिर जो यूट्यूब चैनल है उस पे डालेंगे कैसे ले मृदा का नमूना, तो ये आपको मिल जाएगा।
2: अच्छा,
5: इसमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखते हैं, जैसे खेत खाली होना चाहिए, जहां ढलान वाला हिस्सा है वहां से नमूना नहीं लेते हैं, और अगर मेड़ है तो मेड़ के 2-3 फीट से नमूना छोड़कर लेना है, और खेत में यदि कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे से भी जहां चारों तरफ छांव बनती है वहां से नमूना नहीं लेते हैं। अब इसके बाद इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक जगह चयन करके वी आकृति का गड्ढा करते हैं, ऊपर से फावड़े से थोड़ी नरवाई हटाते हैं और वी आकृति के गड्ढे को 4 से 6 इंच गहरा करते हैं सामान्य फसलों के लिए, गेहूं, धान, मक्का, इनके लिए। अगर किसी को तुअर लगाना है और कपास लगाना है, गन्ना लगाना है, तो 3 फीट गहराई तक गड्ढा करते हैं। और अगर किसी को बगीचा लगाना है, आम का बगीचा, तो वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, मतलब 4 से 6 फुट तक गहराई करते हैं, और उस गहराई के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक 1 इंची मोटी परत निकालते हैं। अब इसके बाद ये एक जगह से निकल गया, इसी तरीके से 4-5 जगह से प्रति एकड़ 5 जगह से नमूना निकालकर 5ों जगहों के नमूने को एक बड़ी सी पन्नी पर इकट्ठा करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, और अगर कोई बड़ा पत्थर या कुछ बड़े लकड़ी या कंकड़ पत्थर इत्यादि है तो उनको हटा देते हैं। अब इसके 4 हिस्से करते हैं हम लोग, 2 विपरीत दिशा के रखते हैं और 2 फेंक देते हैं, मतलब हमको इसका जो मात्रा है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो 2 रखेंगे तो वो 10 किलो का नमूना यदि है तो 5 किलो बचेगा। फिर जो 2 हैं इनको अच्छे से मिलाकर 1 बनाएंगे, 1 का पुनः 4 बनाएंगे, फिर 2 रखेंगे, 2 विपरीत दिशा के फेंक देंगे तो 2.5 बचेगा, फिर 2 का 1 और 1 के 4, 4 के 2, इस तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक कि 500 ग्राम नमूना केवल शेष न रह जाए। अब 500 ग्राम नमूना हम किसान की पूरी जानकारी, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर, पूर्व लगाई गई फसल, आगामी लगाई गई फसल, ये सब जानकारी के साथ नजदीकी प्रयोगशाला में भेजते हैं परीक्षण के लिए। परीक्षण उपरांत जो हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। तो किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि कम से कम 3 साल में परीक्षण जरूर करवाएं।
2: अच्छा,
5: 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। 3 साल तक एक परीक्षण मान्य रहता है, उसके बाद फिर पोषक तत्वों में बदलाव हो सकते हैं, तो 3 साल में एक बार नमूना परीक्षण करवाना चाहिए।
2: रासायनिक उर्वरकों जो हैं उनके उपयोग से मृदा पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं?
5: निश्चित ही, क्योंकि देखिए रासायनिक उर्वरकों में अगर हम देखें तो किसी भी उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा होती है, है ना। जैसे अपन यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी जो होता है 54% वो फिलर मटेरियल होता है, मतलब एक तरीके से वाहक मटेरियल कह सकते हैं उसको। तो वो जब मिट्टी में धीरे धीरे जाता है तो वो मिट्टी में जमा होने लगता है।
2: जी जी,
5: उसकी मात्रा धीरे धीरे मिट्टी में विकार उत्पन्न करती है, या यूं कहें कि अम्लीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है या क्षारीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है। कुल मिला के मिट्टी में एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, और जब उसकी निश्चित मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो मिट्टी में अति विकार उत्पन्न होता है।
2: जी जी,
5: ये जो पोषक तत्व भी होते हैं ये बहुत ज्यादा मिट्टी में एकदम से प्रभाव डालते हैं। जैसे हमने यूरिया डाला तो कुछ दिन तक मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और अगर एक ही तरीके का हमने उर्वरक डालते गए तो वो जैसे यूरिया है मिट्टी में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, डीएपी है मिट्टी में क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, तो अगर हमने केवल यूरिया बहुत ज्यादा डाला है तो वो धीरे धीरे अम्ल हो जाएगा। अब अम्ल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पीएच मान है वो निर्धारित करता है कि सभी पोषक तत्व किस अनुपात में पौधे को मिलेंगे।
2: जी,
5: अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो कुछ पोषक तत्व तो पौधा ले ही नहीं पाएगा, एक तरीके से मिट्टी बीमार पड़ जाएगी और वो पौधे को पोषक तत्व अवशोषित नहीं करने देगी, क्योंकि हर पोषक तत्व पौधा तभी ले पाता है जब वो आवेशित अवस्था में आता है।
2: जी जी,
5: हमने पढ़ा है हम शिक्षण संस्थानों में कि जो नाइट्रोजन है उसको सभी पौधे नाइट्रेट रूप में लेते हैं, NO3-, मतलब NO3-, अगर धान की बात करें, आलू की बात करें, तो वो अमोनिया रूप में लेते हैं, NH4+। अब अगर ये आवेशित अवस्था में आने का कार्य अगर किसी के द्वारा प्रभावित होता है, किसी रासायनिक केमिकल के द्वारा, तो निश्चित ही पौधों पर भी इसका प्रभाव दिखता है। और ये हमारे पौधों की जो उपलब्धता है या पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो पौधे के लिए प्रभावित होती है और हमारा पौधा फिर अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाता है। इसलिए रसायनों का बहुत ही लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो वास्तविक प्रबंधन का सिद्धांत है, नरवर प्रबंधन का, गोबर प्रबंधन का, हरी खाद का, फसल चक्रण का, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ भी मैं रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जो लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जीव होते हैं उनका उपयोग भी करने की सलाह दूंगा किसानों को। जैसे उदाहरण के लिए हम यूरिया की जगह अगर धान और गेहूं की फसल है तो एजेटोबैक्टर से बीज उपचार करना चाहिए। चना और अगर तुवर और मूंग की फसल है तो राइजोबियम से बीज उपचार करना चाहिए। ये जो लाभदायक जीव हैं ये वातावरण की नत्रजन को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं ताकि इन फसलों को यूरिया के नत्रजन की आवश्यकता न पड़े। इसी तरीके से जो फास्फोरस घोलक जीवाणु रहता है वो यदि उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए तो यूरिया और डीएपी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जिंक सोल्विलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटेशियम सोल्विलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन पे किसानों को वापस थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि जो पोषक तत्व प्रबंधन का जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल है, मतलब समन्वित सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके हमको पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए।
2: मृदा संरक्षण के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
5: जी। एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी 2014 से, मतलब अभी भी वो चल रही है बहुत ही व्यापक स्तर पर, है ना। तो इसमें किसानों की जो मिट्टी का जो परीक्षण है वो इस योजना के माध्यम से करके दिया जाता है और किसानों को अवगत कराया जाता है कि आज आपकी मिट्टी की ये स्थिति है, आपको अगर इस फसल का इस मात्रा में उत्पादन लेना है तो आपको ये पोषक तत्व डालने पड़ेंगे और इस तरीके से गोबर की खाद, इस तरीके से पीएसबी, एनपीके, ये सब डालना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाता है जिसमें एक तो पूरे किसान की जानकारी रहती है, दूसरा 12 पैरामीटर जो होते हैं, 12 पैरामीटर में पूरे किसान की जो फर्टिलिटी का स्टेटस है वो डाल रहता है। तीसरा मुख्य बिंदु रहता है कि अगर इस 12 पैरामीटर या फिर मृदा उर्वरता के हिसाब से किसान को गेहूं लगाना है तो कितना एनपीके, कितना गोबर की खाद, कितना पीएसबी, राइजोबियम डालना पड़ेगा। मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मिट्टी की उर्वरता से लेके किसान की जानकारी से लेके जो आगामी फसल लगाना है उसमें कौन सा पोषक तत्व किस उर्वरक से डालना है, ये सब जानकारी उसमें रहता है। दूसरा अगर योजना में बात करें तो ये तो एक विशेष योजना हो गई। उसके बाद भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, इससे किसानों को प्रेरणा मिलती है कि हमारी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो किन किन कारणों से कम हो रही है, अगर हमको इसको संरक्षित करना है तो क्या क्या कारण करना है, और अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सब जानकारियां विविध योजनाओं के माध्यम से या फिर अन्य योजना के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं ताकि ये जो मिट्टी की उर्वरता है ये लगातार बनी रहे और टिकाऊ तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी उसी गुणवत्ता वाला अनाज उत्पादित करके प्राप्त हो सके।
2: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है, आप लोग क्या कुछ करते हैं, क्या ट्रेनिंग्स देते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में स्टूडेंट्स को लेकर, या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए।
5: देखिए, किसी भी अगर उत्पादन की बात करें, मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल बेस आता है वो मिट्टी ही होता है। तो निश्चित ही हमारा केंद्र भी इसको बचाने या इसकी उर्वरता को संरक्षित करने में अग्रणी योगदान निभा रहा है। एक तो हम यहाँ से कुछ मॉडल तैयार करके किसानों को बताते हैं कि हमने ये करके देखा है, आप भी कीजिए। जैसे एक तो हरी खाद का प्रयोग हमने करके देखा है कि जैसे हमने पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया, एक की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैविक कार्बन 0.5 था, हमने उसमें 3 बार हरी खाद की फसल लिया और उसका जो जैविक कार्बन है वो 0.75 तक हो गया।
2: जी
5: मतलब नरवाई प्रबंधन या फिर ये जो हरी खाद की फसल है इससे हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि कैसे रासायनिक केमिकलों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हमने केंद्र पर फास्फोरस बाहुल्य जैव खाद मतलब प्रोम का निर्माण शुरू किया ताकि किसानों को यूरिया का और डीएपी का विकल्प उपलब्ध हो जाए। इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक तरल जैव उत्पादन इकाई है जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पीएसबी, माइक्रोबियल सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब किसानों को हम लोग कम से कम लागत में उपलब्ध करवाते हैं ताकि देखिए किसान के पास जब तक विकल्प नहीं रहेगा वो यूरिया डीएपी की लाइन में ही लगा रहेगा। हमें किसान को यदि कहना है कि यूरिया नहीं डालना है तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि ये डालना है। इसी तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है धान की फसल में एजोला का उपयोग।
2: जी
5: तो धान को तो वो नाइट्रोजन देता ही है, साथ में जब ये धान कट जाती है तो रोटावेटर से जो एजोला मिला दिया जाता है मिट्टी में वो पूरा नरवाई का जो पोषक तत्व प्रबंधन का है वो कार्य करता है। मतलब एजोला में जितना भी बायोमास रहता है वो मिट्टी की जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रत्यक्ष हमारे मॉडल हो गए, बाकी इन मॉडल को डिसिमिनेट करने के लिए हम लोग समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें किसानों को मिट्टी को कैसे संरक्षित करें और जो भी केंद्र पर प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कैसे किसानों को इजी वे में बता पाए कि ये आप भी कीजिए, नरवाई प्रबंधन है या फिर हरी खाद को डालना है, कम गोबर में भी कैसे अच्छा खेती करें, ये सब जानकारी हम किसानों को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।
2: जी प्रवीण जी, आपने इतनी से चर्चा की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है और आपने रेडियो आजाद हिंद को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जी नमस्कार।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार अभी आप सुन रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे मृदा यानी मिट्टी की यानी माटी की,
2: जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर प्रवीण सोलंकी कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर नर्मदापुरम में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का और आपके साथ था मैं फराज फैयाज। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन की राह में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने मन ठिठक कर पूछता है, ये क्या था? हमारा कर्म, हमारी नियति या कुछ और? हम अक्सर उस शक्ति को जो हमारी समझ से परे है दैव कह देते हैं और फिर अपने प्रयासों को उसके सामने छोटा मान बैठते हैं। लेकिन योग वासिष्ठ दैव को केवल भाग्य की रेखा मानकर स्वीकार करने के बजाय उसके स्वरूप पर गहराई से विचार करता है। ये ग्रंथ हमें उस दृष्टि तक ले जाता है जहाँ दैव कोई ऐसा आदेश नहीं जिसके सामने मनुष्य विवश होकर बैठ जाए, बल्कि जीवन में हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे संकल्प और हमारी चेतना सब मिलकर उस दिशा का निर्माण करते हैं जिसे हम कभी कभी दैव का नाम दे देते हैं, और यहीं से जन्म लेती है सत्कर्म की प्रेरणा। क्योंकि यदि हमारे कर्म ही जीवन की धारा को दिशा देते हैं तो हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को अधिक निर्मल, अधिक सार्थक और अधिक कल्याणकारी बनाने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है, तो आज योग संवाद में आइए योग वासिष्ठ के इसी गहन संदेश की ओर चलें कि दैव वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप क्या है और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार अधिक उज्जवल बना सकता है। आइए समझें कि दैव को जानने की यात्रा अंततः हमें कैसे अपने कर्मों को पहचानने तक ले जाती है, और ये भी कि सत्कर्म केवल जीवन को बदलने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी है। आज इस चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: पिछले अंक में बहुत ही रोचक चर्चा रही और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी पुरुषार्थ की और प्रारब्ध की, और कई बार पुरुषार्थ को देखकर कर्म करना मनुष्य बंद कर देता है। तो जब उद्योग का नाश होता है या कर्म से मनुष्य विरत होता है तो उसका परिणाम क्या होता है?
2: उसका परिणाम ये होता है कि वो फिर अपने पुरुषार्थ, जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता है, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दैव के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं और आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है।
1: तो
2: ऐसे में बार बार इस बात के लिए वशिष्ठ जी राम को प्रेरित कर रहे हैं कि राम, ये विभिन्न लोगों को जो देख करके आपके अंदर ये वैराग्य आया है कि ये कर्म से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभीष्ट है ये इनका प्रयत्न तो है, लेकिन जो पूर्व के जो कर्म हैं, ये कर्म भी वर्तमान में आने वाले परिणामों में अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाते हैं।
1: जी जी।
2: इसलिए कई बार हम लोग अच्छा करने के बाद भी उस कर्म के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं करते और कहते हैं कि शायद हमारे में कोई कमी रह गई। नहीं, ये भाव भी हमारे चित्त में न आए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये भाव भी आएगा तो फिर हम कर्म करने में जो कुशलता है वो बाधित होगी।
1: जी जी।
2: तो इससे वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पूर्व का जो कर्म जिसे प्रारब्ध कर्म कहा गया उसकी भी भूमिका हो सकती है या होती है। तो इसलिए आप फोकस किसी चीज पे होइए तो सिर्फ कर्म पर होइए। कर्म ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप कर्म फल को बदल सकते हैं। कर्म फल कभी भी नहीं बदलता बिना कर्म में परिवर्तन के। कहा भी जाता है कि जो आप आज कर रहे हैं अगर वही आप कल भी करेंगे तो कल भी वही प्राप्त होगा जो आज प्राप्त हुआ है।
1: बहुत ही सुंदर बात, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिणाम बदले, आप मनचाहा परिणाम पाएं, तो निश्चित ही आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिन कर्मों के द्वारा आप मनचाहे परिणाम की सिद्धि कर सकें।
1: बहुत ही सुंदर संदेश ये हो गया। देखिए, कई बार होता है ना कि मनुष्य कहता है कि साल हो गए, बरस बीत गए, हमारा जीवन वैसा ही चल रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, लेकिन देखने की जरूरत यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, आपके कर्मों में क्या परिवर्तन
2: क्या परिवर्तन हुआ। बिल्कुल,
1: अगर आपकी दिनचर्या में आपके कर्म में परिवर्तन होगा तभी फिर जीवन में परिवर्तन होगा
2: जी।
1: तो ये बात वहां भी जाकर जुड़ती है।
2: एक सामान्य बात देखिए ना कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो हर आदमी अच्छे परिणाम का मतलब अपेक्षा लेके बैठा है, लेकिन जब उससे पूछो, उसी से पूछो कि जिस परिणाम की कामना आप करके बैठे हैं या जिस परिणाम के प्राप्त होने पर आपको आनंद होगा उस परिणाम को पाने के लिए क्या कर्म जो आप कर रहे हैं ये संतोषजनक है, वही कह देगा कि नहीं है।
1: नहीं है, बिल्कुल।
2: वो इस बात को भी जानता है कि हमारा कर्म इस योग्य नहीं है कि हम उस परिणाम को हासिल कर सकें, लेकिन वो परिणाम को पाना चाहता है और कर्म पर जोर लगाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से फिर वो परिणाम नहीं मिलता, उसके जीवन में दुख आता है।
1: सारा श्रम कामना में है, कामना करता है, श्रम के लिए, मतलब कर्म की तरफ उसका रुझान नहीं है। अच्छा, मन और शरीर कैसे काम करते हैं इसकी भी चर्चा मुझे नजर आई थी अंक में, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी भी व्याख्या आप करें
2: जी। साक्षी जो चेतना है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, चाहे वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो, चाहे माइंड कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो, किसी भी प्रकार की जो चेतना है वो चेतना मूल रूप से साक्षी है। तो चेतना में पहले जैसे विषय की अनुभूति होती है वैसी ही वो चेष्टा करता है। चेतना में जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी वैसे ही वो चेष्टा करेगा।
1: अच्छा।
2: ये इस विज्ञान है, आप देखें।
1: अच्छा।
2: तो अब मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है और शरीर की क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। यानी मन जैसा विचार करता है वैसा ही शरीर व्यवहार करता है। इसको महात्मा बुद्ध भी कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम हो जाते हो,
1: हो जाते हो।
2: तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन लाना होगा विचार में। इसीलिए इस ग्रंथ में विचार का भी बहुत बड़ा महत्व है कि सद विचार होने चाहिए। आप खुद ही जो कर्म कर रहे हैं और जिस परिणाम को आप पाना चाह रहे हैं इसको अगर आप शांतिपूर्वक विचार पूर्वक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच भेद है। और वो भेद जब तक वो गैप भरेगा नहीं तब तक आपको पूर्णता की ना प्राप्ति होगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना सुखी हो पाएंगे। जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो जीवन की विडंबना यही है, हमारी चाहना और हमारा कर्म इन दोनों के बीच का योग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कभी दुख का भी वियोग नहीं होता, दुख बना होता है हमेशा।
1: जी, जी।
2: तो योग जो है वो दुख के संयोग का वियोग कराता है, गीता में भगवान ने कहा।
1: जी, जी।
2: और ये तभी होगा जब दुख का संयोग जिन कारणों यानी जिन कर्मों से हो रहा है उन कर्मों को परिवर्तित किया जाए, तो निश्चित ही परिणाम अपने आप बदल जाएगा। तो मन के अनुसार शरीर व्यवहार करता है और वही व्यवहार फल की सिद्धि का कारण बनता है। तो लोक में जहां जहां जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहां वैसे वैसे पौरुष के उपयोग के द्वारा लौकिक वैदिक फल की भी सिद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो साक्षी चेतना है उसमें जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी उसी तरह के विषय के अनुसार जो है मन में विचार आएगा और उसी विचार के अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी। ऐसा कहा भी है इन्होंने कि मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वही तो पौरुष है। अब आप देखिए कि आपका पौरुष आपके पुरुषार्थ के नष्ट करने पर लगा है। पौरुष का मतलब यह भी है कि आप कहने संकल्प कर लें कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को नहीं करने में लगा दिया। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ कि आप जीवन में अच्छा चाहेंगे नहीं। आप नहीं करेंगे ये संकल्प आपने ले लिया, लेकिन आपके जीवन में बुरा हो या आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जीवन में अच्छा हो, लेकिन मैं कुछ अच्छा न करूं ये नहीं संभव हो सकता। तो इसलिए बार बार यहाँ पर वशिष्ठ जी इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप अपने प्रयत्न को करें और प्रयत्न के द्वारा जो है आप संसार में जो कामना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो सकती है।
1: तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जिस तरह का हमारा विचार होगा उसी तरह का हमारा कर्म भी हो जाएगा, इससे उसका परिणाम निर्धारित होगा।
2: महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यराजों के गुरु बने हैं।
1: अच्छा।
2: तो बिना पुरुषार्थ के इस संसार में अगर कोई किसी प्रकार के फल की कामना करता है तो ये निहायत ही बेमानी होगी और ये कभी भी संभव नहीं है। आपको बिना पुरुषार्थ के आप चाहें कि मनचाह परिणाम पालें ये संभव नहीं है।
1: अच्छा, ये बताएं कि संपूर्ण शास्त्रों का सारांश क्या है।
2: जी, संपूर्ण शास्त्रों का सारांश वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अभ्यास और गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि की जा सकती है और यही जो है संसार में समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है कि कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए, यही सारे शास्त्र कह रहे हैं
1: जी,
2: कि आपको हमेशा प्रयत्न शुभ कर्मों के प्रति, यानी जो कर्म आपको शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करे
1: जी,
2: उस पर ध्यान देना है।
1: और
2: जहां जहां भटकाव की स्थिति है, जहां आपको लगता है कि ऐसा करके, और एक बात और देखिए कि अगर हम निरपेक्ष होकर के अपना आत्मन्वेषण करें
1: जी,
2: तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
1: बिल्कुल ये सच है।
2: लेकिन हम हमेशा दूसरों से अपनी पुष्टि चाहते हैं या दूसरे हमको नया नया चीज बताने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिसको गोस्वामी जी कहते भी हैं कि उपदेश कुशल बहुतेरे पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। तो जितना भी आदमी के पास बुद्धि है, वो सब वो दूसरों को ठीक करने में लगाने में लगा है। उस बुद्धि का तनिक भी उपयोग अपने को ठीक करने में,
1: ठीक करने में नहीं
2: नहीं लगाना चाहता। आप देखें जगत में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट लेके लोग बैठे हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या है, तो शायद वो मौन हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बदलाव हमेशा अपने आप से शुरू करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी मूर्ता लोगों में है कि लोग सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। सच ये है कि जब आप बदलते हैं तो दुनिया में बदलाव की संभावना होती है। जितने भी महापुरुषों की कहानी है, वो कभी भी आप देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको बदलने के लिए नहीं, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने खुद में किया है।
1: बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि अगर आप दुनिया को बदलने चले तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है
2: जी।
1: तो आपने बताया कि शास्त्रों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और प्रयत्न, ये संपूर्ण शास्त्रों का सारांश है।
2: हाँ, ये जो तीनों जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो होगा, अशुभ कर्म से आप अपने चित्त को हटाएंगे और शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाएंगे, तो फिर ऐसे में परिणाम तो फिर शुभ होगा ही होगा। तो इसके लिए ये तीनों की जरूरत है। गुरु का मतलब यहाँ ये भी ध्यान रखें कि ऐसा गुरु जो शास्त्रों में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का वो सजीव रूप हो। इसीलिए देखिए गुरु के जो पदचिन्हों की पूजा हम करते हैं, गुरु चरण की बात हमेशा होती है। तो गुरु चरण का मतलब क्या है, लोग कहते हैं कि आपके पदचिन्ह बता रहे हैं कि आप क्या हैं। तो जो ज्ञान हम दूसरों से सुन रहे हैं, वही ज्ञान जब गुरु देता है तो वो ज्ञान हमारे जीवन में अंगीकार क्यों होता है, क्योंकि गुरु उस ज्ञान के अनुसार उसी पथ का अनुगामी होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसका कुछ और है और कर्म कुछ और है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसे अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया जाए। साफ। अब आप सोचिए कि आप दर्पण के धूल साफ करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल से मन का दर्पण साफ करो।
1: इसका
2: मतलब ये हुआ कि गुरु के चरण की धूल जो है वो पदचिन्हों की तरफ इशारा कर रही है कि गुरु जिस राह का अनुगामी है, जिस तरफ चल रहा है, क्योंकि वो सदचिंतन करता है, सदव्यवहार करता है। और संसार के लोग हो सकता है सद की बात करते हों, सदविचार तो करते हों, लेकिन सदकर्म नहीं करते हों। तो गुरु सदकर्मी होता है, इसीलिए वो प्रेरक है। और अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, क्योंकि बच्चे में देवत्व का जो विकास है वो माँ और पिता के द्वारा आएगा, और उसके बाद जिस आचार्य के पास जाता है उस आचार्य में भी देवत्व होना चाहिए, आचार्य देवो भव। तब वो दैवी गुणों से संपन्न होगा, और दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही वो शुभ कर्म का कर्ता बनेगा। शुभ कर्म का कर्ता बनेगा तो शुभ फल की प्राप्ति भी करेगा, जीवन में संतोष भी होगा, शांति भी होगी। तो ऐसे में ये बात बताई गई, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि दैवी और आसुरी संपदा ये हर मनुष्य में है। भगवान गीता में कहते हैं कि दो तरह की संपदाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके अंदर पहले तो देवत्व का खुद विकास होना चाहिए। आप सामान्य जीवन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक जीवन को जन्म दिया। अब वो जीवन किन पदचिन्हों पर चलेगा और उस पर चल करके सुरक्षित पल्लवित और पुष्पित होगा, वो पदचिन्ह तो आप ही के द्वारा निर्धारित करने
1: पड़ेंगे। और अक्सर मातृ देवो भव पितृ देवो भव को जिस अर्थ में लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि माँ जो है वो देव है, पिता देव है, जबकि भव की बात,
2: भव की है, बनो
1: बनो
2: है, हो नहीं तुम,
1: वो है नहीं, बनने की बात है। तो ये भी संदेश है उसमें।
2: संदेश है जी।
1: जी जी। अच्छा, तो आपने सत्कर्म सद्बुद्धि की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो सद्बुद्धि है वो विकसित कैसे होती है।
2: सद्बुद्धि विकसित होती है सदशास्त्रों और सत्संग के सेवन से। बिना इसके जो है आप सद्बुद्धि के साथ नहीं हो सकते, दुर्बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि विषय जो है वो हमेशा आपके इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा। तो विषयानुगामी जो लोग हैं वो दुर्बुद्धि के शिकार होंगे, इन किन प्रकारेण उन विषयों की प्राप्ति में लग जाएंगे। सद्बुद्धि जो है आपको विवेक देगी, विवेक के द्वारा आप सदका चिंतन करेंगे और सत्संग कर पाएंगे। सत्संग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बैठ के सद चर्चा सुने, ये नहीं है। शब्द देखिए, शब्द ये कह रहा सत्संग, संग कि सत का संग करो, यानी सत के साथ आप रहो, सत व्यवहार में लाओ।
1: जी, जी,
2: लेकिन
1: जी।
2: हम लोग सत्संग सिर्फ वाणी मन वचन से करना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
2: कर्म
1: बिल्कुल।
2: से नहीं। जब तक सत कर्म में नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा।
1: तो सत के साथ रही,
2: सत के साथ रही,
1: बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है, इसमें श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न थे जो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखे और जिसका निराकरण वो कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखे हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो।
2: अच्छा, बिल्कुल
1: जी।
2: वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि श्री राम, बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर

0: पूरा परिणाम बदल देने, यानी पूरी आपकी जो कह सकते हैं जो आपने अर्जित किया है, चाहे प्रारब्धवश और चाहे अपने प्रयत्न से, वो पूरा परिणाम बदल देने का सामर्थ्य रखता है आपके सदसंकल्प और सदकर्म के द्वारा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि बताओ कौन दैव की प्रतीक्षा किए हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष के प्रभाव से ब्रह्मणत्व प्राप्त किया। जो विश्वामित्र आपको लेने आए हैं, ये अपने पौरुष से जो ब्रह्मऋषि बने हैं, राजर्षि से ब्रह्मऋषि का इन्होंने यात्रा की है, ये पौरुष का परिणाम है और किसी साधन से नहीं मिला है इनको। अब ये दैव के भरोसे बैठ जाते तो ये सिद्ध होता क्या?
1: नहीं होता।
0: तो कहते हैं राम जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देव पुरुष जो पराक्रमी है, बुद्धिमान है, पंडित है, वो दैव की प्रतीक्षा में रह करके अपने उन गुणों को विकसित किया है। वो जो कुछ भी किया है वो प्रयत्न से सिद्ध किया है, यानी क्रियमाण जो आपका वर्तमान का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि हुई है, इसलिए पुरुषार्थ ही करने योग्य है। और दैव का जो है सहारा लेना, मैं समझता हूं कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, दैव भी पूर्व का पुरुषार्थ है, न कि कोई ऐसी घटना जो अनायास घटी।
1: अनायास घटी है, बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न श्री राम के समक्ष रखा और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम ने एक जिज्ञासा रखी कि दैव क्या है, जो लोक में प्रचलित है। तो इसे समझाइए कि वशिष्ठ जी ने कहा क्या।
0: श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, वह दैव क्या है, किसे कहते हैं दैव? ये राम जी कहते हैं, क्योंकि लोक में तो राम जी भी देख रहे हैं ना कि दैव भरोसे लोग बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, जब विनय कर रहे हैं राम जी, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये लोक प्रचलन में तो है, तो इसको बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है, उसी को दैव शब्द कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल भोग है, चाहे वो शुभ हो
1: चाहे वो अशुभ हो,
0: तो ऐसे में वो किसका परिणाम है? वो कर्म का परिणाम है। लेकिन उस फल को लोगों ने दैव नाम दे दिया। तो हम लोगों ने कर्म फल को दैव नाम दे दिया, जबकि कर्म फल कर्म के अधीन है, दैवाधीन कर्म नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: कर्म के अधीन जो फल है उसको हम दैव कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं, उसी को दैव कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है, उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यंभावी फल है, वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है।
1: जी। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने की। और देखिए कर्म की इतनी बात हुई कि कर्म से ही सारे समाधान है। तो मन में एक सहज प्रश्न आता है कि मनुष्य के कर्म का निर्धारण कौन करता है?
0: क्या बात है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले से अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक, वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई हैं। मन की जो वासनाएं हैं, वही आपके शरीर के कर्मों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, और शरीर में जो आपकी स्थिति है वो उस रूप में वो परिणत होती हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है। अब आप देखिए किसी व्यक्ति के कर्म से उसके मतलब चित्त की वासना या उसके मन की वासना को भी आप आसानी से जान सकते हैं। वो कोई और कर्म कर ही नहीं सकता जो उसके मन की वासना से अलग हो।
1: बिल्कुल।
0: अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा घोष है ये कि मन में जो वासनाएं होती हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है वो भी मन की वासनाओं की वजह से है, तृष्णा की वजह से है, कि मन में तृष्णा रह जाती है, इस नाते उस भोग के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। अगर तृष्णा शांत कर दी जाए तो फिर जन्म मरण का जो भवरोग जिसको आप पूछा था, तो वो भवरोग से मुक्ति मिल जाएगी। भवरोग जन्म और मरण ही है मूल रूप से देखें
1: जी,
0: तो।
1: जी जी जी। अच्छा, मन की बात इतनी हुई तो ये बताएं कि मन की कितनी संज्ञाएं हैं, कितने नाम हैं?
0: वशिष्ठ जी कहते हैं मन को विभिन्न नामों से या विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा कहा गया है। मन को चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की ही संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।
1: चित्त वासना
0: कर्म, दैव और निश्चय, ये सब मन की ही संज्ञाएं हैं, जिसको व्यक्ति कठिनता से समझता है, लेकिन है ये सत्पुरुष कहते हैं ये सब मन के ही विभिन्न नाम हैं, क्योंकि ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय भी आप मन से करते हैं, कर्म भी बिना मन के नहीं होता। दैव जो कह रहे हैं आप फल, वो फल भी किसी कर्म का ही परिणाम है, तो वो भी मन का ही हिस्सा है। चित्त में जो साक्षी चेतना है, उस चेतना में जो विषय का चिंतन होता है, उसी विषय के अनुसार मन विचार करता है और उस विचार के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो ऐसे में मन और शरीर का दोनों का गहरा संबंध है। तो शरीर के द्वारा जो कर्म होता है या चित्त में जो वासनाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं मन की ही संज्ञाएं हैं, उसको एक रूप में मन का नाम दिया जा सकता है।
1: अच्छा, अभी हमने बात की कि कर्म का निर्धारण वासना से होता है, तो वासना का बहाव किस तरह से होता है?
0: वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा शुभ कर्म की तरफ लगाए और अशुभ मार्ग से हटाए। तो वासना का जो बहाव है वो देखें तो वो शुभ और अशुभ, इसलिए देख सकते हैं वासनाएं दो प्रकार की मानी गई हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना। अब ये दोनों किसी न किसी फल की वासना में हमेशा फल की कामना होगी, क्योंकि फल तो रहेगा ही, तभी तो शुभ कर्म करके आप शुभ वासना की पूर्ति करेंगे और अशुभ कर्म करने लगे तो अशुभ वासना की पूर्ति होगी। तो ऐसे में जो ये दोनों बहाव है, वासनाएं इसी रूप में बहती हैं, शुभ और अशुभ नदी जैसे बहाव है, दो पार्ट हैं उसके। ठीक है,
1: और जिस वासना के हम अधीन हुए उस तरह का हमारा कर्म हो जाता है,
0: कर्म हो जाता है, या उस तरह का कर्म करके हम उस फल को प्राप्त करते हैं,
1: उस फल को प्राप्त करते हैं।
0: तो वो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकवान लोग हैं उनको अशुभ मार्ग से, यानी जो अशुभ वासना की तरफ आपका चित्त बह रहा है, वहां से हटा करके शुभ मार्ग में उसको लगाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना। और ये होगा कैसे? प्रयत्न से होगा, प्रयत्न पूर्वक, यानी पुरुषार्थ के द्वारा ये सिद्ध होगा। आप सोचें कि अपने आप हो जाएगा, दैव भरोसे बैठने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पुरुषोचित कर्म करेंगे तब जाकर के इसकी सिद्धि होगी।
1: अच्छा, इसमें चित्त के विषय में भी चर्चा है आगे, तो मैं चाहती हूँ ये बताएं आप कि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, क्या बताया गया है?
0: वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, क्षण भर में वही खिलौना फेंक देंगे, फिर दूसरे की मांग करेंगे, मतलब कहीं चित्त में स्थिरता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो शिशु के समान चंचल है, उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग में लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मन शांत बैठेगा। एक संत है वो कहते भी हैं कि शांति जो है, शांत अमन की अवस्था है
1: जी।
0: मन की अवस्था नहीं है, मन तो हमेशा प्रवाह में होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वासना की जो नदी है, जो शुभ और अशुभ वासना की नदी जो प्रवाहित है, ऐसे ही उस प्रवाह के साथ मन प्रवाहित है। तो मन को जब शुभ मार्ग में आप लगाएंगे तो वो अशुभ मार्ग का त्याग कर देगा, और जब अशुभ मार्ग में रहेगा तो शुभ मार्ग अपने आप छूट जाएगा। तो ऐसे में मन जो है हमेशा प्रवाह में रहेगा।
1: तो एक तरह से बच्चों की तरह उसकी प्रकृति है और उसको उस तरह से हमें समझना चाहिए। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कर्म की प्रेरणा विषय पर। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आप सभी को मनीषा
2: और विजयकांत का नमस्कार। श्रोताओं, भारत केवल विविधताओं और संस्कृतियों की धरती नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभाओं की जन्मभूमि भी रहा है। इस देश ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और कर्मठता से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
1: भारत की प्रतिभा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य और दर्शन के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से समाज के यथार्थ को आवाज दी और लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई।
2: और जब बात आधुनिक भारत की प्रतिभाओं की होती है तो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, खिलाड़ियों, कलाकारों और युवाओं की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो या विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा अपनी चमक बिखेर रही है।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
2: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाए। क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वह खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: स्वागत है आपका ज्ञान, जिज्ञासा और खोज की उस दुनिया में जहां हर सवाल एक नई संभावना को जन्म देता है, जहां एक छोटा सा प्रयोग भविष्य की बड़ी खोज बन सकता है और जहां युवा मस्तिष्क अपनी सोच और प्रतिभा से दुनिया को चौंका सकते हैं।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारत के उन युवा वैज्ञानिक मस्तिष्कों को जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आया तो 5 के गले में सजा स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि केवल 5 विद्यार्थियों की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक सोच, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारी युवा प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण भी है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उस भारत की है जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, जिसने दुनिया को शून्य का रहस्य समझाया है, जिसने विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिस धरती पर आर्यभट्ट ने आकाश को समझने का प्रयास किया, जिस भारत ने सीवी रमन की खोज से प्रकाश की दुनिया में नई रोशनी पैदा की और आज उसी भारत की युवा प्रतिभा ने भौतिकी के विश्व मंच पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है।
2: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों में नहीं होती बल्कि उन युवा मस्तिष्कों में होती है जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उस देश का भविष्य लिखते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।
1: 5 युवा, 5 प्रतिभाएं और 5 स्वर्ण पदक। जी हाँ श्रोताओं, आज भारत ऐसे ही 5 युवा मस्तिष्क पर गर्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ 5 पदकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, परिश्रम की, ज्ञान की और उस भारत की जिसकी युवा शक्ति भविष्य के नए अध्याय लिख रही है।
2: ये उन 5 युवा सितारों की कहानी है जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर अपने ज्ञान से रोशन किया भारत का नाम, भारत का मान और भारत का तिरंगा। आज विज्ञान पत्रिका में जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, कितनी कठिन होती है इसकी परीक्षा, कैसे चुने जाते हैं भारत के ये युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और आखिर कैसे भारत ने विज्ञान के इस विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने जा रहा है विज्ञान की दुनिया का एक नया पन्ना।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है IPHO। इसकी स्थापना 1967 में पोलैंड के वार्सो में हुई थी। IPHO का आयोजन प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें 5 महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों के प्रतिभाशाली युवा भौतिकी विज्ञानी भाग लेते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भौतिकी विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता है। इसे आप भौतिकी का ओलंपिक भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रायोगिक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना है।
2: भौतिकी सिर्फ किताबों में लिखे सूत्रों का नाम नहीं है, यह उस जिज्ञासा का भी नाम है जो पूछती है यह दुनिया काम कैसे करती है, आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, प्रकाश की गति कैसी है, पदार्थ के भीतर छिपे रहस्य क्या हैं। और जब इन सवालों की तलाश में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा विद्यार्थी एक मंच पर आते हैं तो भारत भी अपनी प्रतिभा के साथ वहां मौजूद होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विश्व मंच पर भारत के 5 युवा विद्यार्थियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, यह उपलब्धि केवल 5 पदकों की कहानी नहीं है, यह उस वैज्ञानिक भारत की कहानी है जिसने वर्षों से अपने युवाओं में जिज्ञासा, तर्क और खोज की भावना को विकसित किया है।
1: ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO एक वैश्विक ओलंपियाड है जो प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। IPHO का उद्देश्य जटिल समस्या समाधान और प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यम से माध्यमिक छात्रों के भौतिक ज्ञान का आकलन करना है। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और अपने ज्ञान का परीक्षण करने का शानदार अवसर मिलता है।
2: IPHO में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले राष्ट्रीय स्तर की भौतिकी ओलंपियाड उत्तीर्ण करनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय टीम में 5 छात्र होते हैं और प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया IPHO भौतिकी में शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है।
1: छात्रों का माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन छात्रों ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है वो भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू न की हो। राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के लिए अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। IPHO का पाठ्यक्रम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है।
2: भौतिकी ओलंपियाड कार्यक्रम 5 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय मानक भौतिकी परीक्षा यानी NSEP। भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ IAPT द्वारा NSE परीक्षा आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय मानक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्यक्रम को कवर करती है। IPHO में भाग लेने के पात्र हो जाते हैं। अभिविन्यास सह चयन शिविर OCSC। भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से लगभग शीर्ष 35 छात्रों को अभिविन्यास सह चयन शिविर के लिए चुना जाता है। HBCSE छात्रों को उनकी अवधारणाओं, प्रायोगिक ज्ञान, समस्या समाधान और कौशल पर काम करने के लिए इस शिविर का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण शिविर छात्रों को भौतिकी की अवधारणाओं पर प्रशिक्षित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भागीदारी। अंतिम चरण IPHO या अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है, जिसमें सभी प्रतिभागी देशों के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। IPHO परीक्षा के दो चरण होते हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक परीक्षा।
1: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO विद्यालय स्तर की भौतिकी की विश्व चैंपियनशिप है। इसका 56वां संस्करण 5 से 12 जुलाई 2026 तक कोलंबिया के बुकार मांगा शहर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 85 से अधिक देशों के 381 छात्र शामिल हुए। ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यार्थी थे।
2: भारत ने कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते और देश ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया।
1: श्रोताओं, ये उपलब्धि एक ऐसी प्रतियोगिता में हासिल हुई जिसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था, जो विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में इसकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब फिजिक्स ओलंपियाड के वैश्विक मंच पर हमारी पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने ये कमाल किया था।
2: स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 भारतीय छात्र पुणे महाराष्ट्र से कनिष्क जैन हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रिद्धेश अनंत बेंडाले, द्वारका, नई दिल्ली से ऋषित गर्ग, मुंबई महाराष्ट्र से श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी अहमदाबाद गुजरात से। कनिष्क, रिद्धेश, ऋषित, श्रेष्ठ और स्वरित, आप सभी को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि देश के अधिक से अधिक लोग आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को जानेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA के लिए चयनित कक्षा 12वीं के छात्र कनिष्क जैन ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया। कनिष्क के अनुसार कोटा में जो अकादमिक सपोर्ट उन्हें मिला वो सर्वश्रेष्ठ था। फाइनल मुकाबले में दुनिया भर के प्रतिभावान छात्रों से मिलने का मौका मिला। संस्थान की मजबूत पढ़ाई बेहद उपयोगी साबित हुई।
2: ऑफिशियल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इतिहास में कोटा कोचिंग के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शानदार रहा। संस्थान के छात्रों ने अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 188 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 90 गोल्ड, 75 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
1: कठिन 4 चरणों को पार कर मिली सफलता में हम आगे बात करें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए छात्रों को कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित NSEP परीक्षा में कोटा के 138 छात्र चुने गए। इसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित दूसरे चरण में 20 छात्रों ने अगले दौर में जगह बनाई
2: और तीसरे चरण के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया। इसमें 4 छात्र कोटा कोचिंग के थे। आखिरी चरण में कोलंबिया के बुकारा मांगा में आयोजित फाइनल मुकाबले में 87 देशों के 381 दिग्गजों के बीच भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया।
1: इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का प्रभावशाली रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है, जिसमें पिछले एक दशक में प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम पर जगह बनाई है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञात प्रश्नों को तेजी से हल करना सिखाते हैं, जबकि ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वहाँ पहले गहरी समझ, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता ही काम आती है
2: और इसलिए यह उपलब्धि केवल 5 छात्रों की नहीं बल्कि उन शिक्षकों, वैज्ञानिकों और संस्थानों की भी है जिन्होंने वर्षों तक इन प्रतिभाओं को निखारा। HBCSE के अनुसार भारत के लगभग 64% ओलंपियाड पदक विजेता आगे चलकर PhD करते हैं, लेकिन लगभग 32% ही भारत में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने में तो हम सफल हैं, लेकिन उन्हें देश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। IPHO का सिलेबस केवल 12वीं तक सीमित नहीं है, इसमें स्नातक स्तर के ये टॉपिक शामिल हैं: यांत्रिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत और चुंबकत्व में ट्रांजिएंट्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, प्रकाशिक तरंगे और आधुनिक भौतिकी के बेसिक्स।
1: ये सफलता देश के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। HBCSC ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए भारत के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है और एक कठोर बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया, ओरिएंटेशन कैंप और गहन कोचिंग के माध्यम से विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली पूर्व विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारे युवा भौतिकविदों की ये अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
2: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 स्वर्ण पदक जीतना और संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना भारत के छात्रों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक सोच के साथ HBCSE TIFR ओलंपियाड कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता कई और युवाओं को विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी और वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार में भारत की स्थिति भी मजबूत करेगी। DAE ने भारतीय टीम के नेताओं HBCSE TIFR के प्रोफेसर अन्वेष मजुमदार और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की डॉक्टर लीना जोशी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दास गुप्ता और गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी की निशा केलकर के साथ वैश्विक प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करने के लिए HBCSE में फिजिक्स ओलंपियाड मेंटर पूल को भी बधाई दी।
1: HBCSE के निदेशक प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत की निरंतर सफलता दशकों से जारी निरंतर मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और शिक्षकों एवं छात्रों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वैश्विक पहचान दिलाने में DAE के वर्षों के निरंतर समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में मिली सफलता विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के पोषण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के भविष्य के नेतृत्व के लिए मजबूत नींव बनाने के प्रति DAE की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: JEE जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करना सिखाती हैं, लेकिन ओलंपियाड में दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ सिर्फ याददाश्त नहीं जिज्ञासा काम करती है, सिर्फ सूत्र नहीं सोच काम करती है, सिर्फ अभ्यास नहीं नई समस्या को समझने की क्षमता काम करती है। और यही कारण है कि इन 5 युवाओं की उपलब्धि इतनी विशेष है।

0: इन युवा प्रतिभाओं ने ये साबित किया है कि भारत की प्रयोगशालाओं, विद्यालयों और कक्षाओं में बैठी प्रतिभा को यदि सही अवसर मिले तो वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। तो आइए आज इन पांच युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को दिल से सलाम करें, उनके माता पिता को बधाई दें, उनके शिक्षकों को नमन करें, उनके प्रशिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों का अभिनंदन करें और अपने देश के हर उस बच्चे से कहें, सपने बड़े रखो, सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और सीखने से कभी मत रुको, क्योंकि अगला स्वर्ण पदक, अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज और भारत का अगला विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शायद आपके बीच ही बैठा हो।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वो खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: आप सुन रहे थे भारत के पांच युवा भौतिकी सितारों की ये स्वर्णिम गाथा। भारत की प्रतिभा को सलाम, जय हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: लेखन विनीता जैन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
3: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
4: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार को नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत प्रस्तुति हुई अहल्या लीला नाट्य की।
1: यह आश्रम कितना अपना लग रहा है,
2: क्योंकि आपकी पुत्री जो है यहाँ पर।
1: सुखी रहो, पूछूंगा नहीं कि कैसी हो, मुझे याद है तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं है।
0: जिसका निर्देशन किया नीलेश्वर मिश्रा ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में और सुनते हैं लीला नाट्य के संपादित अंश।

0: अहुभाग्य पितामह ने हमारे आश्रम को पवित्र किया।
1: मैं आपके पास एक आवश्यक कार्य से आया हूं।
0: आज्ञा दीजिए देव।
1: यह मेरी मानस पुत्री अहल्या है, इसे मैंने अपने सर्वोत्तम कौशल से रचा है। ऋषि श्रेष्ठ, अनिश्चित काल के लिए मुझे गहन वन में तप करने जाना है। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि इसे आप अपने यहां शरण दीजिए।
0: आपकी आज्ञा श्रीमधार्य पितामह।
1: मेरी पुत्री, इस पवित्र आश्रम को अपने सद्गुणों से समृद्ध करना, तप संपन्न करके मैं अवश्य आऊंगा।
0: कल्याण हो बालिकाओं, अपनी नई सखी का स्वागत करो। इन्हें यहां रहते हुए अपने पिता का स्मरण नहीं होना चाहिए।
2: जो आज्ञा गुरु।

0: देवी, मैं अन्नमूल फल लेने गया था। मैंने वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा।
1: क्या देखा जो इतने विस्मित हो गए हो?
0: एक सूर्य तो पूर्व दिशा में उग रहा था, परंतु एक दूसरा सूर्य भी उसी दिशा से उग रहा था।
1: सीधे कहना, क्या कह रहा है?
0: पितामह आ रहे हैं।
2: क्या क्या कहा? पिताश्री आ रहे हैं? चलो चलो, पितामह के स्वागत।

0: बहुत ही मोहित आश्रम है। पक्षियों का कलर और साउंड की गान जैसा यह आश्रम कितना अपना लग रहा है।
1: क्योंकि आपकी पुत्री जो है यहाँ पर
0: सुखी रहो। पूछूंगा नहीं कि कैसी हो, मुझे याद है तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं है, परंतु आगे का भी मेरे मन का हो जाए तभी सब ठीक होगा।
2: आज्ञा कीजिए देव।
0: कौन होगा इसका पति जो तप का अधिकारी हो, जिससे माया भी हार चुकी हो, शम दम नियम आचरण की पवित्रता हो।
3: आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं देव। देव आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
0: ऋषि गौतम, क्या आप मुझ पर यह उपकार कर सकेंगे?
2: मुझे लज्जित ना करें, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है।
0: तुम्हें पुत्री, तो फिर यह मेरा निर्णय हो, विवाह की तैयारी शीघ्र, निमंत्रण ऋषियों को दो, उत्सव हो मंगल।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। भारत भवन में सोमवार से दो दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान की शुरुआत हुई। हिंदी दिवस के मौके पर वीर भारत न्यास और संस्कृति संचालनालय के आयोजन में पहले दिन हिंदी भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर केंद्रित कार्यक्रम हुए। शाम का मुख्य आकर्षण रहा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। इसमें देशभर से आए कवियों ने हिंदी, राम राष्ट्र और बदलते सामाजिक संस्कारों को से लेकर जिंदगी की जद्दोजहद तक को अपनी कविताओं में पिरोया। कार्यक्रम का संचालन कला समीक्षक विनय उपाध्याय ने किया। कवि अजहर इकबाल ने पहली कविता में बच्चों के संस्कारों का जिक्र किया। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। दूसरी कविता में उन्होंने राम के आदर्शों को अलग तरह से रेखांकित किया। हजारों साल से प्रतीक्षारत थी ये धरती, धाम हो जाने से पहले। समंदर भी कहाँ देता है रास्ता किसी को, राम हो जाने से पहले। डॉक्टर कीर्ति काले ने अपनी कविता के माध्यम से हिंदी का गुणगान किया। उन्होंने कहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुबह दोपहर शाम करें, हिंदी में बोलें बतियाएं, हिंदी में ही काम करें। हास्य कवि दिनेश दिग्गज ने कवि सम्मेलन का संचालन किया और अपनी चुटीली रचनाएं पेश की। चित्र प्रदर्शनी को लेकर वीर भारत न्यास के ट्रस्टी श्रीराम तिवारी बोले, भाषा केवल बोलने और लिखने का माध्यम नहीं है, वे अपने साथ स्मृतियां, कथाएं, विश्वास, लोकानुभव और सांस्कृतिक कल्पनाएं लेकर चलती है। वरिष्ठ पत्रकार जयदीप कर्णिक और गिरीश उपाध्याय ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता, मातृभाषा संरक्षण और डिजिटल मीडिया की चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को एक दिन तक सीमित नहीं किया जा सकता, इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में 19 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ।

रंगशीर्ष संस्था भोपाल की ओर से सोमवार को एलबीटी में भारत भारती नाटक का मंचन किया गया। संजय मेहता के निर्देशन और सह निर्देशन मोहम्मद फैजान में हुई इस प्रस्तुति में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती के साथ कालिदास, तुलसीदास सहित अन्य रचनाकारों की कविताओं को भी शामिल किया गया। नाटक में भारत के उस गौरवशाली अतीत को मंच पर जीवंत किया गया जब ज्ञान, कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण स्थान था। दशमलव पद्धति, ज्योतिष, आयुर्वेद, रेखा गणित, बीज गणित और योग जैसी भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख किया। बताया कि इन क्षेत्रों में भारत का योगदान कितना समृद्ध रहा। विवेकानंद, कबीर, तुलसीदास जी, राम, अनुसुईया और गांधारी जैसे चरित्रों के माध्यम से भारतीय दर्शन, जीवन मूल्यों और सहिष्णुता को भी सामने रखा गया। केवल अतीत का गौरव बताना नहीं बल्कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ना रहा।

हिंदी दिवस हिंदी भवन में आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक भगवान दास सबनानी थे। साहित्यकार और हिंदी प्रेमियों ने हिंदी को बढ़ावा देने शपथ ली। सबनानी ने कहा कि हिंदी को अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अपनाना होगा, तभी हिंदी दिवस की कुछ सार्थकता साबित होगी। रघुनंदन शर्मा ने मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी प्रदेश के बाजारों में यदि हम जाएं तो वहां पर दुकानों पर अंग्रेजी में नाम लिखे होते हैं, जबकि यदि हम अहिंदी भाषी प्रदेशों में देखेंगे तो वहां अपनी मातृभाषा में नाम लिखे होते हैं। दैनिक जीवन में हिंदी का उपयोग करें। जया केतकी ने कहा कि आज हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है हो, लेकिन सर्वाधिक समझी जाने वाली भाषा है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 15 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा 2026 का आयोजन होगा। शाम 4 बजे शैल कला सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पखवाड़े के दौरान 16 सितंबर को यूनिकोड टंकण, 17 को हिंदी तर भाषियों के लिए श्रुत लेखन, 18 को लोक गायन, 22 को छाया चित्र लेखन, 23 को दिनकर जयंती पर काव्य पाठ, 25 को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पर आलेख लेखन तथा 29 सितंबर को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 30 सितंबर को पुरस्कार वितरण के साथ समापन होगा। संग्रहालय के में बताया गया कि संस्थान सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ राजभाषा हिंदी के प्रसार और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। वो जब याद आए बहुत याद आए, कहीं ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, जैसे सदाबहार नगमों में सोमवार की शाम गूंज उठी। मौका बावड़िया कला में सुर संदेश का था। कराओके ग्रुप के जरिए हुए आयोजन में मंच पर गायकों ने बॉलीवुड के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी। गीतों के माध्यम से गीतकारों संगीतकारों गायकों को याद किया। समारोह के अंत में FYD के निदेशक नीरज श्रीवास्तव एवं शशिकांत ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए पुरस्कार वितरित किए।

शायरी और अदब के शौकीनों के लिए मुशायरे का आयोजन होने जा रहा है। पोइट्री अड्डा भोपाल के बैनर तले 20 सितंबर को सुखन की कहकशा मुशायरे का आयोजन होगा। कार्यक्रम कमला पार्क स्थित दुर्रानी हॉल में आयोजित होगा। मुशायरे में साजिद प्रेमी, डॉक्टर एहसान आजमी, सरवत जैदी जैसे कई शायर शामिल होंगे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फ्रेम बॉम्बे का वह गुप्त हथियार जो फ्लोटिंग ताबूत बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा अजीबोगरीब और विशाल गुप्त हथियार बनाया था जिसे एक महान और शक्तिशाली तैरने वाली मशीन कहा गया था। यह था फ्रेम, एक ऐसा जहाज जिसे बॉम्बे के गवर्नर चार्ल्स बून की हताशा ने जन्म दिया था। बून मराठा नौसेना और उसके महान सेनापति कान्होजी आंगरे को नष्ट करने के जुनून में सवार थे। 1721 तक भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा समुद्री डकैती, जैसे कि वे कहते थे, को दबाने के प्रयास शर्मनाक विफलताओं की एक श्रृंखला बन चुके थे। बून ने फैसला लिया कि कोंकण तट के चट्टानी और ऊंचे किलों, जिन्हें भारतीय जिब्राल्टर कहा जाता था, को तोड़ने के लिए पारंपरिक युद्धपोत काफी नहीं थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने फ्रेम का निर्माण कराया। क्या आप जानते हैं कि यह मशीन वास्तव में कैसी दिखती थी? ये आधा बेड़ा और आधा किला था। इसका निचला हिस्सा सपाट था ताकि ये केवल 6 फीट गहरे पानी में भी किनारे के करीब रेंग सके। इसके किनारे एक विशेष मिश्रण से बने थे जिसके बारे में दावा था कि वे पूरी तरह से कैनन प्रूफ, तोप के गोलों का असर ना होने वाले हैं। इसमें 12 विशाल तोपें लगी थीं जो 48 पाउंड के गोले दागती थीं, जो उस समय की मानक भारी तोप खाने के आकार से दोगुना था। फ्रेम को उस अचूक हथियार के रूप में देखा जा रहा था जो युद्ध को समाप्त कर देगा। 1721 में मराठों को मजबूत गढ़ घेरिया पर हमले के दौरान बड़े उत्साह के साथ इस मशीन को खींचकर मोर्चे पर लाया गया। अधिकारियों ने अपनी सांसें थाम ली और तोपों में आग लगा दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसने अंततः फायर किया तो क्या हुआ? किले की दीवारों को नष्ट करने के बजाय विशाल लोहे के गोले जहाज से थोड़ी ही दूर समुद्र में गिर गए। किसी ने इंजीनियरिंग की एक बड़ी गलती कर दी थी। तोप की गाड़ियां या तो बहुत ऊंची थी या पोर्ट बहुत नीचे थे, जिससे तोपों को सही ढंग से निशाना साधना असंभव हो गया था। अपमानित अंग्रेजों के संशोधनों के लिए फ्रेम को वापस ले लिया, लेकिन दूसरा प्रयास और भी

बदतर रहा। घेरिया का किला ऊंची खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित था और फ्रेम एक सपाट निचली सतह वाला बेड़ा था। दूर से इसके गोले दुश्मन से ज्यादा ब्रिटिश लैंडिंग पार्टियों के लिए खतरा थे, और अगर ये बेहतर कोण पाने के लिए करीब जाता तो ये एक आसान शिकार बन जाता। क्या आप इसके कैनन प्रूफ कवच की विडंबना जानते हैं? जबकि इसके किनारे सीधे प्रहार को रोक सकते थे, इसके सपाट और भीड़भाड़ वाले डेक ऊपर से पूरी तरह असुरक्षित थे। मराठा रक्षकों ने बस बेड़े पर ऊपर से गोले बरसाए, जिससे उस पर सवार नाविकों को भारी नुकसान हुआ। वह शक्तिशाली मशीन अब एक तैरता हुआ ताबूत बन चुकी थी। फ्रेम की विफलता कंपनी के सैन्य इतिहास के अंधकार युग का एक सटीक प्रतीक है। एक ऐसा युग जो कुप्रबंधन से भरा था। इसके विलियम जेम्स जैसे पेशेवर नौसैनिक कमांडरों के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को इन किलों को जीतने में 3 दशक से ज्यादा का समय लगा।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने आजाद हिंद।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं इतिहास।
2: और श्रोताओं मेरा भी नमस्कार, मैं हूं तारीख।
1: अच्छा तारीख, आज हम बात सन 1892 की करेंगे।
2: 1892?
1: जी हाँ, पटियाला के लाडलू गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो भी आम बच्चों की तरह ही था।
2: हाँ मुझे याद आया, तारीख थी 15 सितंबर 1892 और जन्म हुआ था बाबा पृथ्वी सिंह आजाद का।
1: बिल्कुल ठीक, बाबा पृथ्वी सिंह नटखट चंचल चुलबुले स्वभाव के, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगा।
2: बाबा का पूरा नाम है बाबा पृथ्वी सिंह आजाद। आजाद के संपर्क में आने के कारण उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद जोड़ लिया था।
1: उन्होंने अपने अंतिम दिनों में आजादी मिलने के बाद एक सभा में कहा था,
3: आज इतने वर्षों बाद मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि आज देश के नौजवानों में अगर कोई भाव भरना है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, कि इंसान इंसानियत की राह पर चले जी, एक दूसरे का विश्वास पात्र बने, एक दूसरे के प्रेम पात्र बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। जहाँ तक धन की बात है, वो 400 बीसी के मार्ग पर जाने के बगैर नहीं मिलता। आज देश के सामने नौजवानों को तपस्वी बन के आने की जरूरत है, वही देश को बचा सकते हैं।
2: बाबा पृथ्वी सिंह ने नौजवानों से बहुत उम्मीदें बांध रखी थी। उनके पूर्वज जैसलमेर राजस्थान के थे, पर बाबा का बचपन बर्मा में बीता। उनके पिता रोजगार के लिए बर्मा चले गए थे।
1: कोई 1907 या 1908 का समय था। सारे भारत में देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर लिए गए थे और लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया गया था। उन दिनों की बात है जब बाबा पृथ्वी सिंह ठाकुरबाड़ी से मत्था टेक करके लौटे तो अपने पिता से बोले,
3: बापू जी मैंने यहाँ बर्मा में नहीं रहना, मुझे अपनी जन्मभूमि पंजाब जाना है।
4: अरे लाले, अचानक तेरे को अपनी जन्मभूमि की याद कहाँ से आ गई?
3: ओ जी वो क्या है कि वहाँ देश की आजादी नाल इतना कुछ हो रहा है, मैंने भी कुछ करना है, बस मैंने कह दिया मुझे जी पंजाब जाना है।
4: अरे यहाँ जो इतना कारोबार है, काम है, उसे संभालने के देना है तो कहता जन्मभूमि पंजाब जाना है। अरे आखिर तेरे हुआ क्या है?
3: ओ बाबूजी मैंने अभी ठाकुरबाड़ी में रामायण सुनी। वो लंका जीतने के बाद रामचंद्र जी से जब सोने की लंका पे राज करने की बात कही ना, तो जानते हैं क्या कहा उसने?
4: क्या कहा?
3: कहा मेरी अयोध्या मुझे सोने से भी ज्यादा प्यारी है, मैं अपनी मातृभूमि जाऊंगा, उसे स्वर्ग बनाऊंगा। सो बाबूजी मुझे भी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वास्ते पंजाब जाना है।
1: बाबा पृथ्वी सिंह जब पंजाब लौटे तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें कैसे करें। वहां आर्य समाज का बोलबाला था, वे उपदेशों के द्वारा गीतों के द्वारा देश प्रेम का प्रचार करते रहते थे। बाबा उन सब कार्यों से प्रभावित तो थे, पर उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो फिर वो पुनः बर्मा लौट आए।
2: उस समय बाबा पृथ्वी सिंह की उम्र 15 वर्ष की थी। तब तक बर्मा में हालात बदल गए थे, पिता को व्यवसाय में नुकसान हो गया, तब बाबा पृथ्वी सिंह ने नौकरी करने की सोची।
3: बाबूजी
4: हाँ बोलो।
3: वो किया कि जी अपने कई साथी पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, मेरे मजबूत अट्टे कट्टे बदन को देख के पुलिस अफसर भी मुझ में भर्ती करना चाहते हैं जी, सोचता हूँ मैंने भी भर्ती हो जाने चाहिए।
4: अरे नहीं नहीं नहीं लाले, नहीं पुलिस की नौकरी सही नहीं है।
3: क्यों बापू?
4: अरे वो मैंने पता है किस किस तरह से रिश्वत ले ले के आदमी ने पते तो हो जाना है, तुम चाहे के भी सदाचारी नहीं रह सकते। नहीं नहीं लाले नहीं, पुलिस में भर्ती होके तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है।
5: बापू ठीक है जी, आपकी बात मैंने समझ आ गई है जी, मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा।
1: बात आई गई हो गई, पर पृथ्वी सिंह के मन को चैन कहां मिल रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें और कैसे करें।
2: तभी पता चला अमेरिका में बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह को राह मिल गई, 100 रुपए जुगाड़े और अमेरिका के लिए चल पड़े बिना अपने पिता को बताए।
1: मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून जो था, बर्मा से रंगून, रंगून से पिनांग, पिनांग से सिंगापुर और फिर हांगकांग के रास्ते। वहां उनकी मुलाकात लाहौर के कुछ नौजवानों से भी हुई।
6: अजी तुसी हिंदुस्तानी हो जी?
5: आओ जी।
6: अजी हम सब लाहौर से हैं।
5: असी पटियाला से? ओए होए, ओए इधर कैसे?
6: अजी अमेरिका जा रहे हैं। अजी तुमने देखा वो माचू डायनेस्टी के खिलाफ चीन की धरती पे जो इनकलाब हुआ जी?
5: हाँ देखा। ओ जी किस तरह एक रात में डॉक्टर सन्यात सेन के कहने पे चीन के सभी मर्दों ने गुलामी की निशानी अपने लंबे लंबे वालों की चोटियां काट बेगी जी। केवल एक रात भर में सारे चीन में चौराहों पर लंबे लंबे वालों के ढेर लग गए।
6: ओ जी ऐसे ही जज्बात हम हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भरना चाह रहे हैं जी।
5: तो असी भी चाह रहे हैं, पर चाहने भरने से क्या होता है जी?
6: ओ जी इसी वास्ते में अमेरिका जा रहे हैं। उत्थे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई जी, उनके कार्यक्रम ऑरेगन स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट और कनाडा सभी जगह चल रहे जी।
5: अच्छा?
6: हाँ जी हम भी उसमें शामिल होना चाह रहे जी।
5: ओ जी फिर तो असी भी तुम्हारे साथ अमेरिका चल रहे हैं। ओए अमेरिका मैं आ रहा हूँ। ओए सुना।
1: और इस तरह बाबा पृथ्वी सिंह, बलवंत सिंह और प्यारालाल आदि की सहायता से अमेरिका जा पहुंचे।
2: अमेरिका के रास्ते में मनीला और फिलीपींस आइलैंड में नौजवानों द्वारा अमेरिका के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को भी देखा। उनके मन में देश प्रेम की आग और बढ़ गई।
1: अमेरिका में गदर पार्टी ने एक प्रेस चला करके गदर अखबार निकालने की योजना बनाई थी। इस अखबार की सारी बागडोर बाबा पृथ्वी सिंह को सौंप दी गई। उन्होंने बड़ी कुशलता से अखबार चलाया, साथ ही कैलिफोर्निया में युगांतर आश्रम की स्थापना भी की।
2: उनकी एक ही योजना थी कि हिंदुस्तानी दुनिया में जहां भी हो देश के लिए संगठित हो और भारत में इनकलाब करें।
1: बाबा पृथ्वी सिंह ने पहला विश्व युद्ध शुरू होने तक अमेरिका में काम किया। गदर पार्टी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है हिंदुस्तान जाकर गदर पार्टी के लोग अंग्रेजी राज को खत्म करें, हिंदुस्तानी फौज तैयार करें। आखिर 24 अगस्त 1914 को गदर पार्टी के चुने गए 150 लोगों के संग पृथ्वी सिंह प्रिंस कोरिया जहाज से हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े।
2: बात नवंबर 1914 की है। लुधियाना के पास लुंडोवान स्टेशन पर क्रांतिकारियों की बैठक में पृथ्वी सिंह से झांसी के प्रसिद्ध पंडित परमानंद ने, जो अमेरिका से उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे, उनसे पूछा,
7: पृथ्वी सिंह जी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तोसा मारू जहाज से उतरने वाले सभी साथी तो कलकत्ता ही में पकड़ लिए गए थे।
5: ओ जी वैसे ही पहुँचे जैसे आप। जी हुआ यूं कि जगत राम जी तो जहाज से ही भेस बदल कर निकले थे और आपने पुरभैये की बाल्टी उठाकर पुरभैये होने का नाटक किया, सो आप दोनों तो बच के निकल गए जी। हम पूरे सूट बूट में थे, सोचा किसी को शक नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ पकड़ा गए जी।
7: अब फिर क्या हुआ?
5: अब फिर सबका नाम लिख लिख हमें गोरखा फौजियों की निगरानी में पंजाब जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी विंडसर स्टेशन पर जब रुकी तो एक नया फौजी अफसर एक सूची लेकर आया और एक एक करके जी उन लोगों का नाम पुकार कर नीचे उतारने लगा जो क्रांतिकारी नहीं थे, उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत थी। पहला ही नाम उसने नत्था सिंह का पुकारा, वो सो रहा था, मैं तेजी से नीचे उतरा और भीड़ में खो गया जी और अम्बाला अपने साथियों के पास जा पहुंचा।
1: पर शांति पृथ्वी सिंह के भाग्य में कहां थी? 8 दिसंबर का दिन था। पृथ्वी सिंह अंबाला के एक बोर्डिंग हाउस में बैठे थे, तभी उनके दूर के रिश्तेदार सरदार निहाल सिंह आए और बोले,
8: अरे प्रदीप पुत्र, की हाल है? बड़े दिनों बाद दिखे।
9: सत श्री अकाल जी, बैठे, खुशी हुई मिलके।
8: सुनाए, तुसी अमेरिका होके आए हो?
9: हाँ, ओरेगन होके आया हूँ, एग्रीकल्चर सीखने गया सी।
8: अरे वाह पुत्र वाह, यहाँ मैं भी एक एग्रीकल्चर फार्म चला रहा हूँ, शाम को तुम्हें ले चलूंगा, देख के अपनी राय देना। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, थोड़ा काम है, शाम को आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, शाम को चलेंगे? अच्छा, अभी चलता हूँ।
9: गया मंजीते, ये निहाल सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों की वफादारी के कारण ही इसे सरदार बहादुर सिंह का खिताब मिला हुआ है। पता है ये पुलिस स्टेशन क्यों गया है? मेरे बारे में खबर देने वास्ते। देखना, शाम को पुलिस के साथ आवेगा।
4: फिर तूने क्या सोचा?
9: सोचना की है, यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। सोचना ये है कि कहाँ जाया जाए।
4: अरे तू तो कह रहा था शाम को पुलिस आएगी, ले खुफिया पुलिस का आदमी अभी आ गया। लगता है तेरा निहाल सब कुछ पहले ही सेट करके आया था, अब संभाल इसे, है? मैं तो खिसकता हूँ।
6: अरे सुनिए सुनिए, ये खालसा छात्रावास यही है क्या?
9: नहीं जी, ये खालसा छात्रावास नहीं है, ये तो राजपूत छात्रावास है जी।
6: सुनिए, मुझे खालसा छात्रावास में जाना है जी, नया आदमी हूँ, आपको तकलीफ तो होगी, जरा अगर साथ चल दें, खालसा छात्रावास तक पहुँचा दें तो कृपा होगी।
9: जी बैठिए बैठिए, बताइए खालसा छात्रावास में क्या है?
6: अरे नहीं नहीं, बैठने का समय नहीं है, मैं कहता हूँ हैंड साहब, पृथ्वी सिंह यू आर अंडर अरेस्ट।
9: ओए होए, तो तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो? निहाल सिंह ने खबर दी होगी।
6: तुम्हारा अनुमान सही है पृथ्वी सिंह, अब जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ।
9: कोई बात नहीं, एले पकड़ मेरा हाथ, इनकलाब जिंदाबाद।
2: पृथ्वी सिंह ने हाथ आगे क्या बढ़ाया, लपक के पिस्तौल वाले हाथ पर झपट्टा मारा और पिस्तौल को दूर फेंक दिया। जासूस ने चाकू निकालकर पृथ्वी पर कई वार किए, खून के फव्वारे छूट पड़े, पर पृथ्वी ने उस पर काबू पाके चाकू भी दूर फेंक दिया और जासूस की धुनाई शुरू कर दी, मगर चाकू के वार से काफी खून बह चुका था। एक दूसरे को मारते मारते पृथ्वी और जासूस दोनों बेहोश हो गए थे। दूसरे दिन जब पृथ्वी को होश आया तो उन्होंने अपने को अस्पताल में पाया।
1: पास ही के पलंग पर जासूस भी पड़ा था, पूरा कमरा पुलिस की गिरफ्त में था। पृथ्वी चाहते तो जासूस पर गोली चला सकते थे, मगर गदर पार्टी ने शपथ ली थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को मारना नहीं है।
2: पृथ्वी को अस्पताल से और 80 लोगों को उनके अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लाहौर जेल में डाल दिया गया और मुकदमा चला लाहौर में बगावत करने की साजिश का।
1: अच्छा जानती हो तारिक, पृथ्वी सिंह को तो पता ही नहीं था कि अमेरिका से उनके दल में कृपाल सिंह नाम का एक जासूस शामिल हो चुका है और वही सब जानकारियां पुलिस को दे रहा था। और हाँ, विद्रोह निश्चित 23 फरवरी 1915 को होना था, मगर उसके पहले ही सब गिरफ्तारियां हो गई।
2: हाँ, और मुकदमा चलता रहा, सब ने मिलकर निश्चय किया कि 7 लोग विद्रोह की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे और बाकी सबको फांसी की सजा से बचा लेंगे।
1: हाँ, निर्णय तो उनका ठीक था, पर 7 लोगों के द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद भी अदालत ने 24 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और बाकी को काले पानी की उम्र कैद।
2: मगर इतिहास जनता के भारी विरोध को देखते हुए बाद में वाइसराय काउंसिल ने फैसला बदल दिया, 24 में से केवल उन्हीं 7 लोगों को फांसी की सजा दी गई जिन्होंने अपना जुर्म कबूला था, बाकी को भी काले पानी की सजा दे दी गई।
1: और जानती हो वे 7 लोग कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी?
2: कौन
1: वे थे? करतार सिंह सराबा, बख्शीश सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, भूरा सिंह, हरनाम सिंह और जगत सिंह।
2: अंडमान की जेल में उन पर भारी अत्याचार हुए जिनका भारत में काफी विरोध हुआ। सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी कैदियों को अंडमान की जेल से हटाकर हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए।
1: और हाँ, पृथ्वी सिंह को मद्रास की राजामुंद्री जेल में रखा गया और जानती है उनके हिस्ट्री टिकट पर क्या लिखा था?
2: क्या?
1: बहुत खतरनाक है, सुधरना असंभव, बहुत होशियारी से संभालने की जरूरत है।
2: हाँ, और पृथ्वी ने इसे सिद्ध भी कर दिया चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर।
1: क्या बात है।
2: हुआ यूं कि बाबा पृथ्वी सिंह को खतरनाक कैदी मानकर मद्रास की राजामुंद्री जेल से कलकत्ता की जेल में भेजने का निर्णय हुआ। दो अन्य क्रांतिकारी और तीन सिपाहियों के साथ रेलगाड़ी से भेजा गया।
1: अच्छा।
2: पृथ्वी ने संडास जाने का बहाना किया और सिपाहियों ने हथकड़ी खोल दी और मौका पाकर पृथ्वी ने संडास की खिड़की से छलांग लगा दी और पुलिस को चकमा देकर भाग निकले।
1: और जानती हो, पूरे 8 बरस तक पुलिस उनको ढूंढती रही मगर वो कहीं नहीं मिले। 1923 से लेकर के 1930 तक वे सौराष्ट्र के भावनगर में गुप्तवास में रहे मगर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से उन्होंने जारी रखा।
2: और जानते हो इतिहास, चंद्रशेखर आजाद के बुलाने पर वो इलाहाबाद जा पहुंचे जहां दो क्रांतिकारियों के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई।
7: पृथ्वी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि 2 बार ब्रिटिश सरकार के गाल पर तमाचे जड़ने के बाद भी आप अपनी छाया भी उसे छूने नहीं दे रहे हैं।
9: भाई जी, इस प्रशंसा और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि हम सभी एक ही रास्ते के पथिक हैं। आज्ञा कीजिए, आपने मुझे किस लिए याद किया?
7: आप तो जानते हैं, हमारे साथी भगत सिंह दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद जेल के अंदर है।
9: हाँ।
7: फिर हमारे कई साथी कमजोरियों के शिकार होकर सरकार से मिलते जा रहे हैं। अतः लगता नहीं है कि हमारा आंदोलन सफलता से आगे चल पाएगा।
9: बाबू जी, तो फिर मैंने क्या करना है?
7: भगत सिंह जी चाहते हैं कि अब आतंकवाद टेररिज्म नहीं होगा, अब तो बोल्शेविक मेथड से हिंदुस्तान में क्रांति करनी होगी। इसके लिए एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस जाकर इस क्रांति की स्टडी करके आएं और यहां आकर इसकी तैयारी कराएं।
9: मैं तैयार हूं। मैं प्रसन्न हूं कि मुझे आप और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जी काम करने का मौका मिलेगा।
7: हमारी पहली भेंट के उपलक्ष्य में मैं 11 गोलियों का एक ये ऑटोमेटिक पिस्टल दल की ओर से आपको भेंट करता हूँ। रूस आप कैसे पहुँचेंगे ये व्यवस्था आपको ही करनी होगी।
9: जी, इस बहुमूल्य भेंट के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इस बात की इजाजत चाहता हूँ कि रूस जाने से पहले जी सरकार के गाल पर एक और तमाचा जड़ता जाऊँ।
7: जड़ते जाओ, जय हिंद।
1: और ये तमाचा था बंबई के भीड़ भरे स्थान लैमिंगटन रोड के थाने पर अंधाधुंध गोलीबारी का, मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया गया। और जानती हो वो कैसे छूटे?
2: कैसे?
1: जादू के जोर से। हुआ ये कि उन दिनों काबुल जेल की कोठरी काल कोठरी के नाम से मशहूर थी, रोज 1-2 कैदी मर जाते थे। पर योग और कसरती बदन के कारण पृथ्वी पर उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोगों में तो ये बात फैल गई थी कि पृथ्वी बड़ा जादूगर है, और ये बात जेलर के साले को भी मालूम पड़ गई। तो फिर क्या था, पृथ्वी सिंह से मिलने जा पहुंचा जेलर का साला।
8: पृथ्वी सिंह जी, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है, लोग कहते हैं मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कुछ कीजिए ना।
1: फिर क्या था, पृथ्वी ने देखते ही समझ लिया कि ये मानसिक बीमार है। सो उन्होंने जमीन से कुछ दूबा तोड़े और मंत्र पढ़ने का नाटक किया। दूबा साले को देकर के कहा कि जा ताबीज में बंद करके इसे गले में पहन लेना, देखना तुम प्रतिदिन स्वस्थ होते जाओगे और दुश्मन जादूगर समाप्त हो जाएगा। ये पृथ्वी सिंह का एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जेलर का साला ठीक होता गया। उसने पृथ्वी सिंह को रिहा कराने में भारी मदद की।
2: रिहा होने के बाद बाबा पृथ्वी सिंह वर्धा आश्रम में गांधी जी के साथ रहे 1942 से 1947 तक, और आजादी के संघर्ष में काम करते रहे। और आजाद भारत में भी वो 25 बरस तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे।
1: सन 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 5 मार्च 1989 को ये महान क्रांतिकारी देशभक्त दुनिया से कूच कर गया।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी की रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी को। कनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
0: मैं जानना चाहूंगी कि एक बच्चे, एक एडल्ट और बुजुर्ग की डाइट क्या होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड डाइट क्या होना चाहिए।
2: अगर हम जनरली देखें तो हर एज कैटेगरी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए ग्रोथ को प्रमोट करता है। और हम एक थाली की बात करें, जनरलाइज्ड अगर हम किसी एज कैटेगरी की बात नहीं भी करते हैं, तो हमारी थाली का प्रपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि थाली में 50% हमारा वेजिटेबल्स और सैलेड होना चाहिए। देन 1/4 हिस्से में हमारी थाली में प्रोटीन होना चाहिए, और बचे हुए हिस्से का हमें बैलेंस करना है हमारे कार्बोहाइड्रेट से और हमारे जो मिनरल्स, विटामिन्स हैं एंड प्रोबायोटिक्स हमारी थाली में होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में अगर हम वेजिटेरियंस की डाइट देखें तो उसमें हमारी दालें, एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें, ये फैट्स में आती हैं, ये भी हमें डेली बेसिस पे लेना है। इसके बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें अंडे, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के सोर्सेज में आती हैं। और वेजिटेरियंस में दालें, इसके अलावा हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो किसी भी प्रकार की हरी सब्जियाँ, ये सारी उसमें शामिल होती हैं, सैलड्स में भी। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हम कलरफुल हमारी प्लेट को रख सकते हैं उतना हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज़्यादा जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में दाल, चावल, ये सारी चीज़ें, अनाज, मोटा अनाज, ये सारा कुछ शामिल होता है।
3: अब मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज और साधारण अनाज किस तरह से अलग होते हैं और इनके खाने के क्या फ़ायदे हैं, खासकर मोटे अनाज।
2: मोटे अनाज जो हैं ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करते हैं
3: जी।
2: और साधारण अनाज क्योंकि थोड़ा सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें हम डायबिटिक्स को भी देना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है।
3: अच्छा।
2: और मोटे अनाज खाने का ये फायदा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इन्हें रोगी को भी दे सकते हैं, उनसे उनकी हेल्थ और इम्प्रूव होती है, क्योंकि सबसे अच्छा डायबिटीज़ इससे क्योर होती है। दूसरा कि जब हम मोटे अनाज खाते हैं तो हमें स्लो एनर्जी मिलती है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है और हमें बार बार भूख नहीं लगती है।
3: अब आप हमें ये बताएं कि मोटे अनाज क्या होते हैं और मोटे अनाज को खाने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही ये भी बताएं कि बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए मोटे अनाज की मात्रा कितनी होना चाहिए।
2: मोटे अनाज में शामिल हैं जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारे जो अनाज हैं ये मोटे अनाज में शामिल होते हैं
3: जी।
2: इनको खाने की वही मात्रा है 20 से 30 ग्राम बच्चों के लिए, 40 से 50 ग्राम एडोलेसेंट एज के लिए
3: जी।
2: वैसे ही हम 20-20 ग्राम बढ़ा के इसको खा सकते हैं। और बुजुर्गों के लिए भी मात्रा एडोलेसेंट एज की ही मात्रा के बराबर होती है, क्योंकि बुजुर्गों में एज के साथ उनका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। महिलाओं के लिए भी रागी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उन्हें फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी होती है जिसके वो सप्लीमेंट्स लेती हैं अलग से, तो अगर वो मोटे अनाज शामिल करती हैं जैसे बाजरे की खिचड़ी या रागी का हलवा, ये सारी चीज़ें अगर वो ऐड करती हैं तो उन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और आयरन इनटेक भी उनका कम्प्लीट होगा। वैसे ही छोटे बच्चों को भी हमें मोटा अनाज देना चाहिए जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म एनर्जी मिले। और बच्चे भी जैसे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, या फिर आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से वो एज से पहले ही काफ़ी वेट गेन कर लेते हैं, या कुछ बच्चे जो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं जिनका एज के साथ उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, स्टंटेड ग्रोथ है, जो अब अभी हमारा न्यूट्रिशन वीक का मोटिव भी है कि माल न्यूट्रिशन को कैसे ख़त्म करना है। तो ये रेसिपीज बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में मोटे अनाज से रेसिपीज बना के खिलाई जाए, जैसे चीला बना के खिलाया जाए, या फिर जो जंक फूड वो पिज़्ज़ा उधर बाहर खा रहे हैं तो हम मूंग की दाल का पिज़्ज़ा बना के उन्हें अगर खिलाते हैं, चटनी लगा के आप जो मेयोनीज की जगह उसे, तो ऐसी रेसिपीज अगर हम ऐड करते हैं तो मोटा अनाज हम इंक्लूड कर पाएंगे डाइट में।
3: जो किशोर अवस्था की जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, किशोर होती हैं, और उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है या हो चुका होता है, तो बहुत पेनफुल होता है वो, तो उसके लिए ये किस तरह से सहायता करता है मोटा अनाज, और ये कितनी मात्रा में उनको हम दे सकते हैं।
2: मोटे अनाज में खासकर अगर हम रागी की बात करें तो उसे हमें स्टार्टिंग से ही, जब से एक गर्ल का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो रागी का अगर टेस्ट किसी को डेवलप नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़े ड्राई फ्रूट्स, रागी, गुड़, घी के साथ उसका एक लड्डू बना के रख सकते हैं, जो कि हमें डेली इवनिंग में उस गर्ल को देना चाहिए जिससे उसका कैल्शियम और आयरन इनटेक पूरा हो। और भी एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, अगर हम डेली एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ बचपन से अगर लड़की को शाम को खिलाते हैं जिसके पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो उसको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा।
3: अभी जैसे आपने जंक फूड की बात की थी, तो जंक फूड के साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड भी चल रहे हैं और बच्चे ने बहुत पसंद करते हैं, तो ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं?
2: आजकल जंक फूड जो है ये सबको ही पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। बट ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं ये हमारी स्किन को, हेयर को, हमारे स्पेशली गट को खराब कर रहे हैं।
3: जी,
2: हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सारी बीमारियों का जड़ जो भी है, सारी बीमारी की उत्पत्ति हमारे पेट से हो रही है। अभी हम जो भी चीज खा रहे हैं वो हमारे पेट पे जाती है, इसके बाद हमारा हेयर फॉल होता है, हमारी स्किन खराब होती है, हमारा पेट भार है, वजन बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, सारी चीजें हमारी पेट से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जंक फूड थोड़ा बहुत खाना उचित है, हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं। बाकी बच्चे क्योंकि उनकी एज है वो ये देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को इन्हीं सारी अच्छी चीज़ों से जो घर की है उसी से ही मिक्स एंड मैच करके रेसिपी बना के उन्हें देना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा जंक फूड से अवॉइड कर सके।
3: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जंक फूड को हम रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं, और बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है दिन भर में कितनी मात्रा में उसे मिलेट्स लेना चाहिए?
2: दिन भर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है जनरली सभी लोगों के लिए यंग एज से लेके ओल्ड एज तक कि हमें उसको 30 से 50 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। तो उसमें अगर हम कोशिश करें तो हम अगर हमारी 30 से 50 ग्राम में हमारा 20 ग्राम मिनिमम मिलेट्स हम ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा हैक हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जो हमारी रोटी बना रहे हैं उसमें अगर हम 20-30% उसमें मिलेट का आटा मिक्स करते हैं हमारे गेहूं के आटे में, तो एक छोटा सा है कि हम मिलेट्स डेली बेसिस पे ऐड कर पाएंगे।
3: क्योंकि मोटा अनाज जो होता है, जो साधारण अनाज है, खाने की हैबिट है हम लोगों की, तो रिप्लेस इतने जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे कर सकते हैं हम।
2: इसीलिए मैंने आपको यही बताया कि
3: धीरे
2: क्योंकि अभी हमें रोटी और चावल खाने की आदत है, गेहूं की रोटी हमारे सभी के घर में स्टेपल डाइट है, तो हमारी स्टेपल डाइट को एकदम मिलेट से रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत टफ है। तो हम धीरे धीरे उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम गेहूं के आटे में मिलेट का आटा ऐड करना स्टार्ट करें, हम जो चावल की खिचड़ी बनाते हैं उसमें हम एक मेजर पोर्शन बाजरा या फिर ज्वार ऐड करना स्टार्ट करें, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके उसको रिप्लेस कर पाएंगे।
3: बहुत अच्छी बात बताई, और साथ ही ये जानना चाहूंगी कि आपने खाने के बारे में तो बताया, अब पानी के विषय में और बताएं कि पानी दिन भर में कितना पीना चाहिए?
2: पानी वैसे तो हम कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए,
3: जी,
2: बट ये डिपेंड करता है कि किसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और वो किस एज कैटेगरी में भी है ये भी हम कह सकते हैं। तो मेजरली 8 ग्लास तो मिनिमम पीना ही चाहिए, अगर कोई जिम वर्कआउट करता है या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, फिर क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, अगर वो थोड़े शुष्क एरिया में रह रहा है तो फिर भी उसको 3-4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए।
3: और आजकल ये ठंडा गर्म पानी का भी चल रहा है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, तो ये कितना उचित है?
2: गर्म पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। गर्म पानी हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अच्छे से हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है, तो उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना अच्छा है।
3: दिन भर यदि गर्म पानी पिया जाए तो?
2: दिन भर गर्म पानी पीना ठीक नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे भोपाल में हम अभी हैं, तो भोपाल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की तासीर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीते रहो दिन भर तो वज़न कम होता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी की तासीर गर्म है और वो दिन भर गर्म पानी पीता है तो ये उसको नुकसान करेगा।
3: जो लोग घर में रहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन दोनों ही लोगों की डाइट में क्या अंतर होना चाहिए?
2: जो लोग एक्सरसाइज करते हैं
3: जी,
2: और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनके डाइट में सबसे बड़ा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का।
3: जी,
2: क्योंकि जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है।
3: जी,
2: तो हमें सबसे मेजर इस पे ध्यान देना है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना होना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं जो इंसान वर्कआउट नहीं करता, जो एक्सरसाइज नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ दिन भर अपने घर पे बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने हस्बैंड पे ध्यान देती हैं, घर का काम करती हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। हम ज्यादातर 3 बार खाना खाते हैं
3: जी,
2: तो हमारा नाश्ता हमें मेजरली अंकुरित रखना चाहिए। हम उसमें मूंग की दाल का चीला ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें उससे प्रोटीन मिले। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कोई अंडे की रेसिपीज ऐड कर सकता है उसमें जिससे उसे प्रोटीन इंटेक मिले। लंच टाइम में, लंच के और नाश्ते के बीच में हम एक प्लेट सैलेड या फिर एक प्लेट फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इस बीच में आप एक ग्लास छाछ भी ऐड कर सकते हैं।
3: अच्छा।
2: जिससे आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल जाए। लंच के टाइम पे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी थाली कैसी दिखनी चाहिए लंच में, कि हमारी आधी थाली में हमारी सब्जी और सैलेड होना चाहिए, बचे हुए आधी थाली का 1/3 हिस्से में हमारा एक कटोरी दही हो सकता है जिसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप उसमें अलसी डाल सकते हैं, आप उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं अच्छे फाइबर इनटेक के लिए। बचे हुए सेकेंड हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए जिसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम साधारण अनाज और हमारे मोटे अनाज को, मतलब गेहूं चावल और मिलेट्स को मिक्स कर पाएं। और एक बचे हुए हिस्से में आपकी जो भी सब्जी है, छोले हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए छोले राजमा ये भी एक प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन है। एंड डिनर हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सोने के कम से कम 3 से 4 घंटे के पहले कर पाएं और जितना हल्का हो सके उतना हल्का ले पाएं। तो हम मोटे अनाज की खिचड़ियां ले सकते हैं, चीले भी ले सकते हैं। और हफ्ते में 1-2 दिन जैसी हमारी दिनचर्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन हम अनाज स्किप भी करें रात को
3: जी।
2: जैसे उसमें हम ले सकते हैं कि हम वेजिटेबल सूप बना लें, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो एग या फिर मीट ले ले, और वेजिटेरियन है तो पनीर या टोफू ऐड कर सकता है वो अपने सूप के साथ।
3: मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्या सभी को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए?
2: बिल्कुल, सभी को अपनी एज के हिसाब से और अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों को हम देखते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स होता है उनका, वो बाहर खेलने जाते हैं, ये उनके लिए एक्सरसाइज है। उनसे थोड़े बड़े बच्चों की बात करें क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो उन्हें जब भी समय मिलता है वो आधे घंटे की वॉक कर सकते हैं। जैसे जो 10th-12th वाला जो पीरियड होता है जिसमें बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वो पढ़ते पढ़ते वॉक कर सकते हैं। रात को अगर वो पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही वॉक पे चले गए, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया, ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने से उनका ब्रेन और शार्प होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो हमारा स्ट्रेस को कम करता है, हमारे ग्रोथ हॉर्मोन को इनक्रीज करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है। वैसे अगर हम देखें कि हाउसवाइफ्स को, तो अगर वो घर से नहीं निकल पाती हैं या वो सुबह वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, ऐसे काफ़ी महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह मैं लंच बनाने में बिजी हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो वो शाम के टाइम पे कोई वीडियो लगा के डांस कर सकती हैं, एरोबिक्स कर सकती हैं, जो भी उन्हें पसंद है, वो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 1/2 आवर की तो ऐड करना ही चाहिए। बाकी जो लोग जिम जा सकते हैं उन्हें जिम जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कोई वर्कआउट नहीं है, स्पेशली फीमेल्स को अगर वो वक्त निकाल सकती हैं तो उन्हें जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए।
3: मैडम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन चलते चलते मैं आपसे यही एक बात दिमाग में आ रही कि आजकल बहुत से लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट लेना कितना उचित है, इसके विषय में कुछ बताएं।
2: सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल ठीक है अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, और फिर सप्लीमेंट्स की कुछ कैटेगरीज भी हैं, जैसे पहली कैटेगरी है प्रोटीन्स।
3: जी जी,
2: तो वे प्रोटीन आपने सुना होगा, वैसी प्लांट प्रोटीन्स भी आते हैं आजकल मार्केट में। अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड है, और आप डेली रिक्वायरमेंट अपनी नेचुरल फूड से जब आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, किसी दिन आप बिजी हैं, आपके घर में वो फूड ग्रुप नहीं बना है जिसमें प्रोटीन इनटेक है, तो आप अपनी बॉडी को एक स्कूप वे प्रोटीन दे सकते हैं। हमें डेली भी उसकी आदत नहीं डालनी है। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि आपने अपनी बॉडी को एक सप्लीमेंट किया है, एक रिप्लेसमेंट दिया है नेचुरल फूड ग्रुप का, बट ये हमारी लाइफ में पूरी तरीके से हमेशा कभी भी नेचुरल फूड ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरीज आती है जो टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिंस की, ओमेगा थ्री की, और वैरायटीज ऑफ विटामिंस की आती है, विटामिन सी डी, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, तो ये सारे सप्लीमेंट्स लेना ठीक है। और जो आपका कंसर्न है ये पूछने का कि इनसे लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, जो सप्लीमेंट जैसे स्टेरॉइड्स लेना या लो क्वालिटी के प्रोटीन इंटेक लेना, या फिर पूरी तरीके से ही कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो नेचुरली नहीं लेके सिर्फ दिन भर वो सप्लीमेंट से ही अपना पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सिर्फ मील रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं कि आप खाना ना खा के सिर्फ सप्लीमेंट ही लें। तो ऐसा फॉलो करना ठीक नहीं है। हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली ही हमारा डाइट में प्रोटीन और सारे मल्टीविटामिन्स वहीं से पूरे करें। किसी दिन नहीं होता है तो उसको लेना भी कोई बुरा नहीं है।
3: बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की उसका फायदा हमारे श्रोता अवश्य उठाएंगे। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय पर आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।
3: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। अब हमारी पूरी टीम को दे अनुमति, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद लंदन से न्यूयॉर्क आए। वहां उनका व्याख्यान, शिक्षा और पुस्तक रचना का कार्य शुरू हुआ। उनके व्याख्यान से सर्वत्र एक महान उत्साह की सृष्टि होती थी, जिसका वर्णन करते हुए न्यूयॉर्क के सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद पत्र न्यूयॉर्क हेरॉल्ड ने अपने 19 जनवरी 1896 के अंक में लिखा था,
1: आज के न्यूयॉर्क के समाज में स्वामी विवेकानंद नाम के किसी स्वामी ने जन मंडली को मुग्ध कर रखा है। और इन लोगों में धन एवं विद्वता का अभाव हो ऐसी बात नहीं, ये नाम है भारत से आए मटमैले रंग के एक सज्जन का, जो पिछले वर्ष भर से इस महानगरी में प्राच्य धर्म, दर्शन तथा साधना के कुछ रूपों का प्रचार करते हुए यशोकीर्ति की उपलब्धि करते रहे हैं। पिछली सर्दियों में 5th Avenue के एक प्रमुख होटल के स्वागत कक्ष में उनके भाषण होते रहे। स्वयं तथा अपनी विषय वस्तु के प्रति उच्चतर समाज की काफी स्वीकृति पा लेने के बाद अब वे सर्वसाधारण में प्रचार करने को उत्सुक हैं। और इसी उद्देश्य से हार्डमन हॉल में प्रति रविवार को निःशुल्क एक व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रयास काफी सफल रहा है।
2: स्वामी जी की कक्षाओं तथा व्याख्यानों की जो प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध हैं, उनके लिए हम मुख्यतः गुडविन के ही ऋणी हैं। परंतु उस काल के व्याख्यानों का जो धारावाहिक लेखमाला ब्रह्मवादिन पत्रिका के 8 अंकों में प्रकाशित हुआ था, उसका कुछ अंश स्वामी जी ने स्वयं लिखकर भेजा था। कृपानंद ने उनका टंकन किया। इसके लिए कृपानंद ने श्रीमती बुल से आर्थिक सहायता लेकर $5 मासिक भाड़े पर एक टाइपराइटर ले लिया था।
0: कृपानंद ने ब्रह्मवादिन पत्रिका में लिखा था,
3: उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहने वालों की सर्वदा बढ़ती हुई संख्या तथा उनके रविवारीय सार्वजनिक व्याख्यानों में आने वाली श्रोताओं की भारी भीड़ इस बात का सूचक है कि उनके उपदेशों ने लोगों के मन में कैसा व्यापक आग्रह पैदा कर दिया है। इसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण ये है कि वेदांत संबंधी साहित्य की मांग बढ़ती ही जा रही है और ऐसे लोगों के मुख से संस्कृत शब्द उच्चारित हो रहे हैं जहाँ से हम उन्हें सुनने की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष तथा इसी प्रकार के अन्य शब्द अमेरिकी भाषा में अपना लिए गए और शंकराचार्य एवं रामानुज के नाम बहुतों के लिए हक्सले तथा स्पेंसर के समान ही सुपरिचित हो चले हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत संबंधी पुस्तकों के पीछे दौड़ रहे हैं। मैक्स मुलर, कोलब्रुक, डायसन, बनोफ तथा हिंदी दर्शन पर अंग्रेजी में लिखने वाले सभी लेखकों की किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं।
0: उन्हीं दिनों डॉक्टर स्ट्रीट ने स्वामी जी से संन्यास लिया। वे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समाज में सुपरिचित थे, इसीलिए चारों ओर खलबली मच गई। पत्र पत्रिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर संवाद छपने लगे। एक ने लिखा था,
1: जो लोग स्वामी विवेकानंद के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं उन लोगों के जीवन में कल्याण साधन करने की स्वामी जी में असीम क्षमता है। ये घटना इसी बात का प्रमाण है, पहले जो लोग दूर से ही स्वामी जी को केवल प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे, अब उनमें से भी कोई कोई उनके अनुरागी भक्त हो गए और दीक्षा तथा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करने लगे हैं। 20 फरवरी को इनमें से अनेक लोगों को स्वामी जी से मंत्र दीक्षा मिली। अमेरिकी जनसाधारण का इन दिनों स्वामी जी के साथ बड़ा अपनत्व हो गया है।
0: इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कृपानंद ने विनोद पूर्ण शैली में लिखा था,
3: भारत को चाहिए कि वह स्वामी जी पर अपने स्वामित्व का दावा अभी स्पष्ट कर ले। यहां के लोग अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विश्वकोश के लिए उनकी जीवनी लिखकर उन्हें अमेरिकी नागरिक का दर्जा प्रदान करने ही वाले हैं। जैसे होमर का जन्मस्थान होने का सम्मान पाने के लिए 7 नगरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, वैसे ही संभव है भविष्य में 7 देश हमारे आचार्य देव पर अपनत्व का दावा करें और इस प्रकार भारत को अपने एक सर्वश्रेष्ठ संतान की जननी होने के गौरव से वंचित कर दें।
0: सिर्फ 1-2 नहीं, अनेकों अमेरिकी वासियों ने स्वामी जी के बारे में, उनके व्याख्यानों और भाषणों के बारे में संवाद पत्रों, पत्र पत्रिकाओं या संस्मरणों में लिखा था। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियत्री श्रीमती एमा हवीलर विलकॉक्सी भी उनमें से एक थी। स्वामी जी से मुलाकात के बारे में याद करके उन्होंने लिखा था,
4: एक वर्ष पूर्व एक दिन शाम को मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र एक ब्लॉक की दूरी पर भारत से आए दर्शन के प्रचारक एक विवेकानंद नामक व्यक्ति का भाषण होगा। कौतूहलवश हम यानी मैं और मेरे पति भी वहां गए और श्रोताओं के बीच बैठकर भाषण सुनते हमें 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को एक अत्यंत सूक्ष्म सजीव तथा अद्भुत जगत में उन्नीत महसूस किया और हम लोग व्याख्यान के अंत तक प्रायः सांस रोके मंत्रमुग्ध से बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर हम नए साहस, नई आशा, नए बल, नए विश्वास के साथ दैनंदिन जीवन में लौट गए। मेरे पति बोले, ईश्वर और जीवन के बारे में यही धारणा तो मैं ढूंढता फिर रहा था और इसके बाद महीनों तक वे मुझे साथ लेकर स्वामी विवेकानंद के मुख से प्राचीन धर्म की व्याख्या सुनने और उनके अद्भुत मन से निस्तृत सत्य तथा आशाप्रद एवं शक्तिदायी विचारों का संग्रह करने जाते रहे।
2: उन दिनों अमेरिकी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हवीलर उन भयंकर दिनों को याद करके लिखती हैं।
4: वे उस महान आर्थिक संकट के भयंकर जाड़ों के दिन थे जब बैंक फेल हो चुके थे, कंपनियों के शेयर फटे गुब्बारों के समान नीचे उतर रहे थे, व्यापारी लोग निराशा की अंधेरी घाटी से होकर गुजर रहे थे और पूरी दुनिया ही उलट पलट गई सी प्रतीत हो रही थी। कभी कभी चिंता और अनिद्रा में कई रातें बिताने के पश्चात पतिदेव मुझे साथ लेकर स्वामी जी का व्याख्यान सुनने जाते और फिर बाहर निकलकर जाड़े की अंधियारी रात में सड़क पर चलते हुए मुस्कुराहट के साथ कहते,
5: स्वामी जी बोल रहे थे ना कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे बड़ी शांति मिली, मेरा अशांत मन शांत हो गया है, अब कल से मैं अपनी सामान्य दिनचर्या कायम कर सकूंगा, अब मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। उस व्यक्ति में गजब का हीलिंग पावर यानी उपचार करने की शक्ति है, लोगों को अवसाद से, मानसिक तनाव से पल भर में उबार कर आनंद के द्वार पर खड़ा कर देते हैं।
2: हवीलर दंपति सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इस अद्भुत धर्म का अध्ययन करना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन के वे कायल हो गए। बाद में उन्होंने लिखा,
4: विवेकानंद हमारे बीच में एक संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें किसी नए विश्वास में रूपांतरित करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने ही विश्वास में प्रतिष्ठित रहो। मैं मेथोडिस्ट को एक बेहतर मेथोडिस्ट, प्रेसिबिटेरियन को एक बेहतर प्रेसिबिटेरियन और यूनिटेरियन को एक बेहतर यूनिटेरियन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने व्यवसायी को बल दिया, चंचल स्वभाव की सामाजिक महिला को थोड़ा रुक कर सोचने को मजबूर किया, कलाकार को नई प्रेरणा दी और पत्नी एवं माता, पति एवं पिता के प्रति लोगों में एक बेहतर एवं पवित्रतर कर्तव्य बोध का संचार किया।

0: दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। बड़े दिन यानी क्रिसमस के उपलक्ष में श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी आमंत्रण स्वीकार कर बोस्टन गए। वहां कैम्ब्रिज की महिलाओं द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने भारतीय नारी जाति का आदर्श विषय पर एक सुंदर व्याख्यान दिया। वहां की महिलाएं इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने स्वामी जी को बिना बताए कलकत्ते में उनकी माँ को धन्यवाद देकर पत्र लिखने का विचार किया। बालक ईसा और मैरी माता के एक चित्र के साथ उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा।
1: जगत के कल्याण की जननी मेरी माता के दान स्वरूप ईसा मसीह के आविर्भाव का दिन हम आज उत्सव के आनंद में बिता रही है। अपने बीच में आपके पुत्र को पाकर आज हम आपका श्रद्धा के साथ अभिवादन कर रही हैं। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से भारत में मातृत्व के आदर्श के संबंध में भाषण देकर उन्होंने हमारे नर नारी और बच्चों का महान उपकार किया है। उनकी मातृ पूजा श्रोताओं के हृदय में शक्ति व उन्नति की उच्चाकांक्षा जगा देती है। आपकी संतान में आपके जीवन व कार्य का जो प्रभाव प्रकट हुआ है उसकी सम्यक रूप से उपलब्धि करती हुई हम आपकी सेवा में अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट कर रही है। भ्रातृत्व व एकता के जो नियंता है उस ईश्वर का मंगल आशीर्वाद समग्र पृथ्वी पर फैल जाए। हृदय में इस आकांक्षा को लेकर आपका जीता जागता आदर्श उन्हें कार्य क्षेत्र में सदा अनुप्राणित करें, यही हमारी दुआ है। इस बात के साथ ही हमारी कृतज्ञता आप स्वीकार करें।
2: बोस्टन से डिट्रॉइट होकर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौट आए। वहां उन्होंने वेदांत चर्चा और योग की शिक्षा के लिए एक स्थायी केंद्र बनाने का निश्चय किया।
0: इधर इंग्लैंड से बार बार निमंत्रण आने लगा। ये पहले से ही निश्चित था कि स्वामी जी इंग्लैंड से भारत लौटेंगे। तदनुसार शिष्य व भक्तों के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने स्थायी रूप से न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। प्रसिद्ध धनी श्री फ्रांसिस एच लेगेट महोदय गुरुदेव की सम्मति व इच्छा के अनुसार इस सोसाइटी के सभापति बने। भगिनी हरिदासी को स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर योग शिक्षिका नियुक्त किया। स्वामी कृपानंद, अभयनंद, योगानंद तथा कुछ ब्रह्मचारी प्रचारक नियुक्त हुए।
2: असाधारण दानशील कुमारी मैरी फिलिप, ऑर्थर स्मिथ, श्री व श्रीमती वॉल्टर गुडायर तथा प्रसिद्ध गायिका कुमारी एमा थर्सबी आदि न्यूयॉर्क के नामी शिष्य व शिष्याएं उत्साह से समिति का कार्य चलाने लगे। शिष्य वर्ग की सम्मति व अनुरोध से स्वामी जी ने अपने गुरु भाई सारदानंद जी को शीघ्र इंग्लैंड की ओर यात्रा करने के लिए पत्र लिखा। इंग्लैंड से इस स्वामी को न्यूयॉर्क में भेजने का वचन देकर स्वामी जी ने 15 अप्रैल सन 1896 ईस्वी को फिर से लंदन की ओर प्रस्थान किया।
0: सन 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वे रीडिंग में स्थित स्टर्डी के मकान पर गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को लिखा,
3: यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। समुद्र पीड़ा से बचने के लिए मैंने स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर ली थी। आयरलैंड के बीच से होकर तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों को देखते हुए मैं एक चक्कर लगाया और अब पुनः रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा आदि के बीच हूं। दूसरे सन्यासी भी यहां हैं। इस समय हम लोग ग्रंथों के संपादन में लगे हुए हैं। रास्ते में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। यात्रा मेरे जीवन के समान ही अत्यंत नीरस, एक रस तथा गद्यमय रही। जब मैं अमेरिका के बाहर जाता हूं तभी उसके प्रति अधिक प्रेम उमड़ता है। जो भी हो, जीवन का अब तक जितना अंश बीता है उसमें वहां बीते कुछ वर्ष ही सर्वोत्तम रहे हैं।
0: अमेरिका से आचार्य देव का पत्र पाकर स्वामी सारदानंद बिना विलंब इंग्लैंड में उपस्थित हो गए थे और अप्रैल मास के प्रारंभ से स्टर्डी साहब के अतिथि के रूप में निवास करते हुए पूर्व स्थापित आलोचना समिति में धर्म का उपदेश दे रहे थे। स्वामी जी अप्रत्याशित रूप से उन्हें स्टडी साहब के मकान पर देख आनंद विभोर हो उठे। कहना ना होगा कि शारदानंद जी भी बहुत समय से लापता नरेंद्रनाथ को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। आचार्य देव उत्सुकता से आलम बाजार मठ व दूसरे श्री रामकृष्ण भक्तों का कुशल समाचार जानकर निश्चिंत हुए।
2: शारदानंद और स्वामी जी ने लंदन के सेंट जॉर्ज लेन में कुमारी मुलर व श्री स्टर्डी के अतिथि के रूप में रहते हुए पूर्ण उद्यम व उत्साह से प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद के फिर वापस आ जाने का शुभ समाचार सुनते ही सैकड़ों स्त्री पुरुष उनका दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने के लिए आने लगे। समाचार पत्रों में उनके कार्य प्रणाली की विस्तृत खबरें प्रकाशित होने लगी। मई मास के प्रारंभ से स्वामी जी नियमित रूप से शिक्षा दान व प्रश्नोत्तर कक्षाओं को चलाने लगे और ज्ञान योग पर भाषण देने लगे। मई महीने के बाद में उन्होंने भक्ति कर्म और योग के संबंध में कुछ उत्कृष्ट भाषण दिए। क्लब सभा समिति ड्राइंग रूम इत्यादि में भाषण देने के लिए वे प्रतिदिन बुलाए जाने लगे। श्रीमती एन ए बेसेंट द्वारा आमंत्रित होकर स्वामी जी ने उनके एवेन्यू रोड स्थित भवन में भक्ति पर भाषण दिया।
0: श्रीमती मार्टिन नाम की एक धनी महिला ने अगले दिन स्वामी जी को अपने घर पर भाषण देने के लिए बुलाया। उन्होंने वहां आत्मा के संबंध में भारतीयों की धारणा विषय पर एक भाषण दिया। 14 जून के द लंडन अमेरिकन नामक संवाद पत्र में छपा था,
4: स्वामी जी ने हिंदू धर्म को केवल जड़ या अंध पौतलिकता के अपवाद से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एक उन्नत व समुच्चल भाव में प्रतिष्ठित कर दिया है कि उसके प्रति मानव जाति की श्रद्धा हुए बिना नहीं रह सकती। बुधवार के दिन बारिश होते हुए भी काफी संख्या में भद्र पुरुष व महिलाएं श्रीमती मार्टिन का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई थी। यहाँ तक कि राज परिवार के भी कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से इस सभा में उपस्थित थे।
2: उन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक स्मरणीय घटना घटी, वो है विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात होना।
0: विशेष रूप से आमंत्रित होकर स्वामी जी ने ऑक्सफोर्ड में जाकर 28 मई को विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ साक्षात्कार किया। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इससे पहले 19th सेंचुरी नामक पत्रिका में श्री रामकृष्ण के संबंध में प्रकृत महात्मा शीर्षक से जो निबंध लिखा था, उसे पढ़कर स्वामी जी ने पहले से ही इनसे साक्षात्कार करने का निश्चय किया था। मैक्स मुलर साहब ने कहा,
5: श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर केशव चंद्र के धर्म मत के एकाएक परिवर्तन होने से सबसे पहले उसकी ओर मेरी दृष्टि आकृष्ट हुई। उस समय से ही उस महात्मा की जीवनी व उपदेश के संबंध में जहां पर जो कुछ मिला उसको मैं श्रद्धा तथा भक्ति से पाठ करता आ रहा हूँ। यदि आप मुझे आवश्यक साधनों का संग्रह कर दे सकें तो मैं श्री रामकृष्ण की एक जीवनी लिखने के लिए तैयार हूँ।
2: स्वामी जी बड़े हर्ष पूर्वक सहमत हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा रचित श्री रामकृष्ण की जीवनी व उपदेशों नामक विख्यात ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक द्वारा स्वामी जी के पाश्चात्य देशों में प्रचार कार्य की यथेष्ट सहायता हुई थी।
0: भारत वर्ष के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मुलर के असीम ज्ञान का परिचय पाकर स्वामी जी बड़े विस्मित हुए। भारत वर्ष के प्रति प्रोफेसर के प्रेम ने स्वदेशी प्रेमी सन्यासी को मुग्ध कर दिया। स्वामी जी ने उल्लासित होकर पूछा,
6: आप कब भारत जाएंगे? भारतीय जनता आपको सानंद स्वागत करेगी। आपने हमारे पूर्वजों के चिंतनों का अध्ययन किया है, वाह!
5: जरूर जाऊंगा, पर हो सकता है मैं वहां से वापस ना लौटूं। मेरा अंतिम संस्कार आप लोगों को वहीं करना पड़ेगा।
0: रात को आंधी पानी में भी वृद्ध प्रोफेसर स्वामी जी को विदा देने स्टेशन पर आए। स्वामी जी लज्जित होकर बोल उठे,
6: अरे आप, मुझे विदा देने के लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया इस आंधी तूफान में?
5: आप जैसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता।
2: इस मुलाकात के बाद दोनों की मित्रता प्रगाढ़ हो गई। स्वामी जी आजीवन मैक्स मूलर साहब के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। हालांकि दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, पर दोनों नियमित पत्र व्यवहार करते थे।
0: जिन अंग्रेज शिष्य व शिष्याओं ने स्वामी जी के कार्यों में आत्मजीवन उत्सर्गित किया था, उनमें से कुमारी मूलर, कुमारी नोबल यानी सिस्टर निवेदिता, श्री गुडविन, श्री स्टडी आदि का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरी बार इंग्लैंड में आकर स्वामी जी ने कैप्टन सेवियर तथा श्रीमती सेवियर को शिष्य के रूप में प्राप्त किया। धर्मपरायण सेवियर दंपत्ति उनके भारतीय कार्य के लिए आत्म उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। श्रीमती सेवियर शिष्या बनकर भी स्वामी जी की मात्र स्थानिया थी। स्वामी जी उन्हें माँ कहकर पुकारते थे।
2: लंदन में रहते समय विभिन्न शिष्य और भक्तों के साथ स्वामी जी यूरोप भ्रमण करने गए थे। उन रोचक स्थानों में स्वामी जी के अनुभवों के बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यही संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी सुनिएगा, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां। और इसके बाद प्रस्तुति होगी सुगन देवी गंधर्व के गायन की। तो सबसे पहले पेश है सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है। न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
1: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
0: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बन समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मंचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
1: नहीं नहीं, कुछ और कहो ना मेरी तारीफ में।
0: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
1: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
0: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग पे सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डाल दे।
1: सच, मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा। पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
0: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
1: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
0: हाँ?
1: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
0: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए। पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं, ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
1: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
0: क्या?
1: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह प्यू प्यू करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
0: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
1: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
0: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओ, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उल्हाने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
1: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
0: क्या?
1: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: अरे,
1: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
0: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था, और अब यकायक ये।
1: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार।
1: और
0: आप कहती हैं कि
1: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
0: कैसे?
1: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
0: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
1: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस वर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
0: एसएमएस?
1: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
0: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
1: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
0: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
1: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
0: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
1: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
0: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
1: जहाँ तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
0: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
0: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
1: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठ कर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
0: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
1: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
0: अरे बेटा रिंकू, मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
1: बाय
3: बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
0: चाय की पत्ती कहाँ रखी है, पानी उबला जा रहा है, औरत जानते भी ना जाओ, चीजें ना जाने कहाँ का रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। हमने भाग मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके ठीक है ठीक है, करता हूँ यार करता हूँ। अच्छा अच्छा ओके, बाय बाय बाय बाय।
2: ऋतु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी ऋतु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
0: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
2: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
1: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। यह आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बे टिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए, मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपके रितु।
2: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे वह, इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
0: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
0: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
0: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
0: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
0: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
0: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
5: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
0: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
4: अच्छा?
0: वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं।
4: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
0: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
0: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
0: हाँ
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
0: बता यार।
4: कुछ फिल्में देख डाल
0: है?
4: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
0: हाँ?
4: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
0: हाँ?
4: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
0: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
4: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
0: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
4: बाय बाय।
2: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली।

0: लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
1: हा हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा, तब कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूँ या आरजू ये जहाँ कहूँ, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना न नींद आती है न चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं, चलो।
2: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने, ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं है? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
1: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता। मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
2: अच्छा यार एक काम कर तू,
1: बोल।
2: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
1: हाँ।
2: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
1: आता हूँ भाई आता हूँ। कौन टपक पड़ा यार?
3: अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी क्या?
4: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
1: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
4: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
1: गॉड।
0: नीरज मन ही मन खुश था। नीरज की मुसीबत टल चुकी थी। पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी। खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी। आंखों से प्रेम की धारा नहीं, आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
4: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
1: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
4: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
1: क्या?
4: अरे क्या समझाता तुम्हें, और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
1: क्या कह रही हो?
4: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
1: क्या कह रही हो?
4: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम। तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
1: पाप? ओ हो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
4: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
1: अरे तुम
4: उसकी इबारत पढ़ो ना तुम, खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
1: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
4: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी, ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गलत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
1: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
4: और ये आगे भी तो देखो।
1: अरे
4: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में हजार झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तो।
1: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
4: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है ना?
1: हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
4: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरे कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
1: अरे यार,
4: और आगे ये देखो, ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
1: अरे क्या?
4: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
1: अरे यार
4: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
1: अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
4: ओहो बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार, कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
1: अरे जाने मन क्या।
4: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
1: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
4: बिल्कुल नहीं।
1: तो तुम अशोक को बुला लो, अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज यार, ऐसा कर।
2: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
4: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं, पर हरकत, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक मैं आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
2: ओहो तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
4: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
2: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
4: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है, बेचारे इतना जुर्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
0: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन वीणा वादन, जिसे पेश करेंगे मनीष पिंगले और साथी, और उसके बाद सुनिएगा कबीर गायन, जिसके कलाकार होंगे भैरू सिंह चौहान और साथी। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन वीणा वादन, प्रस्तुति मनीष पिंगले और साथियों की।

तो श्रोताओं, इस वादन के बाद अब आपको हम सुनवा रहे हैं कबीर गायन, जिसे पेश कर रहे हैं भैरव सिंह चौहान और साथी कलाकार।

देखिए हमारी सबकी ये शरीर रूपी चुनरी को सदगुरु ने सराबोर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान रूपी रंग के माध्यम से लाल लाल कर दीनी है। आगे मोरे सदगुरु जी ने दीनी है ज्ञान जड़ी। पद प्रस्तुत हैं।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, लियो टॉल्स्टॉय रूसी भाषा के महान साहित्यकार हुए हैं। उन्हें महर्षि या महात्मा टॉल्स्टॉय भी कहा जाता है। जिस 19वीं सदी में वो हुए, वो संक्रमण का दौर था। एक जमाना जा रहा था तो दूसरा अपने पांव जमा रहा था। एक ओर विदा लेती हुई जमींदारी और जागीरदारी प्रथा थी तो दूसरी ओर मशीनीकरण और औद्योगीकरण की हरहराती लहर। उनका जन्म सन 1828 में एक संपन्न सामंत परिवार में हुआ था, लेकिन वो सेना में भर्ती हो गए। मन यहां भी न लगा, तबीयत में लेखन बसा हुआ था, सो लिखने लगे। उनकी वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना साहित्य जगत में क्लासिक रचनाएं मानी जाती हैं। श्रोताओं, धन दौलत और साहित्यिक शोहरत के बावजूद टॉल्स्टॉय मन की शांति के लिए तरसते रहे। उनकी शादी साफिया बेहर्स नाम की एक उच्च वर्गीय महिला से हुई थी। शादीशुदा जिंदगी का पूर्वार्ध तो उनका अच्छा भी था, लेकिन उत्तरार्ध कटुतापूर्ण हो गया। वजह यह थी कि टॉल्स्टॉय अपनी पत्नी में भारतीय नारी का गुण चाहते थे, जबकि साफिया रूसी संभ्रांत वर्ग से ताल्लुक रखती थी, जिसके आदर्श बिल्कुल भिन्न थे। अंततः 1890 में उन्होंने अपनी समस्त धन संपत्ति त्याग दी और घर बार छोड़कर ईश्वर की आराधना तथा गरीबों की सेवा में लग गए। लेकिन स्वास्थ्य ने ज्यादा साथ ना दिया। सन 1910 में एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर अमीर घराने में जन्मे और सरस्वती के महान साधक इस महात्मा ने एक निराश्रित गरीब व बीमार बूढ़े के रूप में दुनिया को अलविदा कहा। टॉल्स्टॉय एक युग पुरुष थे। दुनिया की अनेक महान हस्तियां उनसे प्रभावित रही हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी। सादगीपूर्ण जीवन और साध्य की पवित्रता संबंधी टॉल्स्टॉय के विचारों ने गांधी जी को गहरा प्रभावित किया। टॉल्स्टॉय की एक किताब है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस किताब से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। टॉल्स्टॉय व गांधी दोनों ही जीवन की समस्याओं का समाधान प्रेम की शक्ति से करने के पक्षधर थे। गांधी जी ने लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने मेरे भीतर फैले संदेह के अंधियारे को हटाकर मुझे अहिंसा के मार्ग का अनुयायी बनाया है। श्रोताओं, टॉल्स्टॉय साहब ने विपुल साहित्य रचा है, जिसमें से एक छोटी सी बूंद उठाकर हम आपकी नजर कर रहे हैं। ये रूसी भाषा में लिखी एक सुंदर कहानी है, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया गया है, हेयर लव इज गॉड इज। हिंदी में हम इसे नाम दे रहे हैं, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। इस कहानी का प्रधान पात्र मार्टिन नाम का एक चर्म शिल्पकार है। भाग्य का मारा, जवानी में ही औरत ना रही, बच्चे जो हुए सब छुटपन में ही मर गए। बस एक 3 साल का बालक था जो औरत उसे सौंप कर गई थी। मन में आया इसे बहन के पास भेज दूं, लेकिन मन का मोह अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर ना कर सका। नौकरी छोड़कर किराए का एक घर ले लिया, जिसमें बच्चे के साथ रहने लगा और लोगों के जूते चप्पल सीकर गुजर बसर करने लगा। काश उसके दुखों का यहां अंत हो जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दुख आते हैं तो रेले में आते हैं। बच्चा 12 साल का हो गया था। मार्टिन को लगने लगा अब जिंदगी की गाड़ी थोड़ी पटरी पर आ गई है। मगर तभी बच्चे को ज्वर शुरू हो गया, जो बढ़ता ही गया और एक हफ्ते के बाद वो बच्चा भी चल बसा।
2: भगवान अब मुझे उठा लो, इतने कठोर कैसे हो तुम? मेरा इकलौता सहारा, नन्ही उम्र का इतना प्यारा बालक, उस पर भी रंग ना आया तुम्हें, उसे उठा लिया तुमने और इस बूढ़े को छोड़ दिया। नहीं नहीं तुम नहीं हो, नहीं हो तुम। झूठ कहते हैं लोग कि भगवान है दुनिया में, भगवान इतना निर्दय कैसे हो सकता है? नहीं भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता किसी भगवान को, भगवान नहीं है। बकवास है भगवान में विश्वास, बकवास।

0: श्रोताओं, हम में से कईयों के साथ ऐसा होता है, जब आफतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लगने लगता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। ऐसा स्वयं टॉल्स्टॉय के साथ भी हो चुका है। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया कि ईश्वर पर से उनकी आस्था उठ गई और यहां तक कि वे आत्महत्या के लिए सोचने लगे। लेखक के जीवन का संघर्ष, उसका दुख दर्द उसके पात्रों में ही झलकता है। सच कहें तो पात्र भी लेखक के जीवन के विभिन्न पहलू ही होते हैं। अतः मार्टिन के मन में उठ रहे नास्तिकता संबंधी विचार कहीं ना कहीं टॉल्स्टॉय के खुद के विचारों की ही झलक देते हैं। अब आगे
1: कहो मार्टिन, कैसे हो?
2: क्या कहें चाचा, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। औरत गई, सब बच्चे मरते रहे, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर सारा मुझसे छिन गया। 12 साल का लड़का बुखार में चल बसा, कैसे सहूं ये दर्द। अब तो यही लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, नहीं है।
1: ऐसा न कहो बेटा, भगवान की माया अपरंपार है। वो कब क्या और क्यों कोई चीज करता है, उसे हम इंसान नहीं समझ सकते। अब उसकी मर्जी थी कि बच्चा चला जाए और तुम जियो, तो वैसा ही हुआ।
2: अरे ऐसी कैसी मर्जी चाचा, हद है, मर्जी है कि ताना शाही है। बंदों को सताना ही अगर उसकी मर्जी है तो उसे भगवान क्यों माने हम?
1: बेटा, समस्या की जड़ तो यही है कि तुम बस अपने सुख के लिए जीना चाहते हो।
2: अरे तो और किसके लिए जीना चाहिए मुझे?
1: भगवान के लिए मार्टिन, गॉड के लिए। उसने हमें जीवन दिया, सो हमें उसी के लिए जीना चाहिए ना। जो लोग ये सोच लेते हैं कि ईश्वर के लिए जीना है, ईश्वर की मर्जी से चलना है, जिनकी अपनी मर्जी कुछ नहीं होती, ईश्वर की मर्जी में ही जो अपनी मर्जी मिला देते हैं, उनका जीवन बिल्कुल पानी की तरह सरल हो जाता है।
2: तुम्हारी बातें मेरी तो समझ में नहीं आती चाचा।
1: अच्छा तो एक काम करो, ये पोथी तो तुम पढ़ सकते हो ना? एंजल की एक पोथी ले जाओ और उसे पढ़ो, बाकी खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा।
0: मार्टिन को उस बूढ़े बाबा की बात ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आई, मगर उसने सोचा पोथी पढ़ने में क्या हर्ज है, ये भी करके देख लेते हैं। बाजार से टेस्टामेंट खरीद लाया, लालटेन की रोशनी में उसे पढ़ा करता। उसे लगा उसके अंदर कुछ शांति आ रही है, उसका दिल हल्का होने लगा, अपने आप उसके मुंह से निकल पड़ा, हे ईश्वर, तू ही तू, तू ही जगत का आधार, जैसी तेरी मर्जी वैसा हो। उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। पहले कभी कभार दारू पी लेता था, मगर अब ये आदत छूट गई। दिन भर वो काम करता और शाम को दिया जलाकर पोथी पढ़ने बैठ जाता।
2: चलो, काम काज से तो छुटकारा मिला, अब पोथी बांट लूं थोड़ा। कहां था कल मैं? हाँ, सेंट ल्यूक की कहानी पढ़ रहा था।
3: क्या लिखा है इसमें? जो तेरे एक गाल पर चांटा मारे, दूसरा गाल भी तू उसके आगे कर। जो तेरा कोट उतारना चाहे, अपना कुर्ता भी उसे दे दे। जो भी कुछ ले जाए, उससे वापस तू कुछ ना मांग। सबके साथ तू वैसा ही बर्ताव कर जैसा तू खुद के साथ चाहता है। कितने सुंदर विचार हैं, कितनी सुंदर सोच। और यहाँ क्या लिखा है? एक पापन अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पांव फकार रही है और अपने केशों से उन्हें पोंछ रही है। धन्य माई, धन्य धन्य है तुम्हारी भक्ति। और ये 40वें अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु यीशु साइमन से कह रहे हैं कि इस स्त्री को देखो, मैं तुम्हारे घर पर अतिथि हूँ, मगर तुमने मेरे पैरों पर पानी भी नहीं डाला। और एक ये है जो अपने आंसुओं से मेरे पैर धो रही है। तुम मुझसे बच रहे हो और ये अपने स्नेह से मुझे भिगो रही है। जरूर वो व्यक्ति मेरी तरह रहा होगा, बस अपने बारे में सोचने वाला, अपनी ही चिंता, मेहमान की चिंता नहीं। और मेहमान भी कौन? खुद भगवान। कहीं अगर वो मेरे यहां पधार जाए तो क्या मैं भी वैसा ही करूंगा?
0: सोचते सोचते मार्टिन को नींद आ गई। नहीं नहीं, नींद नहीं, तंद्रा समझ लीजिए, अर्ध निद्रा की अवस्था, जिसमें कुछ होश था और कुछ नहीं था। बाहर की दुनिया की खबर भी थी और नहीं भी थी।
4: मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन,
3: कौन? किसी ने बुलाया मुझे? पता नहीं सपना था या सच। ऐसा लगा कोई आवाज दे रहा है मुझे।
4: हाँ मार्टिन, सुनो, कल गली पर ध्यान रखना, मैं आऊंगा तुम्हारे घर।
3: कौन? कौन? अरे किसी ने कुछ कहा? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कैसी? जैसे साक्षात प्रभु यीशु बोल रहे हो। कह गए कल मैं आऊंगा, क्या सचमुच प्रभु?
0: पता नहीं सपना था या सच, मगर मार्टिन अगले दिन अपने कमरे की खिड़की से बाहर गली में नजरें टिकाए देखता रहा। उसका मन काम में कम और गली में अधिक लगा हुआ था। अधिकतर आने जाने वालों को उनके जूतों से वो पहचानता था। पास पड़ोस में शायद ही किसी का भी जूता हो जो उसके हाथों से ना निकला हो। उसने देखा एक झल्ली वाला चमचमाते जूतों में गली से निकला, फिर एक कहार गया, कभी राजा का सिपाही रहा, एक बूढ़ा आदमी गुजरा जिसका नाम स्टेपान था। वो फावड़े से बर्फ हटाने लगा। और भी ढेरों लोग गुजरे, लेकिन भगवान ना गुजरे। वो सोचने लगा, मैं भी निरा मूर्ख हूं, बुढ़ापे में बहकने लगा हूं, भगवान की बाट जो रहा हूं। मार्टिन ने देखा बूढ़े स्टेपान की कमर झुक गई है, थोड़ा फावड़ा चलाने पर ही वो हांफने लगा है। उसके मन में आया, अगर मैं बुलाकर चाय पूछ लूं तो।
2: हाँ हाँ स्टेपान, तुम्हें बुला रहा हूँ, भीतर आ जाओ, आ जाओ भीतर, चाय की एक चुस्की हो जाए, थोड़ा गर्मा लो।
5: भगवान तुम्हारा भला करे मार्टिन। क्या गजब की ठंड है। मेरी तो हड्डियों में भी बर्फ तड़क रही है, जोर जोर दुख रहा है।
3: बाप रे, तुम्हारी तो पूरी देह पर बर्फ लिपटी हुई है स्टेपान, झाड़ लो इसे। अरे ये क्या, बाहर क्यों जा रहे हो?
5: तुम्हारी फर्श खराब हो जाएगी, बर्फ बाहर झाड़ कर आता हूँ।
3: अरे ऐसा भी क्या, फर्श साफ हो जाएगी? अरे रोज ही साफ होती है, इसमें काहे की चिंता, बैठो चाय पियो। हाँ लो।
5: शुक्रिया दोस्त, शरीर में गर्मी आ गई, ठंड के मारे पूरी देह अकड़ गई थी।
3: अरे अरे अभी क्लास को उल्टा करने की जरूरत नहीं है, ठंड काफी है, एक एक गिलास और हो जाए चाय।
6: ये तुम खिड़की से बाहर बार बार क्यों झांक रहे हो? कोई आने वाला है? किसी का इंतजार है क्या?
3: अब तुमसे क्या कहूँ, झेप हो रही है। सच पूछो तो इंतजार तो नहीं है, पर कल रात एक आवाज सुनी थी जो दिल से दूरी नहीं होती। पता नहीं सचमुच कोई था या कोई सपना था। रात में मैं एंजल बाँच रहा था, उसमें प्रभु यीशु की बातें लिखी हैं, कितनी तकलीफ उठाई उन्होंने पर कितना प्रेम दिया सबको।
6: सुना तो मैंने भी है, पर मैं अनपढ़ हूं ना, समझता बूझता कम है ना।
3: कितने महान थे वो, पापी से पापी व्यक्ति से भी प्रेम किए उन्होंने। वो कहते थे जो तनेगा उसका सिर नीचे होगा, जो झुकेगा वही उठेगा। अरे ये क्या, तुम तो रो रहे हो।
5: नहीं बस यूं ही।
3: लो लो चाय पियो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पियो।

0: अब इजाजत दो दोस्त, तुमने बड़ा उपकार किया मुझ पर, जो इतनी ठंड में तुमने मेरे तन व मन दोनों को खुराक दी, बड़ा सुख पहुंचाया मेरे को।
1: अरे रे रे, उपकार की कैसी बात, सुना नहीं ईसा मसीह ने क्या कहा है, एक ग्लास चाय और हो जाए, ठंड काफी है।
0: नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब चलूंगा मैं।
1: अच्छा।
2: स्टेपान के जाने के बाद मार्टिन फिर जूते सिलने बैठ गया, लेकिन उसका मन खिड़की पर ही टंगा हुआ था। आने जाने वालों पर नजर थी उसकी। उसने देखा दो सिपाही उधर से निकले, फिर पड़ोस के एक मकान मालिक निकले, फिर एक झब्बा लिए नानबाई उधर से गया, और भी न जाने कौन कौन गली से गुजरता रहा। वो मार्टिन प्रभु ईश्वर को ढूंढता रहा। तभी देखता क्या है कि एक महिला आई जिसके पैरों में देहाती जूतियां थीं। वो चलते चलते रुक गई, इधर से अनजान मालूम पड़ती थी। कपड़े मामूली थे और गोद में बच्चा था। दीवार के पास टिककर हवा की ओर पीट करके खड़ी हो गई। वो आरी की तरह काटती हुई ठंडी हवाओं से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी वो, मगर उड़ाने के लिए उसके पास बराबर कपड़े भी नहीं थे।
1: सुनना माई, ओ माई।
3: मुझे बुला रहे हो बाबा?
1: हाँ माई, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। ठंड और खुले में बच्चे को लेकर क्यों खड़ी हो? ऐसे में तुम दोनों को ठंडक लग जाएगी, अंदर आ जाओ।
3: हाँ।
1: वो खाट पड़ी है, बैठ जाओ, आग चल रही है, थोड़ा हाथ पांव सेक लो और बच्चे को भी दूध पिला दो।
3: दूध मेरे कहाँ है बाबा, सवेरे से कुछ खाया नहीं
1: है। ये लो माई, ये रोटी और शोरबा खा लो, बच्चा मुझे दे दो। देखते क्या हो, बच्चा क्या मेरे नहीं हुए? मैं बच्चों को खूब मना लेता हूँ। ले ले बाबा, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ भाई, अब बताओ इतनी ठंड में यहाँ कैसे, कौन सी विपदा आन पड़ी है तुम पे, बताओ।
3: बड़ी दुख भरी कहानी है बाबा। आदमी फौज में था।
1: अच्छा।
3: फिर कोई 8 महीने हुए, उसे जाने कहाँ भेज दिया गया। बच्चा पेट में था, खाने का ठिकाना नहीं। मैंने रोटी पकाने की नौकरी कर ली थी, लेकिन लेकिन जब ये बच्चा होने को हुआ, उन्होंने काम से ही निकाल दिया। 3 महीने से भटक रही हूँ कि कहीं कोई नौकरी मिल जाए। जो कुछ पास में था, पेट की खातिर सब बेच चुकी हूँ। अब तो कौड़ी भी नहीं बची है।
1: शांत हो जाओ माई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यीशु सब अच्छा करेगा। लो, लो पानी पियो, पानी पियो।
3: सोचती हूँ कहीं धाये बन जाऊं, पर कोई रखने को तैयार ही नहीं। कहते हैं मैं इतनी दुबली हूँ कि दूध क्या उतरेगा। हमारे गांव की एक नौकरानी है शहर में, उसने बुलाया था, नौकरी दिला देंगे। 2 हफ्तों से भटक रही हूँ, कुछ कुछ बात ही नहीं बनती। फिरते फिरते पस्त हो गई हूँ। बच्चा भूख से बिलबिला रहा है। वो तो मकान मालकिन दयालु है कि भाड़ा नहीं लेती, नहीं तो सिर छुपाने का भी ठिकाना न होता।
1: अरे इतनी ठंड में बच्चा लिए यूं फिर रहे हो, कोई गरम कपड़ा नहीं है पास में?
3: चदरा था बाबा, अच्छा। अभी कलीचे आने में गिर भी रख दिया, क्या करती मैं? अन्न का भी तो जुगाड़ करना था ना। अच्छा अब चलती हूँ, मगर तुम्हारा एहसान रहेगा बाबा।
1: अरे
3: इतनी ठंड में तुमने शरण दी, खाने को दिया, जी गई मैं। बच्चा तो अब तक ठिठुर कर मर ही गया होता।
1: अरे नहीं,
3: जब घर से चली थी तब ठंड इतनी नहीं थी बाबा।
1: ये लो, चोगा थोड़ा पुराना है लेकिन इसमें गर्मी बहुत है, रख लो रख लो, बच्चे को आराम मिलेगा।
3: कौन हो बाबा तुम? इंसान तो इतने दयावान नहीं होते।
1: ना ना ना, इंसान ही हूँ बिटिया, और कुछ ना समझो, इंसान ही हूँ। और ये लो, पैसे भी रख लो, चादरा छुड़ा लेना अपना। रख, रख लो।
3: चलती बाबा, चलती हूँ।
2: उस औरत के चले जाने के बाद मार्टिन ने देगची उतार कर कुछ खाया पिया और फिर काम करने बैठ गया, लेकिन उसकी निगाहें तो खिड़की पर टंगी थीं। ईशु अभी तक नहीं आए, जाने कब आ जाएं। अनेक लोग गुजरे मगर वो ना गुजरा जिसका सवेरे से इंतजार था। तभी मार्टिन ने एक सेब वाली बुढ़िया को देखा, सिर पर सेब का टोकरा रखकर चली जा रही थी, हाथ में बोरा था जिसमें बीनी हुई लकड़ियां थीं। शायद इससे चलने में उसे कुछ दिक्कत हो रही थी। फटी टोपी पहने एक लड़का आया और टोकरी से एक सेब निकालकर भागने लगा, मगर बुढ़िया ने बोरा फेंका और लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने खूब खींचतान की पर हाथ ना छुड़ा सका। बुढ़िया ने उसकी टोपी उतार दी और उसके बाल पकड़कर झंझोटने लगी।
4: माई छोड़ देना, माई बहुत दुखते है, माई माई छोड़ ना, ये ले अपना सेब, अब जाने दे माई।
5: रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। हाँ, सेब चुराता है।
4: माई छोड़ ना।
5: छोड़ दूँ? मुस्टंडा, सेब चुराता है तेरी तो।
1: अरे अरे अरे, जाने दे माई, भगवान के नाम पर माफ कर दो उसे।
5: अजी, मैं उसे दिखा दूंगी कि सेब चुराने का क्या मतलब होता है। इसे थाने ले जाऊंगी, डंडे पड़वाऊंगी डंडे। 100 जन्म याद रखेगा कि किसी का सेब चुराया था, इसके बाद सेब का फेंका हुआ छिलका भी उठाने की हिम्मत न करेगा।
1: अरे भूखा है माई, अपनी टोकरी से एक सेब इसे दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। ये ले बेटा, पर आज से किसी का सामान यूं हाथ न लगाना।
5: इस तरह से तो तुम छोकरों को बिगाड़ दोगे बाबा। इसे थाने के डंडे पड़ने चाहिए, कोड़े लगने चाहिए थे, कोड़े। 10 हफ्ते हवालात में रहना चाहिए था, तब जाकर सुधरता ये। हाँ।
1: ओ माई, छोड़ो छोड़ो, ये ढंग हम लोगों का है, भगवान का नहीं है। अगर एक सेब की चोरी के लिए इसे कोड़े लगने चाहिए तो हमें अपने पापों का कितना दंड मिलना चाहिए बताओ? यीशु कहते हैं सबको क्षमा करो, अनजान बच्चे को तो और भी पहले माफी मिलनी चाहिए।
5: बात तो तुम्हारी ठीक है बाबा, मगर ये आज के छोकरे बिगड़े कितने जा रहे हैं ये नहीं देखते तुम?
1: अरे ये तो हम बड़ों का काम है भाई कि हम अपने आचरण से उन्हें सही राह दिखाएं।
5: ये बात भी ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छे इंसान हो तुम। हाँ
4: लाओ माई ये बोरा मुझे दे दो, मैं इसे सिर पर रखकर घर पहुंचा देता हूँ।
5: ठीक कहा बाबा तुमने, दंड से ज्यादा माफी सुधारती है इंसान को माफी।
2: सांझ घिर आई मगर यीशु ना आए। मार्टिन ने लैम्प जलाया और पोथी बांझने बैठ गया, मगर उसका मन आज पोथी में न लग रहा था। कल रात का सपना बार बार उसकी आंखों के सामने कौंध जाता था। मार्टिन थका भी था, उसके ऊपर तंद्रा सी छाने लगी। तभी उसे लगा कि किसी के पैरों की आहट आ रही है। वो आंखें मलकर देखने की कोशिश करने लगा। उसे लगा जैसे अंधेरे कोने में कई लोग खड़े हों, लेकिन वो देख ना सका कि कौन है, कौन लोग हैं वो। तभी
1: कौन है वहां उस कोने में?
6: मैं, मुझे नहीं पहचानते? सुबह इतनी ठंड में तुमने मुझे चाय पिलाई, अपने फर्श पर मुझे बर्फ झाड़ने दिया।
7: हाँ और ये मैं मार्टिन, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को आज जीवन दान दिया। और मुझे भी याद करो मार्टिन।
4: हाँ मुझे भी सेब चोरी से तुमने माफी दिलाई, मैं भूखा था, तुमने मुझे सेब खाने को दिया।
8: हाँ मार्टिन, बच्चा गोद में लिए ठंड में ठिठुरती भूख से मरती वो औरत मैं ही थी, दूध को तरसता उसका बच्चा भी मैं, झुकी कमर वाला बर्फ झाड़ता बुढ़ा स्टेपान भी मैं ही था, सेब वाली बुढ़िया भी मैं, सेब चुराकर भागता लड़का भी मैं। मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दिया, अपनी मेहनत के छह आने मुझे दिए, माफी दी, दया दी। पगला है तू, मैं आया तेरे पास, रहा खाया पिया और चला गया, और तू अभी तक मेरा इंतजार ही।

तो श्रोताओं, ये थी विश्व के महान साहित्यकार टॉल्स्टॉय की कहानी, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। प्रस्तुति थी रेडियो आजाद हिंद की।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक, देवता हैं इंद्र, छंद है त्रिष्टुप।
1: अपायस्मान् धसो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रयसः यस्मिन्निन्द्रः प्रदिवि वावृधान ओको दधे ब्रह्मण्यन्तश्च नरः। सोमरस को परिष्कृत करने वाले ज्ञानी यजमान के द्वारा आनंद प्रदान करने के लिए दिए गए अन्न आहार को इंद्रदेव ग्रहण करें। वे इंद्रदेव तथा ज्ञानी यजमान उत्तम स्थान प्राप्त करें। अस्य मंदानो मध्वो वज्रहस्तो हिमिंद्रो अर्णो वृतम विवृश्चत प्रयद्वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनाम चक्रमंत। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों में जाते हैं, उसी प्रकार नदियों की धाराएं प्रवाहित होती हैं। ऐसे प्रवाहित सोमपान से आनंदित इंद्रदेव ने हाथ में वज्र धारण करके जल को रोकने वाले अहि नामक राक्षस को मारा था। स माहिन इंद्रो अर्णो अपाम प्रैर यदहिहाच्छा समुद्रम अजनयत सूर्यम विदद्गा अक्तुनाहनाम वयुनानि साधत। अहि नामक राक्षस को मारने वाले इंद्रदेव ने अंतरिक्ष में जल को सीधे समुद्र की ओर प्रवाहित किया। उन्हीं ने सूर्य तथा सूर्य रश्मियों को प्रकट किया, जिसके प्रकाश से दिन में होने वाले सभी कार्यों को हम करते हैं। सो अप्रतीनि मनवे पुरुणीन्द्रो दाशदाशुषे हन्ति व्रतम् सद्यो यो नृभ्यो अतसाइयो भूतपस्पृधानेभ्यः सूर्यस्य सातौ। जो इंद्रदेव सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप प्राप्त करने के लिए सब दिन समान रूप से स्पर्धा करते हैं, वे इंद्रदेव दानशील मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ धनों के प्रदाता हैं। वे ही वृत्र राक्षस को मारते हैं। स सुन्वत इंद्रः सूर्यमा देवो ऋणं मर्त्याय स्तवान् आयद्रियं गुहदवद्मस्मै भरदंशं नैतशो दशस्यन्। जिस प्रकार पुत्र को पिता अपने धन का एक अंश देता है, उसी प्रकार जब इंद्रदेव को दान दाता एतश ने यज्ञ के समय अमूल्य तथा उत्तम धन प्रदान किया, तब पूज्य तथा तेजस्वी इंद्रदेव ने यज्ञ की कामना वाले मनुष्य के लिए सूर्य को प्रकाशित किया। स रंधयत सदिवाह सारथये शुष्ण मशुसम कुयवम कुत्साय दिवो दासाय नवतिम च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य। उन तेजस्वी इंद्रदेव ने सारथी कुत्स के निमित्त शुष्ण अशुष कुयव नामक असुरों का संहार किया तथा दिवोदास के निमित्त शंबराशुर के 99 नगरों को ध्वस्त किया। एवात इंद्रोचथ महेम श्रवस्या नत्मना वाजयन्तः अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः। हे इंद्रदेव, हम अन्न और बल की कामना से आपकी स्तुतियां करते हैं। आपने देवों की अवमानना करने वाले तथा हिंसक दुष्टों के हिंसाकारी कृत्यों को नष्ट किया। हम आपसे परम मैत्री भाव बनाए रखें। एवाते ग्रित समदाह शूर मन्मावस्यवो न वयुनानि तक्षुः ब्रह्मण्यंत इंद्रते नवीय ईशमूर्जम सुक्षितिम सुम्नमश्युः। हे शूरवीर इंद्रदेव, गृत समदगण अपने उत्तम संरक्षण की कामना से आपकी उत्तम एवं मनोरम स्तोत्रों के द्वारा स्तुतियां करते हैं। उसी प्रकार नए ब्रह्मज्ञानी स्तोताजन भी उत्तम आश्रय अन्न बल और सुख की प्राप्ति के लिए स्तुतियां करते हैं। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धग्भगो नो ब्रह्मद्वदेम विदथे सुवीराह। हे इंद्रदेव, यज्ञ काल में आपके द्वारा दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चय ही स्तोताओं को धन प्राप्त कराती है, अतः हमें भी स्तोताओं के साथ वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा दें, जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों से आपकी स्तुतियां करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अपवित्र कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितना बुरा अपवित्र कर्म होता है। कल्पना आत्मा का नेत्र है।

ईश्वर ही हमारा आश्रयदाता है और शक्तिदाता भी। वही आपातकाल में हमारी सबसे बड़ी सहायता करता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है।

ईश्वर के अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत भाव हैं। उसे किसी नाम से, किसी रूप से और किसी भाव से कोई पुकारे, वह सबकी पुकार सुन सकता है, वह सबकी मनोकामना पूरी कर सकता है।

जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब निकल जाते हैं।

जो मनुष्य इस सत्य को पहचान जाता है कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, अनित्य है, वह मनुष्य जल्द ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेता है।

यदि हम कम धन में सुख का अनुभव करना नहीं जानते तो अपार धन राशि भी हमें सुखी नहीं बना सकती।

ईश्वर को पाने के लिए जिसका हृदय तरस रहा है, उसका जन्म धन्य है, उसकी माता धन्य है, कारण उसका सर्वस्व तो इस ईश्वर में समाया हुआ है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
2: अब समय है कार्यक्रम प्रकृति की पुकार का। श्रोताओं, प्रकृति की पुकार में आज हम बात करेंगे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की।
1: सर, आपका बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद में।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार प्रवीण जी, पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की मिट्टी में पले बड़े और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
3: जी, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ और वहीं से मैंने कुछ समस्याएं देखी थी कि एक तरफ हमें देखने को मिलता था कि जो आसुत जल है, मतलब गंदा पानी है, वो बहुत ज्यादा है, उसके प्रबंधन की समस्या हो रही है
1: जी।
3: और दूसरी तरफ जो शुद्ध जल है वो पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है
1: जी।
3: तो वहीं से मैंने इस दिशा में कुछ कार्य करने का फैसला किया था और देखते देखते मैंने इस क्षेत्र में BSc कृषि किया, फिर MSc कृषि किया, उसमें पर्यावरण विज्ञान विषय लिया और फिर PhD जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है
1: जी,
3: वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वहां से मैंने पर्यावरण विज्ञान में PhD किया, जहां पर गंदे पानी को कैसे कम किया जाए और उसका उपयोग कैसे कृषि कार्यों के लिए किया जाए
1: जी,
3: ताकि कृषि कार्यों की जो शुद्ध जल पर निर्भरता है वो कम हो, शुद्ध जल केवल पानी के लिए उपयोग किया जाए
1: जी,
3: और जितना भी गंदा पानी है चाहे उसको एक लेवल के तक शुद्ध किया जाए, उसके बाद कृषि के लिए उपयोग किया जाए
1: जी।
3: कृषि में भी कोशिश ये की है हमने कि उस पानी को नॉन एडिबल, मतलब जो खाने के लिए उपयोग नहीं करना है उसके लिए करना है, जैसे पूरे फ्लावर
1: जी,
3: फ्लावर को हम यदि गंदे पानी से भी सिंचाई करें तो उसमें कीटाणु या फिर हैवी मेटल की कोई समस्या नहीं रह जाती है
1: जी।
3: इसलिए मैंने इस तरीके से आगे बढ़ के और विगत 8 वर्षों में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में मृदा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमने खेती किसानी में कैसे किसान कम खाद का उपयोग करके, मिट्टी परीक्षण करवा के, हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी कैसे संरक्षित करे, क्योंकि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है आवश्यक, वो हमारे फल के जो फूड के जो चेन है उसमें आते हैं और उसी से हमें फिर पोषक तत्व मिलते हैं।
1: अच्छा जी।
3: मिट्टी की उर्वरता में भी हमारा बहुत पूर्ण योगदान है। हम केंद्र के माध्यम से नवीन कार्यक्रम करते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे एक छोटा सा प्रयास, लेकिन ट्रूथफुल प्रयास, एक मीनिंगफुल प्रयास कर रहे हैं ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है, वातावरण की शुद्धता है
1: जी,
3: वो बनी रहे और सतत टिकाऊ का जो सिद्धांत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हम थोड़ा सा योगदान करते रहे।
1: विश्व मृदा दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, कब से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई?
3: कभी भी हमें अगर कोई दिन या फिर कोई विशेष अभियान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाना होता है तो निश्चित ही उसमें उस लेवल का मोटो दिया जाता है, उसे मनाने का क्या महत्व है ये बताने के लिए भी एक बड़ा बेस बनाया जाता है। तो जो विश्व मृदा दिवस है वो एक जो थाईलैंड के महाराजा थे
1: जी,
3: वो मृदा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करते रहते थे, तो उनका जो जन्मदिन है वो 5 दिसंबर को आता है और उनका जो नाम है राजा भूमिबोल, उनके जन्मदिन को यादगार के रूप में इस दिन का चयन किया गया। उसके बाद फिर 2002 में जो इंटरनेशनल सॉइल साइंस का यूनियन है
1: जी,
3: उसने भी इसको हरी झंडी दे दी कि ठीक है 5 दिसंबर को मनाना चाहिए, और आखिरी में जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अनुशंसा पर जो अपना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होता है
1: जी,
3: उसने इसको पूर्ण रूप से मान्यता दी 2013 में। उस साल से ये विधिवत रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यहाँ तक कि जो हर 10 साल का एक कार्यक्रम होता है यूनाइटेड नेशंस का
1: जी,
3: उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर सॉइल संरक्षण, मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम चलाता है यूनाइटेड नेशंस तो वो 2015 से 2025 तक हो चुका है, मतलब ये अपना 2025 जो है वो उसका 10वां साल है उस कार्यक्रम का। मतलब 10 साल तक एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस चलाता है, जहां यूनाइटेड नेशंस को लगता है कि हाँ इस क्षेत्र में 10 साल तक कार्य करने की जरूरत है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े प्रयास किए जाते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हो और उसके संरक्षण में वो महत्वपूर्ण कार्य कर सके।
1: सर, मृदा हमारे जीवन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आप समझाएं।
3: देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमारे भोजन में वही पोषक तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी में है
1: जी
3: ना। मिट्टी में वो भोजन के जो पोषक तत्व, जो भोजन पौधा जो पोषक तत्व दोहन करता है, वो ही पौधा पोषक तत्वों को अनाज में भी डालता है। अगर एक इसे उदाहरण से समझें कि अगर हम ऐसी मिट्टी का लगातार गेहूं खा रहे हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी है, लोहे की कमी है, तो निश्चित ही हमारे गेहूं में भी आयरन की डिफिशियंसी रहेगी और धीरे धीरे हमारे शरीर में भी आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमें एनीमिया हो जाएगा। अब हमारी मिट्टी की उर्वरता और हमारा भोजन, हमारा जीवन का संतुलन, ये दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी का जो संरक्षण है, मिट्टी का जो संतुलन है पोषक तत्वों के मापदंड से, वो हमेशा संतुलित बना रहना चाहिए।
1: जी
3: इसके बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं कि कैसे ये संतुलन बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व कम हुआ तो निश्चित ही वो हमारे अनाज में भी कम होगा, और अनाज में यदि कम हुआ और उसी अनाज को हम लगातार खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट हो जाएगा और उसके हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। फिर हम केवल पेट भरने के लिए भोजन करेंगे, क्योंकि पहले जो सिद्धांत था वो फूड सिक्योरिटी का था, मतलब खाद्यान्न सुरक्षा, इतना उत्पादन करना है कि कोई भूखा ना सोए। लेकिन आज जो उत्पादन है वो तो पर्याप्त है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम है, मतलब जो पोषण सुरक्षा है, जो पोषक तत्व की सुरक्षा है, कि हमने अगर भोजन करा है तो हमारे शरीर के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्या वो सब उसमें अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो फिर हम इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं, फिर हमें हमारी बैलेंस को डाइट करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर हम डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वव्यापी बात आती है, हर गरीब को भी बैलेंस डाइट मिले, तो वो तभी मिल पाएगा जब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का गेहूं है उस गेहूं में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रहे, तभी
1: जी
3: तो पोषक तत्व सुरक्षा होगी ना।
1: जी
3: हम इंडिविजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई कर ले, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे सॉइल में ही न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जाए, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो
1: जी
3: वो फुलफिल करे सारे न्यूट्रिएंट्स को।
1: आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और सब इससे जुड़े हैं, शहरों में, गांवों में, तो इसके जरिए किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है?
3: जी, बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि अभी तो ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है कि जो चीज पहले 10 दिन में पता चलती थी,
1: जी
3: जो चीज पहले एक दिन में पता चलती थी, वो आज सेकंड्स में पता चलती है।
1: जी
3: इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि जो भी अवेयरनेस है तो उसका हम लोग लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। कैसे हम सॉइल को वापस न्यूट्रिएंटिव कर सकते हैं, कैसे उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हमने हरी खाद का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने किसानों को लाइव दिखाया था
1: जी
3: कि कैसे हम लोग हरी खाद की फसल को 35 दिन या जो भी फसल हो उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर रोटावेटर कर देते हैं और पानी चला देते हैं, और उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 लीटर प्रति एकड़ डाल देते हैं, तो
1: जी
3: ये जो ऑर्गेनिक मैटर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, ये पूरा सॉइल में जाके सॉइल की जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसको मिट्टी की जान कहते हैं,
1: जी
3: वो अगर बढ़ जाता है तो निश्चित ही हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्कुल आसानी से वीडियोग्राफी करके भी बताना बहुत आसान हो गया है। मतलब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका वीडियो बनाकर तुरंत ही लाइव टेक्नोलॉजी से उसको डिसिमिनेट कर देते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सबसे हम लोग किसानों को कनेक्ट करके रखे हैं, और जो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करते हैं तो तुरंत उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि किसान को इजी टू अंडरस्टैंड रहे और दूसरा वो तुरंत टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर ले, ये बहुत जरूरी है आज। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले इफको का वेस्ट डिकम्पोजर का भी डेमो किया था कि कैसे हम नरवाई का प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो हमने पूरा यहाँ डेमो बनाकर दूसरे ही दिन उसको सारे यूट्यूब फेसबुक पे डाल दिया और किसानों के फीडबैक भी आने लगे कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कम समय में हमारी जो टेक्निक है उसको किसान तक इजी वे में पहुंचा सकते हैं।
1: एक सवाल और ये निकल के आता है कि मृदा क्षरण एक चुनौती क्यों बनता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
3: मृदा क्षरण देखिए एक चुनौती इसलिए बनते जा रहा है क्योंकि हम एक तो फसल एकीकरण बहुत अपनाया है किसानों ने, किसानों की दृष्टि से यदि बात करें तो उसने फसल एकीकरण अपनाया है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने भी मृदा क्षरण में बहुत योगदान दिया है। कहीं
1: जी
3: ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, चाहे वो रोड की बात करें या रेलवे रोड की, या फिर जो कहीं भी अगर कोई अगर सिटी बनता है तो
1: जी
3: वो सिटी पूरा आप ये मान लीजिए कि स्क्वायर किलोमीटर मोर देन दैट
1: जी
3: पूरा सीमेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट?
1: यस
3: मतलब वहां का जो वाटर होल्डिंग या यूं कहें कि वाटर एब्जॉर्प्शन है वो जीरो हो जाता है।
1: जी
3: अब पानी की इंटेंसिटी तो उतनी ही है रेनफॉल की, तो वो जितना भी पानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में गिरा है वो पूरा फ्लडिंग करके बिल्कुल स्पीड से नदी का रास्ता ढूंढेगा,
1: जी
3: है ना? जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एब्जॉर्प्शन था वो पूरा एब्जॉर्ब न होके पूरा आगे बढ़ जाएगा।
1: जी
3: इसे बहुत शुद्ध तरीके से यूं समझें कि अगर हम हमारे एक शर्ट पे पानी डालेंगे तो वो 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा,
1: जी
3: वही अगर 1 लीटर पानी अगर हम रेनकोट पे डालेंगे पूरा
1: जी
3: उसको रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचा देगा।
1: सही
3: तो वो जो वाटर की इंटेंसिटी है और वो जो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसने सॉइल इरोजन को बहुत बढ़ाया है, मतलब
1: जी
3: सॉइल को पूरा इरोज इरोज करके बहा के अपने साथ नदी नाले में ले गया।
1: जी
3: इसी तरीके से किसान ने भी केवल एक ही फसल एकीकरण किया है, मतलब अभी अगर हम नर्मदापुरम का उदाहरण लें तो हमारे जिले में अभी 90% एरिया में गेहूं लगा है, तो
1: जी जी
3: गेहूं को धान के बाद लगाया गया है, 90% एरिया में धान भी था तो
1: जी
3: धान को भी वही न्यूट्रिएंट चाहिए जो गेहूं को चाहिए, गेहूं को भी वही चाहिए जो धान से ले ऑलरेडी ले चुके हैं धान। तो ऐसे में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का जो सॉइल में बैलेंस है वो बिगड़ जाता है,
1: जी
3: मतलब हमारी सॉइल में से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट है जिनको फसल की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि फसल को बदल के नहीं लगाया गया। तो
1: जी
3: ऐसे में किसानों को चाहिए कि जैसे अभी मैंने अगर गेहूं का उदाहरण दिया तो चना भी लगाए कुछ किसान, या
1: जी
3: फिर सेम किसान 10 एकड़ है तो इस बार 3 एकड़ में गेहूं, 3 एकड़ में चना, 3 एकड़ में मटर मसूर, इस तरीके से अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल विविधीकरण,
1: जी
3: फसल एकीकरण की जगह यदि फसल विविधीकरण करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
1: जी जी
3: इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट भी यदि होता है तो
1: जी
3: कहीं ना कहीं हमें जो इथिकल नॉर्म्स है, जो CSR का जो नॉर्म्स होता है, जो इन्वायरमेंटल सिंपैथी होती है मतलब पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है, तो उसमें प्रॉपर प्लांटेशन यदि हमने कोई रोड निकाला है और उसमें प्लांट कटे हैं तो बी इंश्योर कि उससे ज्यादा प्लांट वापस नए रोड के आइट साइड में लगाए जाए ताकि वो जो बैलेंस में मिसमैच किया है प्रकृति का वो वापस मैच हो जाए, नहीं
1: अच्छा
3: तो हमें बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि मृदा का जो क्षरण है
1: जी
3: वो करना आसान है लेकिन उसको वापस रोकना या बढ़ाना बहुत
1: जी
3: मुश्किल है। हमने सुना है कि 1 इंच मिट्टी बनने में 1,000 साल लगते हैं, अगर कोई चट्टान है उस 1 इंच की चट्टान पे 1 इंच मिट्टी बनना है तो
1: जी
3: वो 1,000 साल लगते हैं, हजारों साल की प्रोसेस होती है
1: जी
3: वेदरिंग की और केमिकल ऑक्सीडेशन की, फिजिकल फिक्सेशन की, तब जाके 1 इंच मिट्टी बनती है। तो इस क्षरण पे बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है, चाहे वो किसान की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की,
1: जी
3: अर्बनाइजेशन की, तो वहां पर जो भी इथिकल नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन या फिर जो भी अपन हरी खाद की फसल या फसल विविधीकरण है वो सभी अपनाने चाहिए।
1: सर, मृदा स्वास्थ्य को किस तरह से मेजर किया जा सकता है?
3: जी अगर एक किसान की दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि मिट्टी दो तरीके से स्टडी की जाती है मिट्टी की,
1: जी
3: एक तो होता है पेडोलॉजी
1: जी
3: मतलब मिट्टी कैसे बनी है, उसका विकास कैसे हुआ, और उसपे कितनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जा सकता है,
1: जी
3: मतलब अर्थक्वेक की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, सुनामी की दृष्टि से। तो ये पूरा अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी।
1: जी
3: और दूसरा अध्ययन होता है इडेफोलॉजी, मतलब इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता क्या है, इसको कितने प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। किसान की दृष्टि से इडेफोलॉजी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, मतलब हम मिट्टी परीक्षण से सामान्य प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण की जो भी मशीनें होती हैं उससे हम लोग ज्ञात करते हैं कि हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। तो इस तरीके से 12 पैरामीटर ज्ञात करके हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी की क्या उर्वरता की स्थिति है।
1: जी जी।
3: अब अगर उर्वरता की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो हमें उसमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम एक औसत उपज प्राप्त कर सकें।
1: जी।
3: तो ये पूरा अध्ययन इडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है ताकि हम किसानों को भी बता सकें कि आपकी मिट्टी में जिंक की कमी है और अगर आप धान लगा रहे हैं तो विशेष रूप से आपको जिंक डालना है। अगर आपकी मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है तो आपको उसको मृदा सुधारक के द्वारा ऑप्टिमम पीएच तक लाना है ताकि जो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता है वो अच्छी रहे। तो इस तरीके से हम मिट्टी को जांच कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण कर सकते हैं और किसानों को बता सकते हैं। और एक जो दूसरा मैंने बताया पेडोलॉजी का, उसमें ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी वाला अध्ययन होता है। ये जनरली जब बहुत बड़ी बिल्डिंग जो मुख्यतः भूकंप के जोन में आती है वहां बनाना है या फिर बहुत बड़ा डैम बनाना है तब वहां पर ये इडेफोलॉजी का अध्ययन किया जाता है ताकि ये पता कर सकें कि वहां पर क्या बिल्डिंग निर्माण करना चाहिए या फिर करें भी तो कितने फ्लोर तक बनाना है। दैट्स इट।
1: सर एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि मृदा की जो उर्वरता कम होने के मुख्य कारण आप किन को समझते हैं?
3: देखिए जो मुख्य कारण है वो तो मृदा उर्वरता की यदि खेती किसानी की दृष्टि से बात करें तो एक किसानों ने क्या है नरवाई का प्रबंधन सही से नहीं समझा है, उसका महत्व नहीं समझा है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने का प्रयास करूं किसानों को, अगर आज से 25 साल पहले की खेती यदि देखें तो उसमें जो मृदा उर्वरता या फिर पोषक तत्व प्रबंधन का जो सबसे ताकतवर सिद्धांत था वो था कि जो भी फसलों से अवशेष निकलते हैं वो पशुओं को खिलाए जाते हैं और पशुओं से जो भी अवशेष मल मूत्र गोबर उनकी त्वचा से गिरने वाले बाल लार इत्यादि ये सभी पोषक तत्व खाद के रूप में किसान वापस मिट्टी में डालता था।
1: जी।
3: मतलब जो पोषक तत्व पौधे ने लिए हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से सारे मिट्टी में डालता था।
1: जी जी।
3: अब ये कार्य किसान ने करना बंद कर दिया है। कारण चाहे कुछ भी कहें, एक तो वो नरवाई जला देते हैं, गोबर गोमूत्र की बहुत ही कमी है, पशु नहीं रख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ सिद्धांत हैं, मतलब वास्तविक सिद्धांत था जो पोषक तत्व प्रबंधन का, मृदा उर्वरता का, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल कारण कह लीजिए मृदा उर्वरता को खत्म करने का कि उसने नरवाई का सही प्रबंधन नहीं किया, गोबर गोमूत्र नहीं डाला और फसल का एकीकरण किया। मतलब कुछ ऐसी ही फसलें बहुत ज्यादा लगातार लगाई जिनका पोषक तत्व की आवश्यकता समान थी, इसलिए मिट्टी में वो पोषक तत्व कम हो गए।
1: जी जी।
3: भाई मांग और सप्लाई का जो सिद्धांत था उसमें मांग ही मांग बढ़ती गई बस।
1: जी जी।
3: उसने वो पोषक तत्व डाले कम और कुछ पोषक तत्व बहुत मात्रा में मिट्टी में आज भी है, जैसे पोटेशियम है, लोहा है, तो ये मिट्टी में है क्योंकि इनकी जिन फसलों को आवश्यकता है वो तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं लगाई गई। तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो क्षरण या उर्वरता की जो समस्या आई है उसमें ये जो दो तीन कारण है ये बहुत ज्यादा रूप से मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किए हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल कहेगी, जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्रण का की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है?
3: अच्छा एक प्रश्न है या यूं कहूं कि किसानों के लिए सुझाव है कि फसल चक्रण की यदि जैसे मैंने अभी बताया कि जब किसान फसल चक्र अपनाता है तो निश्चित ही उस चक्र की फसलों का जो पकने की अवधि रहती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई किसान गेहूं लगा रहा है और कोई किसान चना लगा रहा है,
1: जी।
3: तना तुलनात्मक रूप से जल्दी कट जाएगा, उसकी नरवाई भी कम निकलती है, उसको पोषक तत्व भी कम लगते हैं, और वो पशुओं के लिए एक टेस्ट में डिफरेंट लाने का भी काम करता है। तो ये चीज अगर हम अपनाते हैं तो किसानों को पोषक तत्वों के प्रबंधन में भी सहायता मिलती है, और नरवाई प्रबंधन में भी, और पशुओं को भी वैरायटी वाला फूड मिल जाता है। इसी तरीके से नरवाई प्रबंधन की भी यदि बात करें तो हमने उस नरवाई ने जितने पोषक तत्व मिट्टी से लिए हैं, अगर वो पोषक तत्व वापस किसी भी तरीके से प्रबंधित करके मिट्टी में डाल दें तो वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है मिट्टी की उर्वरता को प्रबंधन करने का। तो
1: जी
3: इसमें सबसे आसान तरीका मैं बताना चाहूंगा किसानों को आपके रेडियो के माध्यम से, कि जैसे किसानों की नरवाई निकली, अभी धान की नरवाई निकली हुई है,
1: जी
3: उसको खेत के पास एक गड्ढा बना ले नरवाई के मात्रा के अनुसार, बड़ा छोटा।
1: जी
3: उस गड्ढे में नरवाई डालना है 1 फीट की परत, फिर उस पे थोड़ा गोबर का लपेटा, फिर दूसरी परत नरवाई की डाल देंगे, फिर गोबर का लपेटा, और इस तरीके से डालते जाएंगे।
1: जी
3: और अंत में जो भी आपके पास, या तो वेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं अभी इफको द्वारा बनाया गया है,
1: जी
3: या फिर अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो जो ट्राइकोडर्मा वीरडी है ये भी डाल देंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत जल्दी सड़ गल कर अगली फसल के लिए तैयार हो जाएगा। और ये नरवाई का प्रबंधन का सबसे अच्छा मतलब तरीका है, इससे हम लोग केंद्र पर भी करते हैं
1: जी जी
3: ताकि ये जितनी भी नरवाई है वापस मिट्टी में चले जाए पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए। तो ये
1: अच्छा
3: बहुत अच्छा एक मृदा उर्वरता को संरक्षित करने का तरीका है।
1: सर, किसानों के लिए मृदा परीक्षण क्यों जरूरी है और ये कब करना चाहिए, अगर आप इस पर कुछ बताएं।
3: जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो शिक्षा है उसमें हमने ये पढ़ा है, प्रोफेसर जस्टिस वान लिबिग ने बताया है
1: जी
3: कि हर पोषक तत्व का एक विशेष कार्य होता है, और वो कार्य अन्य पोषक तत्व से नहीं कर सकते हैं,
1: जी जी जी
3: है ना। जैसे मैंने कहा कि अगर जिंक की कमी से पौधों में ये विकार हो रहा है तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नत्रजन बहुत ज्यादा दे दिया तो अब वो समस्या समाधान हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए अब मिट्टी में जिंक कम है या नाइट्रोजन ज्यादा है ये पता करने के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना पड़ेगा।
1: जी
3: तो मिट्टी परीक्षण करवाने से हमें पता चलता है कि किस पोषक तत्व में मिट्टी बहुत अच्छी है, किस में कमी है। तो मिट्टी परीक्षण करवाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो एक तो अप्रैल महीने होता है और एक ये नवंबर दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय एक फसल कट के दूसरी फसल लगाने की तैयारी होती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
3: कहने का मतलब है कि खेत खाली रहता है, तो
1: जी
3: जब खेत खाली रहता है तब मिट्टी का नमूना लेना बहुत अच्छा रहता है। इसको 3 साल में एक बार टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नमूना लेने का एक छोटा सा तरीका होता है, इस तरीके का हमने वीडियो बना के भी केंद्र के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे लें मृदा का नमूना। अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो
1: जी
3: कृषि विज्ञान केंद्र के फेसबुक पेज पर या व्हाट्सएप या फिर जो यूट्यूब चैनल है उस पे डालेंगे कैसे लें मृदा का नमूना, तो ये आपको मिल जाएगा।
1: अच्छा
3: इसमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखते हैं, जैसे खेत खाली होना चाहिए, जहाँ ढलान वाला हिस्सा है वहां से नमूना नहीं लेते हैं, और अगर मेड़ है तो मेड़ के 2-3 फीट से नमूना छोड़कर लेना है, और खेत में यदि कोई पेड़ है तो
1: जी
3: पेड़ के नीचे से भी जहाँ चारों तरफ छांव बनती है वहां से नमूना नहीं लेते हैं। अब इसके बाद इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए एक जगह चयन करके वी आकृति का गड्ढा करते हैं, ऊपर से फावड़े से थोड़ी नरवाई हटाते हैं, और वी आकृति के गड्ढे को 4 से 6 इंच गहरा करते हैं सामान्य फसलों के लिए,
1: जी
3: गेहूं धान मक्का इनके लिए। अगर किसी को तुअर लगाना है और कपास लगाना है, गन्ना लगाना है, तो 3 फीट गहराई तक गड्ढा करते हैं। और अगर किसी को बगीचा लगाना है, आम का बगीचा, तो वो 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, मतलब 4 से 6 फुट तक गहराई करते हैं, और उस गहराई के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक 1 इंची मोटी परत निकालते हैं। अब इसके बाद ये एक जगह से निकल गया, इसी तरीके से 4-5 जगह से प्रति एकड़ 5 जगह से नमूना निकालकर पांचों जगहों के नमूने को एक बड़ी सी पन्नी पर इकट्ठा करते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं, और अगर कोई बड़ा पत्थर या कुछ बड़े लकड़ी या कंकड़ पत्थर इत्यादि है तो उनको हटा देते हैं। अब इसके चार हिस्से करते हैं हम लोग, दो विपरीत दिशा के रखते हैं और दो फेंक देते हैं, मतलब हमको इसका जो मात्रा है उसको धीरे धीरे कम करना है। तो वो रखेंगे तो वो 10 किलो का नमूना यदि है तो 5 किलो बचेगा। फिर जो दो हैं इनको अच्छे से मिलाकर एक बनाएंगे, एक का पुनः चार बनाएंगे, फिर दो रखेंगे दो विपरीत दिशा के फेंक देंगे तो 2.5 बचेगा, फिर दो का एक और एक के चार, चार के दो, इस तरीके से तब तक करते रहेंगे जब तक कि 500 ग्राम नमूना केवल शेष न रह जाए।
1: जी
3: अब 500 ग्राम नमूना हम किसान की पूरी जानकारी, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर, पूर्व लगाई गई फसल, आगामी लगाई गई फसल, ये सब जानकारी के साथ नजदीकी प्रयोगशाला में भेजते हैं परीक्षण के लिए। परीक्षण उपरांत जो हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। तो किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि कम से कम 3 साल में परीक्षण जरूर करवाएं,
1: अच्छा
3: 3 साल में एक बार करवाना चाहिए। 3 साल तक एक परीक्षण मान्य रहता है, उसके बाद फिर पोषक तत्वों में बदलाव हो सकते हैं, तो 3 साल में एक बार नमूना परीक्षण करवाना चाहिए।
1: रासायनिक उर्वरकों जो हैं उनके उपयोग से मृदा पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं?
3: निश्चित ही, क्योंकि देखिए रासायनिक उर्वरकों में अगर हम देखें तो किसी भी उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा होती
1: जी
3: है ना। जैसे अपन यूरिया की बात करें तो यूरिया में 46% नत्रजन होता है और बाकी जो होता है 54% वो फिलर मटेरियल होता है, मतलब एक तरीके से वाहक मटेरियल कह सकते हैं उसको। तो वो जब मिट्टी में धीरे धीरे जाता है तो वो मिट्टी में जमा होने लगता है,
1: जी जी
3: उसकी मात्रा धीरे धीरे मिट्टी में विकार उत्पन्न करती है, या यूं कहें कि अम्लीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है या क्षारीयता का प्रभाव बढ़ाने लगती है। कुल मिला के मिट्टी में एक उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, और जब उसकी निश्चित मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो मिट्टी में अति
1: जी
3: विकार उत्पन्न होता है।
1: जी जी
3: ये जो पोषक तत्व भी होते हैं ये बहुत ज्यादा मिट्टी में एकदम से प्रभाव डालते हैं।
1: जी
3: जैसे हमने यूरिया डाला तो कुछ दिन तक मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाता है,
1: जी
3: और अगर एक ही तरीके का हमने उर्वरक डालते गए तो वो जैसे यूरिया है मिट्टी में अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, डीएपी है मिट्टी में क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, तो अगर हमने केवल यूरिया बहुत ज्यादा डाला है तो वो धीरे धीरे अम्ल हो जाएगा।
1: जी
3: अब अम्ल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो पीएच मान है
1: जी
3: वो निर्धारित करता है कि सभी पोषक तत्व किस अनुपात में पौधे को मिलेंगे।
1: जी
3: अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो कुछ पोषक तत्व तो पौधा ले ही नहीं पाएगा, एक तरीके से मिट्टी बीमार पड़ जाएगी और वो पौधे को पोषक तत्व अवशोषित नहीं करने देगी, क्योंकि हर पोषक तत्व पौधा तभी ले पाता है जब वो आवेशित अवस्था में आता है।
1: जी
3: हमने पढ़ा है हम शिक्षण संस्थानों में कि जो नत्रजन है उसको सभी पौधे नाइट्रेट रूप में लेते हैं, NO3-, मतलब NO3-, अगर धान की बात करें, आलू की बात करें, तो वो अमोनिया रूप में लेते हैं, NH4+।
1: जी
3: अब अगर ये आवेशित अवस्था में आने का कार्य अगर किसी के द्वारा प्रभावित होता है, किसी रासायनिक केमिकल के द्वारा, तो निश्चित ही पौधों पर भी इसका प्रभाव दिखता है, और
1: जी
3: ये हमारे पौधों की जो उपलब्धता है या पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो पौधे के लिए प्रभावित होती है, और हमारा पौधा फिर अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाता है। इसलिए रसायनों का बहुत ही लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो वास्तविक प्रबंधन का सिद्धांत है,
1: जी
3: जलवायु प्रबंधन का, गोबर प्रबंधन का, हरी खाद का,
1: जी
3: फसल चक्रण का, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: जी जी
3: और इसके साथ भी मैं रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जो लाभदायक सूक्ष्म पोषक तत्व वाले जीव होते हैं
1: जी
3: उनका उपयोग भी करने की सलाह दूंगा किसानों को। जैसे उदाहरण के लिए हम यूरिया की जगह अगर धान और गेहूं की फसल है तो एजोटोबैक्टर से बीज उपचार करना चाहिए, चना और अगर तुअर और मूंग की फसल है तो राइजोबियम से बीज उपचार करना
1: जी
3: चाहिए। ये जो लाभदायक जीव हैं ये वातावरण की नत्रजन को पौधों को उपलब्ध करवाते हैं ताकि इन फसलों को यूरिया के नत्रजन की आवश्यकता न पड़े। इसी तरीके से जो फास्फोरस घोलक जीवाणु रहता है
1: जी
3: वो यदि उपयोग करते हैं बीज उपचार के लिए, तो यूरिया और डीएपी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इन पे किसानों को वापस थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि जो पोषक तत्व प्रबंधन का जो इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल है, मतलब समन्वित सभी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके हमको पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए।
1: मृदा संरक्षण के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
3: जी, एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई थी 2014 से, मतलब अभी भी वो चल रही है बहुत ही व्यापक स्तर पर, है ना। तो इसमें किसानों की जो मिट्टी का जो परीक्षण है वो इस योजना के माध्यम से करके दिया जाता है और किसानों को अवगत कराया जाता है कि आज आपकी मिट्टी की ये स्थिति है, आपको अगर इस फसल का इस मात्रा में उत्पादन लेना है तो आपको ये पोषक तत्व डालने पड़ेंगे और इस तरीके से गोबर की खाद, इस तरीके से पीएसबी एनपीके ये सब डालना पड़ेगा
1: जी।
3: इस योजना के माध्यम से किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाता है जिसमें एक तो पूरे किसान की जानकारी रहती है
1: जी।
3: दूसरा 12 पैरामीटर जो होते हैं
1: जी,
3: 12 पैरामीटर में पूरे किसान की जो फर्टिलिटी का स्टेटस है वो डाल रहता है। तीसरा मुख्य बिंदु रहता है कि अगर इस 12 पैरामीटर या फिर मृदा उर्वरता के हिसाब से किसान को गेहूं लगाना है तो कितना एनपीके, कितना गोबर की खाद, कितना पीएसबी राइजोबियम डालना पड़ेगा। मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मिट्टी की उर्वरता से लेके किसान की जानकारी से लेके जो आगामी फसल लगाना है उसमें कौन सा पोषक तत्व किस उर्वरक से डालना है, इस जानकारी उसमें रहता है। दूसरा, अगर योजना में बात करें तो ये तो एक विशेष योजना हो गई। उसके बाद भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, इससे किसानों को प्रेरणा मिलती है कि हमारी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो किन किन कारणों से कम हो रही है, अगर हमको इसको संरक्षित करना है तो क्या क्या कारण करना है, और अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करते रहना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब जानकारियां विविध योजनाओं के माध्यम से या फिर अन्य योजना के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं ताकि ये जो मिट्टी की उर्वरता है ये लगातार बनी रहे और टिकाऊ तरीके से आने वाली पीढ़ी को भी उसी गुणवत्ता वाला अनाज उत्पादित करके प्राप्त हो सके।
1: कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका रहती है, आप लोग क्या कुछ करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, गाँव में जाते हैं, शहर में स्टूडेंट्स को लेकर या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए।
3: देखिए, किसी भी अगर उत्पादन की बात करें, मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला बेसिक जो फंडामेंटल बेस आता है वो मिट्टी ही होता है। तो निश्चित ही हमारा केंद्र भी इसको बचाने या इसकी उर्वरता को संरक्षित करने में अग्रणी योगदान निभा रहा है। एक तो हम यहाँ से कुछ मॉडल तैयार करके किसानों को बताते हैं कि हमने ये करके देखा है, आप भी कीजिए। जैसे एक तो हरी खाद का प्रयोग हमने करके देखा है कि जैसे हमने पहले उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया, एक की अगर बात करें तो हमारे यहाँ जैविक कार्बन 0.5 था, हमने उसमें 3 बार हरी खाद की फसल लिया और उसका जो जैविक कार्बन है वो 0.75 तक हो गया
1: जी।
3: मतलब नरवाई प्रबंधन या फिर ये जो हरी खाद की फसल है इससे हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बताया कि कैसे रासायनिक केमिकलों पर निर्भरता कम हो, इसके लिए हमने केंद्र पर फास्फोरस बाहुल्य जैव खाद, मतलब प्रोम का निर्माण शुरू किया ताकि किसानों को यूरिया का और डीएपी का विकल्प उपलब्ध हो जाए। इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक तरल जैव उत्पादन इकाई है जिसमें एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, पीएसबी, माइक्रोबियल सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब किसानों को हम लोग कम से कम लागत में उपलब्ध करवाते हैं ताकि देखिए किसान के पास जब तक विकल्प नहीं रहेगा वो यूरिया डीएपी की लाइन में ही लगा रहेगा। हमें किसान को यदि कहना है कि यूरिया नहीं डालना है तो उसे कुछ देना पड़ेगा कि ये डालना है। इसी तरीके से हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है धान की फसल में एजोला का उपयोग
1: जी।
3: तो धान को तो वो नाइट्रोजन देता ही है, साथ में जब ये धान कट जाती है तो रोटावेटर से जो एजोला मिला दिया जाता है मिट्टी में वो पूरा नरवाई का जो पोषक तत्व प्रबंधन का है वो कार्य करता है। मतलब एजोला में जितना भी बायोमास रहता है वो मिट्टी की जो जैविक कार्बन की मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये तो प्रत्यक्ष हमारे मॉडल हो गए। बाकी इन मॉडल को डिसिमिनेट करने के लिए हम लोग समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया है जिसमें किसानों को मिट्टी को कैसे संरक्षित करें और जो भी केंद्र पर प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कैसे किसानों को इजी वे में बता पाए कि ये आप भी कीजिए। नरवाई प्रबंधन है या फिर हरी खाद को डालना है, कम गोबर में भी कैसे अच्छा खेती करें, ये सब जानकारी हम किसानों को केंद्र के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं।
1: जी प्रवीण जी, आपने इतनी से चर्चा की, इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है।
3: जी
1: और
3: बिल्कुल,
1: आपने रेडियो आजाद हिंद को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम प्रकृति की पुकार अभी आप सुन रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे मृदा यानी मिट्टी की, यानी माटी की, जिसमें हमने बातचीत की डॉक्टर प्रवीण सोलंकी, कार्यक्रम सहायक कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर नर्मदापुरम में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और आपके साथ था मैं फराज फैयाज। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन की राह में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने मन ठिठक कर पूछता है, ये क्या था? हमारा कर्म, हमारी नियति या कुछ और? हम अक्सर उस शक्ति को जो हमारी समझ से परे है दैव कह देते हैं और फिर अपने प्रयासों को उसके सामने छोटा मान बैठते हैं। लेकिन योग वासिष्ठ दैव को केवल भाग्य की रेखा मानकर स्वीकार करने के बजाय उसके स्वरूप पर गहराई से विचार करता है। ये ग्रंथ हमें उस दृष्टि तक ले जाता है जहाँ दैव कोई ऐसा आदेश नहीं जिसके सामने मनुष्य विवश होकर बैठ जाए, बल्कि जीवन में हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे संकल्प और हमारी चेतना सब मिलकर उस दिशा का निर्माण करते हैं जिसे हम कभी कभी दैव का नाम दे देते हैं, और यहीं से जन्म लेती है सत्कर्म की प्रेरणा। क्योंकि यदि हमारे कर्म ही जीवन की धारा को दिशा देते हैं तो हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को अधिक निर्मल, अधिक सार्थक और अधिक कल्याणकारी बनाने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है, तो आज योग संवाद में आइए योग वासिष्ठ के इसी गहन संदेश की ओर चलें कि दैव वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप क्या है और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार अधिक उज्ज्वल बना सकता है। आइए समझें कि दैव को जानने की यात्रा अंततः हमें कैसे अपने कर्मों को पहचानने तक ले जाती है, और ये भी कि सत्कर्म केवल जीवन को बदलने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी है। आज इस चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: पिछले अंक में बहुत ही रोचक चर्चा रही और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी पुरुषार्थ की और प्रारब्ध की, और कई बार पुरुषार्थ को देखकर कर्म करना मनुष्य बंद कर देता है। तो जब उद्योग का नाश होता है या कर्म से मनुष्य विरत होता है तो उसका परिणाम क्या होता है?
2: उसका परिणाम ये होता है कि वो फिर अपने पुरुषार्थ, जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता है, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दैव के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं और आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है।
1: तो
2: ऐसे में बार बार इस बात के लिए वशिष्ठ जी राम को प्रेरित कर रहे हैं कि राम, ये विभिन्न लोगों को जो देख करके आपके अंदर ये वैराग्य आया है कि ये कर्म से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभीष्ट है ये इनका प्रयत्न तो है, लेकिन जो पूर्व के जो कर्म हैं ये कर्म भी वर्तमान में आने वाले परिणामों में अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाते हैं। इसलिए कई बार हम लोग अच्छा करने के बाद भी उस कर्म के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं करते और कहते हैं कि शायद हमारे में कोई कमी रह गई। नहीं, ये भाव भी हमारे चित्त में न आए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये भाव भी आएगा तो फिर हम कर्म करने में जो कुशलता है वो बाधित होगी।
1: जी जी।
2: तो इससे वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पूर्व का जो कर्म जिसे प्रारब्ध कर्म कहा गया उसकी भी भूमिका हो सकती है या होती है। तो इसलिए आप फोकस किसी चीज पे होइए तो सिर्फ कर्म पर होइए। कर्म ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप कर्म फल को बदल सकते हैं। कर्म फल कभी भी नहीं बदलता बिना कर्म में परिवर्तन के। कहा भी जाता है कि जो आप आज कर रहे हैं अगर वही आप कल भी करेंगे तो कल भी वही प्राप्त होगा जो आज प्राप्त हुआ है।
1: बहुत ही सुंदर बात, बिल्कुल,
2: है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिणाम बदले, आप मनचाहा परिणाम पाएं, तो निश्चित ही आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिन कर्मों के द्वारा आप मनचाहे परिणाम की सिद्धि कर सकें।
1: बहुत ही सुंदर संदेश ये हो गया। देखिए, कई बार होता है ना कि मनुष्य कहता है कि साल हो गए, बरस बीत गए, हमारा जीवन वैसा ही चल रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, आपके कर्मों में क्या परिवर्तन
2: क्या परिवर्तन हो, बिल्कुल।
1: अगर आपकी दिनचर्या में आपके कर्म में परिवर्तन होगा तभी फिर जीवन में परिवर्तन होगा
2: जी।
1: तो ये बात वहां भी जाकर जुड़ती है।
2: एक सामान्य बात देखिए ना कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो हर आदमी अच्छे परिणाम का मतलब अपेक्षा लेके बैठा है, लेकिन जब उससे पूछो, उसी से पूछो कि जिस परिणाम की कामना आप करके बैठे हैं या जिस परिणाम के प्राप्त होने पर आपको आनंद होगा, उस परिणाम को पाने के लिए क्या कर्म जो आप कर रहे हैं ये संतोषजनक है, वही कह देगा कि नहीं है।
1: नहीं है, बिल्कुल।
2: वो इस बात को भी जानता है कि हमारा कर्म इस योग्य नहीं है कि हम उस परिणाम को हासिल कर सकें, लेकिन वो परिणाम को पाना चाहता है और कर्म पर जोर लगाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से फिर वो परिणाम नहीं मिलता, उसके जीवन में दुख आता है।
1: सारा श्रम कामना में है, कामना करता है,
2: कामना करता है
1: श्रम के लिए, मतलब कर्म की तरफ उसका रुझान नहीं है
2: जी।
1: अच्छा, मन और शरीर कैसे काम करते हैं इसकी भी चर्चा मुझे नजर आई थी अंक में, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी भी व्याख्या आप करें
2: जी। साक्षी जो चेतना है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, चाहे वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो, चाहे माइंड कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो, किसी भी प्रकार की जो चेतना है वो चेतना मूल रूप से साक्षी है। तो चेतना में पहले जैसे विषय की अनुभूति होती है वैसी ही वो चेष्टा करता है। चेतना में जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी वैसे ही वो चेष्टा करेगा।
1: अच्छा।
2: ये इस विज्ञान है, आप देखें।
1: अच्छा।
2: तो अब मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है और शरीर की क्रिया होती है और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। यानी मन जैसा विचार करता है वैसा ही शरीर व्यवहार करता है। इसको महात्मा बुद्ध भी कहते थे, जैसा तुम सोचते हो वैसे तुम हो जाते हो। तो ऐसे में आपको सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन लाना होगा
1: विचार
2: में। इसीलिए इस ग्रंथ में विचार का भी बहुत बड़ा महत्व है कि सद विचार होने चाहिए। आप खुद ही जो कर्म कर रहे हैं और जिस परिणाम को आप पाना चाह रहे हैं इसको अगर आप शांतिपूर्वक विचार पूर्वक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच भेद है। और वो भेद जब तक वो गैप भरेगा नहीं तब तक आपको पूर्णता की न प्राप्ति होगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना सुखी हो पाएंगे। जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो जीवन की विडंबना यही है, हमारी चाहना और हमारा कर्म इन दोनों के बीच का योग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कभी दुख का भी वियोग नहीं होता, दुख बना होता है हमेशा।
1: जी, जी।
2: तो योग जो है वो दुख के संयोग का वियोग कराता है, गीता में भगवान ने कहा।
1: जी, जी।
2: और ये तभी होगा जब दुख का संयोग जिन कारणों यानी जिन कर्मों से हो रहा है उन कर्मों को परिवर्तित किया जाए। तो निश्चित ही परिणाम अपने आप बदल जाएगा। तो मन के अनुसार शरीर व्यवहार करता है और वही व्यवहार फल की सिद्धि का कारण बनता है। तो लोक में जहां जहां जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वहां वैसे वैसे पौरुष के उपयोग के द्वारा लौकिक वैदिक फल की भी सिद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो साक्षी चेतना है उसमें जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी उसी तरह के विषय के अनुसार जो है मन में विचार आएगा और उसी विचार के अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी। ऐसा कहा भी है इन्होंने कि मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वही तो पौरुष है। अब आप देखिए कि आपका पौरुष आपके पुरुषार्थ के नष्ट करने पर लगा है। पौरुष का मतलब यह भी है कि आप कह लें, संकल्प कर लें कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को नहीं करने में लगा दिया। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ कि आप जीवन में अच्छा चाहेंगे नहीं। आप नहीं करेंगे ये संकल्प आपने ले लिया, लेकिन आपके जीवन में बुरा हो या आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जीवन में अच्छा हो लेकिन मैं कुछ अच्छा ना करूं, ये नहीं संभव हो सकता। तो इसलिए बार बार यहाँ पर वशिष्ठ जी इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप अपने प्रयत्न को करें और प्रयत्न के द्वारा जो है आप संसार में जो कामना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो सकती है।
1: तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जिस तरह का हमारा विचार होगा उसी तरह का हमारा कर्म भी हो जाएगा, इससे उसका परिणाम निर्धारित होगा।
2: महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यराजों के गुरु बने हैं।
1: अच्छा।
2: तो बिना पुरुषार्थ के इस संसार में अगर कोई किसी प्रकार के फल की कामना करता है तो ये निहायत ही बेमानी होगी और ये कभी भी संभव नहीं है। आपको बिना पुरुषार्थ के आप चाहें कि मनचाह परिणाम पालें ये संभव नहीं है।
1: अच्छा, ये बताएं कि संपूर्ण शास्त्रों का सारांश क्या है?
2: जी, संपूर्ण शास्त्रों का सारांश वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अभ्यास और गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि की जा सकती है और यही जो है संसार में समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है कि कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए। यही सारे शास्त्र कह रहे हैं
1: जी,
2: कि आपको हमेशा प्रयत्न शुभ कर्मों के प्रति, यानी जो कर्म आपको शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करे
1: जी,
2: उस पर ध्यान देना है।
1: और
2: जहां जहां भटकाव की स्थिति है, जहां आपको लगता है कि ऐसा करके, और एक बात और देखिए कि अगर हम निरपेक्ष होकर के अपना आत्मन्वेषण करें
1: जी,
2: तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
1: बिल्कुल ये सच है।
2: लेकिन हम हमेशा दूसरों से अपनी पुष्टि चाहते हैं या दूसरे हमको नया नया चीज बताने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिसको गोस्वामी जी कहते भी हैं कि उपदेश कुशल बहुते रे पर सिखवन के बुद्धि घने रे। तो जितना भी आदमी के पास बुद्धि है, वो सब वो दूसरों को ठीक करने में लगाने में लगा है। उस बुद्धि का तनिक भी उपयोग अपने को ठीक करने में,
1: अपने को ठीक करने में नहीं
2: लगाना चाहता। आप देखें जगत में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट लेके लोग बैठे हैं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या है, तो शायद वो मौन हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बदलाव हमेशा अपने आप से शुरू करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी मूर्ता लोगों में है कि लोग सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। सच ये है कि जब आप बदलते हैं तो दुनिया में बदलाव की संभावना होती है। जितने भी महापुरुषों की कहानी है, वो कभी भी आप देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको बदलने के लिए नहीं, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने खुद में किया है।
1: बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि अगर आप दुनिया को बदलने चले तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है
2: जी।
1: तो आपने बताया कि शास्त्रों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और प्रयत्न, ये संपूर्ण शास्त्रों का सारांश है।
2: हाँ, ये जो तीनों जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो होगा, अशुभ कर्म से आप अपने चित्त को हटाएंगे और शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाएंगे, तो फिर ऐसे में परिणाम तो फिर शुभ होगा ही होगा। तो इसके लिए ये तीनों की जरूरत है। गुरु का मतलब यहाँ ये भी ध्यान रखें कि ऐसा गुरु जो शास्त्रों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का वो सजीव रूप हो। इसीलिए देखिए गुरु के जो पदचिन्हों की पूजा हम करते हैं, गुरु चरण की बात हमेशा होती है। तो गुरु चरण का मतलब क्या है, लोग कहते हैं कि आपके पदचिन्ह बता रहे हैं कि आप क्या हैं। तो जो ज्ञान हम दूसरों से सुन रहे हैं, वही ज्ञान जब गुरु देता है तो वो ज्ञान हमारे जीवन में अंगीकार क्यों होता है, क्योंकि गुरु उस ज्ञान के अनुसार उसी पथ का अनुगामी होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसका कुछ और है और कर्म कुछ और है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया जाए। अब आप सोचिए कि आप दर्पण के धूल साफ करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल से मन का दर्पण साफ करो। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के चरण की धूल जो है वो पदचिन्हों की तरफ इशारा कर रही है कि गुरु जिस राह का अनुगामी है, जिस तरफ चल रहा है, क्योंकि वो सच्चिंतन करता है, सदव्यवहार करता है। और संसार के लोग हो सकता है सद की बात करते हों, सदविचार तो करते हों, लेकिन सदकर्म नहीं करते हों। तो गुरु सदकर्मी होता है, इसीलिए वो प्रेरक है। और अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, क्योंकि बच्चे में देवत्व का जो विकास है वो माँ और पिता के द्वारा आएगा, और उसके बाद जिस आचार्य के पास जाता है उस आचार्य में भी देवत्व होना चाहिए, आचार्य देवो भव, तब वो दैवी गुणों से संपन्न होगा। और दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही वो शुभ कर्म का कर्ता बनेगा। शुभ कर्म का कर्ता बनेगा तो शुभ फल की प्राप्ति भी करेगा, जीवन में संतोष भी होगा, शांति भी होगी। तो ऐसे में ये बात बताई गई, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि दैवी और आसुरी संपदा ये हर मनुष्य में है
1: जी।
2: भगवान गीता में कहते हैं कि दो तरह की संपदाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके अंदर पहले तो देवत्व का खुद विकास होना चाहिए। आप सामान्य जीवन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक जीवन को जन्म दिया, अब वो जीवन किन पदचिन्हों पर चलेगा और उस पर चल करके सुरक्षित पल्लवित और पुष्पित होगा, वो पदचिन्ह तो आप ही के द्वारा निर्धारित करने पड़ेंगे।
1: और अक्सर मातृ देवो भव पितृ देवो भव को जिस अर्थ में लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि माँ जो है वो देव है,
2: देव
1: पिता देव है, जबकि भव की बात,
2: भव की है, बनो
1: बनो
2: है, हो नहीं तुम
1: वो है नहीं, बनने की
2: बनने की बात है
1: ना। तो ये भी एक संदेश है उसमें,
2: संदेश है जी
1: जी। अच्छा, तो आपने सत्कर्म सद्बुद्धि की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो सद्बुद्धि है वो विकसित कैसे होती है।
2: सद्बुद्धि विकसित होती है सदशास्त्रों और सत्संग के सेवन से। बिना इसके जो है आप सद्बुद्धि के साथ नहीं हो सकते, दुर्बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि विषय जो है वो हमेशा आपके इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा। तो विषयानुगामी जो लोग हैं वो दुर्बुद्धि के शिकार होंगे, इन किन प्रकारेण उन विषयों की प्राप्ति में लग जाएंगे। सद्बुद्धि जो है आपको विवेक देगी, विवेक के द्वारा आप सद का चिंतन करेंगे और सत्संग कर पाएंगे। सत्संग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बैठ के सद चर्चा सुने, ये नहीं है। शब्द देखिए, शब्द ये कह रहा सत्संग, संग कि सत का संग करो, यानी सत के साथ आप रहो, सत व्यवहार में लाओ।
3: जी जी,
2: लेकिन हम लोग सत्संग सिर्फ वाणी मन वचन से करना चाहते हैं,
3: बिल्कुल,
2: कर्म से नहीं। जब तक सत कर्म में नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा।
3: तो सत के साथ रही,
2: सत के साथ रही,
3: बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है इसमें श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न थे जो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखे और जिसका निराकरण वो कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखे हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो।
2: अच्छा, बिल्कुल
3: जी।
2: वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं। कितना सुंदर सवाल। जैसे अगर ये कहें कि हम आज भी अगर ये सवाल बच्चों से कहें कि आप जिन भी सलाका लोगों को जानते हैं, सलाका पुरुषों को जानते हैं, वो क्या दैववश हैं? आप देखिए प्रेत प्रसंगों में कैसे कैसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी आपदाएं आती हैं कि लगता है जीवन यहीं समाप्त हो गया, लेकिन वहां उस जगह पर वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखने की तरफ उत्सुक हो जाती है और वहां पर वो इतिहास रच देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन का संकल्प और आपका प्रयत्न पूरा परिणाम बदल देने, यानी पूरी आपकी जो कह सकते हैं जो आपने अर्जित किया है, चाहे प्रारब्धवश और चाहे अपने प्रयत्न से, वो पूरा परिणाम बदल देने का सामर्थ्य रखता है आपके सत्संकल्प और सत्कर्म के द्वारा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि बताओ कौन दैव की प्रतीक्षा किए हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष के प्रभाव से ब्रह्मणत्व तो प्राप्त किया। जो विश्वामित्र आपको लेने आए हैं, ये अपने पौरुष से जो ब्रह्म ऋषि बने हैं, राजर्षि से ब्रह्म ऋषि का इन्होंने यात्रा की है, ये पौरुष का परिणाम है और किसी साधन से नहीं मिला है इनको। अब ये दैव के भरोसे बैठ जाते तो ये सिद्ध होता क्या?
3: नहीं होता।
2: तो कहते हैं राम जी से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देव पुरुष जो पराक्रमी है, बुद्धिमान है, पंडित है, वो दैव की प्रतीक्षा में रह करके अपने उन गुणों को विकसित किया है। वो जो कुछ भी किया है वो प्रयत्न से सिद्ध किया है, यानी क्रियमाण जो आपका वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि हुई है, इसलिए पुरुषार्थ ही करने योग्य है। और दैव का जो है सहारा लेना, मैं समझता हूं कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है। दैव भी पूर्व का पुरुषार्थ है, न कि कोई ऐसी घटना जो अनायास घटी।
3: अनायास घटी है, बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न श्री राम के समक्ष रखा और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम ने एक जिज्ञासा रखी कि दैव क्या है, जो लोक में प्रचलित है। तो इसे समझाइए कि वशिष्ठ जी ने कहा क्या।
2: श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भगवान आप सर्व धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, किसे कहते हैं दैव? ये राम जी कहते हैं, क्योंकि लोक में तो राम जी भी देख रहे हैं ना कि दैव भरोसे लोग बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, जब विनय कर रहे हैं राम जी, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये लोक प्रचलन में तो है तो इसको बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल भोग है, चाहे वो शुभ हो
3: चाहे वो अशुभ हो,
2: तो ऐसे में वो किसका परिणाम है? वो कर्म का परिणाम है।
3: जी, जी,
2: लेकिन
3: जी।
2: उस फल को लोगों ने दैव नाम दे दिया। तो हम लोगों ने कर्म फल को दैव नाम दे दिया, जबकि कर्म फल कर्म के अधीन है, दैवाधीन कर्म नहीं है।
3: बिल्कुल,
2: कर्म के अधीन जो फल है उसको हम दैव कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं, उसी को दैव कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यंभावी फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है।
3: जी जी, तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने की। और देखिए कर्म की इतनी बात हुई कि कर्म से ही सारे समाधान है। तो मन में एक सहज प्रश्न आता है कि मनुष्य के कर्म का निर्धारण कौन करता है?
2: क्या बात है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले से अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई हैं। मन की जो वासनाएं हैं वही आपके शरीर के कर्मों के माध्यम से, वचन के माध्यम से और शरीर में जो आपकी स्थिति है वो उस रूप में वो परिणित होती हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है
3: जी।
2: अब आप देखिए किसी व्यक्ति के कर्म से उसके मतलब चित्त की वासना या उसके मन की वासना को भी आप आसानी से जान सकते हैं
3: जी।
2: वो कोई और कर्म कर ही नहीं सकता जो उसके मन की वासना से अलग हो।
3: बिल्कुल।
2: अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा घोष है ये कि मन में जो वासनाएं होती हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है वो भी मन की वासनाओं की वजह से है, तृष्णा की वजह से है कि मन में तृष्णा रह जाती है, इस नाते उस भोग के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। अगर तृष्णा शांत कर दी जाए तो फिर जन्म मरण का जो भवरोग जिसको आप पूछा था तो वो भवरोग से मुक्ति मिल जाएगी। भवरोग जन्म और मरण ही है मूल रूप से देखें
3: जी,
2: तो
3: जी जी जी। अच्छा, मन की बात इतनी हुई तो ये बताएं कि मन की कितनी संज्ञाएं हैं, कितने नाम हैं?
2: वशिष्ठ जी कहते हैं मन को विभिन्न नामों से या विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा कहा गया है। मन को चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की ही संज्ञाएं हैं ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।
3: चित्त वासना
2: कर्म, दैव और निश्चय, ये सब मन की ही संज्ञाएं हैं जिसको व्यक्ति कठिनता से समझता है, लेकिन है ये सत्पुरुष कहते हैं ये सब मन के ही विभिन्न नाम हैं क्योंकि ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय भी आप मन से करते हैं
3: जी जी।
2: कर्म भी बिना मन के नहीं होता,
3: नहीं होता।
2: दैव जो कह रहे हैं आप फल, वो फल भी किसी कर्म का ही परिणाम है तो वो भी मन का ही हिस्सा है। चित्त में जो साक्षी चेतना है उस चेतना में जो विषय का चिंतन होता है उसी विषय के अनुसार मन विचार करता है और उस विचार के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो ऐसे में

0: और अशुभ, इसलिए देख सकते हैं वासनाएं दो प्रकार की मानी गई हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना। अब ये दोनों किसी न किसी फल की वासना में हमेशा फल की कामना होगी, क्योंकि फल तो रहेगा ही, तभी तो शुभ कर्म करके आप शुभ वासना की पूर्ति करेंगे और अशुभ कर्म करने लगे तो अशुभ वासना की पूर्ति होगी। तो ऐसे में जो ये दोनों बहाव है, वासनाएं इसी रूप में बहती हैं, शुभ और अशुभ, नदी जैसे बहाव है, दो पार्ट हैं उसके। ठीक है,
1: और जिस वासना के हम अधीन हुए उस तरह का हमारा कर्म हो जाता है,
0: कर्म हो जाता है, या उस तरह का कर्म करके हम उस फल को प्राप्त करते हैं,
1: उस फल को प्राप्त करते हैं।
0: तो वो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकवान लोग हैं उनको अशुभ मार्ग से, यानी जो अशुभ वासना की तरफ आपका चित्त बह रहा है, वहां से हटा करके शुभ मार्ग में उसको लगाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न कर। और ये होगा कैसे? प्रयत्न से होगा, प्रयत्न पूर्वक, यानी पुरुषार्थ के द्वारा ये सिद्ध होगा। आप सोचें कि अपने आप हो जाएगा, दैव भरोसे बैठने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पुरुषोचित कर्म करेंगे तब जाकर के इसकी सिद्धि होगी।
1: अच्छा, इसमें चित्त के विषय में भी चर्चा है आगे, तो मैं चाहती हूँ ये बताएं आप कि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, क्या बताया गया है?
0: वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, क्षण भर में वही खिलौना फेंक देंगे, फिर दूसरे की मांग करेंगे, मतलब कहीं चित्त में स्थिरता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो शिशु के समान चंचल है, उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग में लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मन शांत बैठेगा। एक संत है वो कहते भी हैं कि शांति जो है, शांत अमन की अवस्था है
1: जी।
0: मन की अवस्था नहीं है, मन तो हमेशा प्रवाह में होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वासना की जो नदी है, जो शुभ और अशुभ वासना की नदी जो प्रवाहित है, ऐसे ही उस प्रवाह के साथ मन प्रवाहित है। तो मन को जब शुभ मार्ग में आप लगाएंगे तो वो अशुभ मार्ग का त्याग कर देगा, और जब अशुभ मार्ग में रहेगा तो शुभ मार्ग अपने आप छूट जाएगा। तो ऐसे में मन जो है हमेशा प्रवाह में रहेगा।
1: तो एक तरह से बच्चों की तरह उसकी प्रकृति है, और उसको उस तरह से हमें समझना चाहिए। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कर्म की प्रेरणा विषय पर। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आप सभी को मनीषा
2: और विजयकांत का नमस्कार। श्रोताओ, भारत केवल विविधताओं और संस्कृतियों की धरती नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभाओं की जन्मभूमि भी रहा है। इस देश ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और कर्मठता से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
1: भारत की प्रतिभा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य और दर्शन के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से समाज के यथार्थ को आवाज दी और लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई।
2: और जब बात आधुनिक भारत की प्रतिभाओं की होती है तो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, खिलाड़ियों, कलाकारों और युवाओं की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो या विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा अपनी चमक बिखेर रही है।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
2: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाए। क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वह खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: स्वागत है आपका ज्ञान, जिज्ञासा और खोज की उस दुनिया में जहां हर सवाल एक नई संभावना को जन्म देता है, जहां एक छोटा सा प्रयोग भविष्य की बड़ी खोज बन सकता है और जहां युवा मस्तिष्क अपनी सोच और प्रतिभा से दुनिया को चौंका सकते हैं।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारत के उन युवा वैज्ञानिक मस्तिष्कों को जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आया तो 5 के गले में सजा स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि केवल 5 विद्यार्थियों की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक सोच, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारी युवा प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण भी है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उस भारत की है जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, जिसने दुनिया को शून्य का रहस्य समझाया है, जिसने विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिस धरती पर आर्यभट्ट ने आकाश को समझने का प्रयास किया, जिस भारत ने सीवी रमन की खोज से प्रकाश की दुनिया में नई रोशनी पैदा की और आज उसी भारत की युवा प्रतिभा ने भौतिकी के विश्व मंच पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है।
2: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों में नहीं होती बल्कि उन युवा मस्तिष्कों में होती है जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उस देश का भविष्य लिखते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।
1: 5 युवा, 5 प्रतिभाएं और 5 स्वर्ण पदक। जी हाँ श्रोताओं, आज भारत ऐसे ही 5 युवा मस्तिष्क पर गर्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ 5 पदकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, परिश्रम की, ज्ञान की और उस भारत की जिसकी युवा शक्ति भविष्य के नए अध्याय लिख रही है।
2: ये उन 5 युवा सितारों की कहानी है जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर अपने ज्ञान से रोशन किया भारत का नाम, भारत का मान और भारत का तिरंगा। आज विज्ञान पत्रिका में जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, कितनी कठिन होती है इसकी परीक्षा, कैसे चुने जाते हैं भारत के ये युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और आखिर कैसे भारत ने विज्ञान के इस विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने जा रहा है विज्ञान की दुनिया का एक नया पन्ना।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है IPHO। इसकी स्थापना 1967 में पोलैंड के वार्सो में हुई थी। IPHO का आयोजन प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें 5 महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों के प्रतिभाशाली युवा भौतिकी विज्ञानी भाग लेते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भौतिकी विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता है। इसे आप भौतिकी का ओलंपिक भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रायोगिक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना है।
2: भौतिकी सिर्फ किताबों में लिखे सूत्रों का नाम नहीं है, यह उस जिज्ञासा का भी नाम है जो पूछती है यह दुनिया काम कैसे करती है, आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, प्रकाश की गति कैसी है, पदार्थ के भीतर छिपे रहस्य क्या हैं। और जब इन सवालों की तलाश में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा विद्यार्थी एक मंच पर आते हैं तो भारत भी अपनी प्रतिभा के साथ वहां मौजूद होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विश्व मंच पर भारत के 5 युवा विद्यार्थियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, यह उपलब्धि केवल 5 पदकों की कहानी नहीं है, यह उस वैज्ञानिक भारत की कहानी है जिसने वर्षों से अपने युवाओं में जिज्ञासा, तर्क और खोज की भावना को विकसित किया है।
1: ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO एक वैश्विक ओलंपियाड है जो प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। IPHO का उद्देश्य जटिल समस्या समाधान और प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यम से माध्यमिक छात्रों के भौतिक ज्ञान का आकलन करना है। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और अपने ज्ञान का परीक्षण करने का शानदार अवसर मिलता है।
2: IPHO में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले राष्ट्रीय स्तर की भौतिकी ओलंपियाड उत्तीर्ण करनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय टीम में 5 छात्र होते हैं और प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया IPHO भौतिकी में शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है।
1: छात्रों का माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन छात्रों ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है वो भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू न की हो। राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के लिए अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। IPHO का पाठ्यक्रम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है।
2: भौतिकी ओलंपियाड कार्यक्रम 5 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय मानक भौतिकी परीक्षा यानी NSEP। भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ IAPT द्वारा NSE परीक्षा आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय मानक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्यक्रम को कवर करती है। IPHO में भाग लेने के पात्र हो जाते हैं। अभिविन्यास सह चयन शिविर OCSA। भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से लगभग शीर्ष 35 छात्रों को अभिविन्यास सह चयन शिविर के लिए चुना जाता है। HBCSE छात्रों को उनकी अवधारणाओं, प्रायोगिक ज्ञान, समस्या समाधान और कौशल पर काम करने के लिए इस शिविर का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण शिविर छात्रों को भौतिकी की अवधारणाओं पर प्रशिक्षित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भागीदारी अंतिम चरण IPHO या अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है, जिसमें सभी प्रतिभागी देशों के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। IPHO परीक्षा के दो चरण होते हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक परीक्षा।
1: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO विद्यालय स्तर की भौतिकी की विश्व चैंपियनशिप है। इसका 56वां संस्करण 5 से 12 जुलाई 2026 तक कोलंबिया के बुकार मांगा शहर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 85 से अधिक देशों के 381 छात्र शामिल हुए। ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यार्थी थे।
2: भारत ने कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते और देश ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया।
1: श्रोताओं, ये उपलब्धि एक ऐसी प्रतियोगिता में हासिल हुई जिसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था, जो विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में इसकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब फिजिक्स ओलंपियाड के वैश्विक मंच पर हमारी पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने ये कमाल किया था।
2: स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 भारतीय छात्र पुणे महाराष्ट्र से कनिष्क जैन हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रिद्धेश अनंत बेंडाले, द्वारका, नई दिल्ली से ऋषित गर्ग, मुंबई महाराष्ट्र से श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी अहमदाबाद गुजरात से। कनिष्क, रिद्धेश, ऋषित, श्रेष्ठ और स्वरित, आप सभी को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि देश के अधिक से अधिक लोग आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को जानेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA के लिए चयनित कक्षा 12वीं के छात्र कनिष्क जैन ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया। कनिष्क के अनुसार कोटा में जो अकादमिक सपोर्ट उन्हें मिला वो सर्वश्रेष्ठ था। फाइनल मुकाबले में दुनिया भर के प्रतिभावान छात्रों से मिलने का मौका मिला। संस्थान की मजबूत पढ़ाई बेहद उपयोगी साबित हुई।
2: ऑफिशियल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इतिहास में कोटा कोचिंग के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शानदार रहा। संस्थान के छात्रों ने अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 188 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 90 गोल्ड, 75 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
1: कठिन 4 चरणों को पार कर मिली सफलता में हम आगे बात करें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए छात्रों को कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित NSEP परीक्षा में कोटा के 138 छात्र चुने गए। इसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित दूसरे चरण में 20 छात्रों ने अगले दौर में जगह बनाई
2: और तीसरे चरण के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया। इसमें 4 छात्र कोटा कोचिंग के थे। आखिरी चरण में कोलंबिया के बुकारा मांगा में आयोजित फाइनल मुकाबले में 87 देशों के 381 दिग्गजों के बीच भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया।
1: इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का प्रभावशाली रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है, जिसमें पिछले एक दशक में प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम पर जगह बनाई है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञात प्रश्नों को तेजी से हल करना सिखाते हैं, जबकि ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वहाँ पहले गहरी समझ, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता ही काम आती है।
2: और इसलिए यह उपलब्धि केवल 5 छात्रों की नहीं बल्कि उन शिक्षकों, वैज्ञानिकों और संस्थानों की भी है जिन्होंने वर्षों तक इन प्रतिभाओं को निखारा। HBCSE के अनुसार भारत के लगभग 64% ओलंपियाड पदक विजेता आगे चलकर PhD करते हैं, लेकिन लगभग 32% ही भारत में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने में तो हम सफल हैं, लेकिन उन्हें देश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। IPHO का सिलेबस केवल 12वीं तक सीमित नहीं है, इसमें स्नातक स्तर के ये टॉपिक शामिल हैं: यांत्रिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत और चुंबकत्व में ट्रांजिएंट्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, प्रकाशिक तरंगे और आधुनिक भौतिकी के बेसिक्स।
1: ये सफलता देश के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। HBCSC ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए भारत के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है और एक कठोर बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया, ओरिएंटेशन कैंप और गहन कोचिंग के माध्यम से विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली पूर्व विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारे युवा भौतिकविदों की ये अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
2: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 स्वर्ण पदक जीतना और संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना भारत के छात्रों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक सोच के साथ HBCSE TIFR ओलंपियाड कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता कई और युवाओं को विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी और वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार में भारत की स्थिति भी मजबूत करेगी। DAE ने भारतीय टीम के नेताओं HBCSE TIFR के प्रोफेसर अन्वेष मजुमदार और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की डॉक्टर लीना जोशी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दास गुप्ता और गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी की निशा केलकर के साथ वैश्विक प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करने के लिए HBCSE में फिजिक्स ओलंपियाड मेंटर पूल को भी बधाई दी।
1: HBCSE के निदेशक प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत की निरंतर सफलता, दशकों से जारी निरंतर मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और शिक्षकों एवं छात्रों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वैश्विक पहचान दिलाने में DAE के वर्षों के निरंतर समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में मिली सफलता विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के पोषण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के भविष्य के नेतृत्व के लिए मजबूत नींव बनाने के प्रति DAE की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: JEE जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करना सिखाती हैं, लेकिन ओलंपियाड में दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ सिर्फ याददाश्त नहीं जिज्ञासा काम करती है, सिर्फ सूत्र नहीं सोच काम करती है, सिर्फ अभ्यास नहीं नई समस्या को समझने की क्षमता काम करती है। और यही कारण है कि इन 5 युवाओं की उपलब्धि इतनी विशेष है।

0: इन युवा प्रतिभाओं ने ये साबित किया है कि भारत की प्रयोगशालाओं, विद्यालयों और कक्षाओं में बैठी प्रतिभा को यदि सही अवसर मिले तो वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। तो आइए आज इन 5 युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को दिल से सलाम करें, उनके माता पिता को बधाई दें, उनके शिक्षकों को नमन करें, उनके प्रशिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों का अभिनंदन करें और अपने देश के हर उस बच्चे से कहें, सपने बड़े रखो, सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और सीखने से कभी मत रुको, क्योंकि अगला स्वर्ण पदक, अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज और भारत का अगला विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शायद आपके बीच ही बैठा हो।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वो खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: आप सुन रहे थे भारत के 5 युवा भौतिकी सितारों की ये स्वर्णिम गाथा। भारत की प्रतिभा को सलाम, जय हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: लेखन विनीता जैन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार को नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत प्रस्तुति हुई अहिल्या लीला नाट्य की।
1: यह आश्रम कितना अपना लग रहा है,
2: क्योंकि आपकी पुत्री जो है यहाँ पर।
1: सुखी रहो, पूछूंगा नहीं कि कैसी हो, मुझे याद है तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं है।
0: जिसका निर्देशन किया नीलेश्वर मिश्रा ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में और सुनते हैं लीला नाट्य के संपादित अंश।

0: अहुभाग्य पितामह ने हमारे आश्रम को पवित्र किया।
1: मैं आपके पास एक आवश्यक कार्य से आया।
0: आज्ञा दीजिए।
1: यह मेरी मानस पुत्री अहल्या है, इसे मैंने अपने सर्वोत्तम कौशल से बचा है। ऋषिश्रेष्ठ, अनिश्चित काल के लिए मुझे गहन वन में तप करने जाना है। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि इसे आप अपने यहां शरण दीजिए।
0: आपकी आज्ञा श्रीमती पितामह।
1: इस पवित्र आश्रम को अपने सद्गुणों से समृद्ध करना, तप संपन्न करके मैं अवश्य आऊंगा।
0: कल्याण हो बालिकाओं, अपनी नई सखी का स्वागत करो। इन्हें यहाँ रहते हुए अपने पिता का स्मरण नहीं होना चाहिए।
2: जो आज्ञा गुरुदेव।

0: देवी, मैं अनमोल फल लेने गया था। मैंने वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा।
1: क्या देखा जो इतने विस्मित हो गए हो?
0: एक सूर्य तो पूर्व दिशा में उग रहा था, परंतु एक दूसरा सूर्य भी उसी दिशा से उग रहा था।
1: सीधे कहना, क्या कह रहा है?
0: पितामह आ रहे हैं।
1: क्या क्या कहा? पिताश्री आ रहे हैं? चलो चलो, पितामह के स्वागत की तैयारी करो, थाल सजाओ, मार्ग को स्वच्छ करो। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर गुरुदेव को बताओ

0: बहुत ही मोहित आश्रम है। पक्षियों का कलर और साउंड के गान जैसा यह आश्रम कितना अपना लग रहा है।
1: क्योंकि आपकी पुत्री जो है यहाँ पर।
0: सुखी रहो, पूछूंगा नहीं जी कैसी हो। मुझे याद है तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं है, परंतु आगे का भी मेरे मन का हो जाए तभी सब ठीक होगा।
2: आज्ञा कीजिए देव।
0: कौन होगा इसका पति जो तप का अधिकारी हो, जिससे माया भी हार चुकी हो। शम दम नियम आचरण की पवित्रता हो।
3: आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं देव। देव आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
0: ऋषि गौतम, क्या आप मुझ पर यह उपकार कर सकेंगे?
2: मुझे लज्जित ना करें, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है।
0: तुम्हें पुत्री, तो फिर यह मेरा निर्णय हो। विवाह की तैयारी, शीघ्र निमंत्रण ऋषियों को दो, उत्सव हो मंगलकारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं इतिहास।
2: और श्रोताओं मेरा भी नमस्कार, मैं हूं तारीख।
1: अच्छा तारीख, आज हम बात सन 1892 की करेंगे।
2: 1892?
1: जी हाँ, पटियाला के लाडलू गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो भी आम बच्चों की तरह ही था।
2: हाँ मुझे याद आया, तारीख थी 15 सितंबर 1892 और जन्म हुआ था बाबा पृथ्वी सिंह आजाद का।
1: बिल्कुल ठीक, बाबा पृथ्वी सिंह नटखट चंचल चुलबुले स्वभाव के, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये बच्चा बड़ा होकर के अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा देगा।
2: बाबा का पूरा नाम है बाबा पृथ्वी सिंह आजाद। आजाद के संपर्क में आने के कारण उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद जोड़ लिया था।
1: उन्होंने अपने अंतिम दिनों में आजादी मिलने के बाद एक सभा में कहा था,
3: आज इतने वर्षों बाद मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि आज देश के नौजवानों में अगर कोई भाव भरना है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, कि इंसान इंसानियत की राह पर चले जी, एक दूसरे का विश्वास पात्र बने, एक दूसरे के प्रेम पात्र बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। जहाँ तक धन की बात है, वो 400 बीसी के मार्ग पर जाने के बगैर नहीं मिलता। आज देश के सामने नौजवानों को तपस्वी बन के आने की जरूरत है, वही देश को बचा सकते हैं।
2: बाबा पृथ्वी सिंह ने नौजवानों से बहुत उम्मीदें बांध रखी थी। उनके पूर्वज जैसलमेर राजस्थान के थे, पर बाबा का बचपन बर्मा में बीता। उनके पिता रोजगार के लिए बर्मा चले गए थे।
1: कोई 1907 या 1908 का समय था, सारे भारत में देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर लिए गए थे और लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया गया था। उन दिनों की बात है जब बाबा पृथ्वी सिंह ठाकुरबाड़ी से मत्था टेक करके लौटे तो अपने पिता से बोले,
3: बापू जी मैंने यहाँ बर्मा में नहीं रहना, मुझे अपनी जन्मभूमि पंजाब जाना है।
4: अरे लाले, अचानक तेरे को अपनी जन्मभूमि की याद कहाँ से आ गई?
3: ओ जी वो क्या है कि वहाँ देश की आजादी नाल इतना कुछ हो रहा है, मैंने भी कुछ करना है, बस मैंने कह दिया मुझे जी पंजाब जाना है।
4: अरे यहाँ जो इतना कारोबार है, काम है, उसे संभालने के देना है तो कहता जन्मभूमि पंजाब जाना है। अरे आखिर तेरे हुआ क्या है?
3: ओ बाबू जी मैंने अभी ठाकुरबाड़ी में रामायण सुनी। हाँ। वो लंका जीतने के बाद रामचंद्र जी से जब सोने की लंका पे राजकरण की बात कही ना। हाँ। तो जानते हैं क्या कहा उसने?
4: क्या कहा?
3: कहा मेरी अयोध्या मुझे सोने से भी ज्यादा प्यारी है, मैं अपनी मातृभूमि जाऊंगा, उसे स्वर्ग बनाऊंगा। सो बाबू जी मुझे भी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वास्ते पंजाब जाना है।
1: बाबा पृथ्वी सिंह जब पंजाब लौटे तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें कैसे करें। वहां आर्य समाज का बोलबाला था, वे उपदेशों के द्वारा गीतों के द्वारा देश प्रेम का प्रचार करते रहते थे। बाबा उन सब कार्यों से प्रभावित तो थे पर उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो फिर वो पुनः बर्मा लौट आए।
2: उस समय बाबा पृथ्वी सिंह की उम्र 15 वर्ष की थी। तब तक बर्मा में हालात बदल गए थे, पिता को व्यवसाय में नुकसान हो गया, तब बाबा पृथ्वी सिंह ने नौकरी करने की सोची।
3: बाबूजी
4: हाँ बोलो।
3: वो किया कि जी अपने कई साथी पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। मेरे मजबूत अट्टे कट्टे बदन को देख के पुलिस अफसर भी मुझे भर्ती करना चाहते हैं जी, सोचता हूँ मैंने भी भर्ती हो जाने चाहिए।
4: अरे नहीं नहीं नहीं लाले, नहीं पुलिस की नौकरी सही नहीं है।
3: क्यों बापू?
4: अरे वो मैंने पता है किस किस तरह से रिश्वत ले ले के आदमी ने पते तो हो जाना है, तुम चाहे के भी सदाचारी नहीं रह सकते। नहीं नहीं लाले नहीं, पुलिस में भर्ती होके तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है।
5: बापू ठीक है जी, आपकी बात मैंने समझ आ गई है जी, मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा।
1: बात आई गई हो गई, पर पृथ्वी सिंह के मन को चैन कहां मिल रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें और कैसे करें।
2: तभी पता चला अमेरिका में बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह को राह मिल गई, 100 रुपए जुगाड़े और अमेरिका के लिए चल पड़े बिना अपने पिता को बताए।
1: मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून जो था, बर्मा से रंगून, रंगून से पिनांग, पिनांग से सिंगापुर और फिर हांगकांग के रास्ते। वहां उनकी मुलाकात लाहौर के कुछ नौजवानों से भी हुई।
6: अजी तुसी हिंदुस्तानी हो जी?
5: आओ जी।
6: अजी हम सब लाहौर से हैं।
5: असी पटियाला से? ओए होए, ओए इधर कैसे?
6: अजी अमेरिका जा रहे हैं। अजी तुमने देखा वो माचू डायनेस्टी के खिलाफ चीन की धरती पे जो इनकलाब हुआ जी?
5: हाँ देखा। ओ जी किस तरह एक रात में डॉक्टर सन्यात सेन के कहने पे चीन के सभी मर्दों ने गुलामी की निशानी अपने लंबे लंबे वालों की चोटियां काट फेंकी जी। केवल एक रात भर में सारे चीन में चौराहों पर लंबे लंबे वालों के ढेर लग गए।
6: ओ जी ऐसे ही जज्बात हम हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भरना चाह रहे हैं जी।
5: तो असी भी चाह रहे हैं, पर चाहने भरने से क्या होता है जी?
6: ओ जी इसी वास्ते हम अमेरिका जा रहे हैं। उत्थे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई जी, उनके कार्यक्रम ऑरेगन स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट और कनाडा सभी जगह चल रहा है जी।
5: अच्छा?
6: हाँ जी हम भी उसमें शामिल होना चाह रहे हैं जी।
5: ओ जी फिर तो असी भी तुम्हारे साथ अमेरिका चल रहे हैं। ओए अमेरिका मैं आ रहा हूँ। ओए सुना।
1: और इस तरह बाबा पृथ्वी सिंह, बलवंत सिंह और प्यारालाल आदि की सहायता से अमेरिका जा पहुंचे।
2: अमेरिका के रास्ते में मनीला और फिलीपींस आइलैंड में नौजवानों द्वारा अमेरिका के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को भी देखा। उनके मन में देश प्रेम की आग और बढ़ गई।
1: अमेरिका में गदर पार्टी ने एक प्रेस चला करके गदर अखबार निकालने की योजना बनाई थी। इस अखबार की सारी बागडोर बाबा पृथ्वी सिंह को सौंप दी गई। उन्होंने बड़ी कुशलता से अखबार चलाया, साथ ही कैलिफोर्निया में युगांतर आश्रम की स्थापना भी की।
2: उनकी एक ही योजना थी कि हिंदुस्तानी दुनिया में जहां भी हो देश के लिए संगठित हो और भारत में इनकलाब करे।
1: बाबा पृथ्वी सिंह ने पहला विश्व युद्ध शुरू होने तक अमेरिका में काम किया। गदर पार्टी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है हिंदुस्तान जाकर गदर पार्टी के लोग अंग्रेजी राज को खत्म करें, हिंदुस्तानी फौज तैयार करें। आखिर 24 अगस्त 1914 को गदर पार्टी के चुने गए 150 लोगों के संग पृथ्वी सिंह प्रिंस कोरिया जहाज से हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े।
2: बात नवंबर 1914 की है। लुधियाना के पास लुंडोवान स्टेशन पर क्रांतिकारियों की बैठक में पृथ्वी सिंह से झांसी के प्रसिद्ध पंडित परमानंद ने, जो अमेरिका से उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे, उनसे पूछा,
7: पृथ्वी सिंह जी आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? दोसा मारू जहाज से उतरने वाले सभी साथी तो कलकत्ता ही में पकड़ लिए गए थे।
5: ओ जी वैसे ही पहुँचे जैसे आप। जी हुआ यूं कि जगत राम जी तो जहाज से ही भेष बदल कर निकले थे और आपने पुरभैये की बाल्टी उठाकर पुरभैया होने का नाटक किया, सो आप दोनों तो बच के निकल गए जी। हम पूरे सूट बूट में थे, सोचा किसी को शक नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ पकड़ा गए जी।
7: अब फिर क्या हुआ?
5: अब फिर सबका नाम लिख लिख हमें गोरखा फौजियों की निगरानी में पंजाब जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी विंडसर स्टेशन पर जब रुकी तो एक नया फौजी अफसर एक सूची लेकर आया और एक एक करके जी उन लोगों का नाम पुकार कर नीचे उतारने लगा जो क्रांतिकारी नहीं थे, उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत थी। पहला ही नाम उसने नत्था सिंह का पुकारा, वो सो रहा था, मैं तेजी से नीचे उतरा और भीड़ में खो गया जी और अम्बाला अपने साथियों के पास जा पहुंचा।
1: पर शांति पृथ्वी सिंह के भाग्य में कहां थी? 8 दिसंबर का दिन था। पृथ्वी सिंह अंबाला के एक बोर्डिंग हाउस में बैठे थे, तभी उनके दूर के रिश्तेदार सरदार निहाल सिंह आए और बोले,
8: अरे प्रदीप पुत्र, की हाल है? बड़े दिनों बाद दिखे।
9: सत श्री अकाल जी, बैठे, खुशी हुई मिलके।
8: सुना है तुसी अमेरिका होके आए हो?
9: हाँ, ओरेगन होके आया हूँ, एग्रीकल्चर सीखने गया सी।
8: अरे वाह पुत्र वाह, यहाँ मैं भी एक एग्रीकल्चर फार्म चला रहा हूँ, शाम को तुम्हें ले चलूंगा, देख के अपनी राय देना। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, थोड़ा काम है, शाम को आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, शाम को चलेंगे? अच्छा अभी चलता हूँ।
9: गया मंजीते, ये निहाल सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों की वफादारी के कारण ही इसे सरदार बहादुर सिंह का खिताब मिला हुआ है। पता है ये पुलिस स्टेशन क्यों गया है? मेरे बारे में खबर देने वास्ते। देखना शाम को पुलिस के साथ आवेगा।
4: फिर तूने क्या सोचा है?
9: सोचना की है, यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। सोचना ये है कि कहाँ जाया जाए।
4: अरे तू तो कह रहा था शाम को पुलिस आएगी, ले खुफिया पुलिस का आदमी अभी आ गया। लगता है तेरा निहाल सब कुछ पहले ही सेट करके आया था, अब संभाल इसे, हैं? मैं तो खिसकता हूँ।
6: अरे सुनिए सुनिए, ये खालसा छात्रावास यही है क्या?
9: नहीं जी, ये खालसा छात्रावास नहीं है, ये तो राजपूत छात्रावास है जी।
6: सुनिए, मुझे खालसा छात्रावास में जाना है जी, नया आदमी हूँ, आपको तकलीफ तो होगी, जरा अगर साथ चल दें, खालसा छात्रावास तक पहुँचा दें तो कृपा होगी।
9: जी बैठिए बैठिए, बताइए खालसा छात्रावास में क्या है?
6: अरे नहीं नहीं, बैठने का समय नहीं है, मैं कहता हूँ हैंड साहब, पृथ्वी सिंह यू आर अंडर अरेस्ट।
9: ओए होए, तो तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो? निहाल सिंह ने खबर दी होगी।
6: तुम्हारा अनुमान सही है पृथ्वी सिंह, अब जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ।
9: कोई बात नहीं, एले पकड़ मेरा हाथ, इनकलाब जिंदाबाद।
2: पृथ्वी सिंह ने हाथ आगे क्या बढ़ाया, लपक के पिस्तौल वाले हाथ पर झपट्टा मारा और पिस्तौल को दूर फेंक दिया। जासूस ने चाकू निकालकर पृथ्वी पर कई वार किए, खून के फव्वारे छूट पड़े, पर पृथ्वी ने उस पर काबू पाके चाकू भी दूर फेंक दिया और जासूस की धुनाई शुरू कर दी, मगर चाकू के वार से काफी खून बह चुका था। एक दूसरे को मारते मारते पृथ्वी और जासूस दोनों बेहोश हो गए थे। दूसरे दिन जब पृथ्वी को होश आया तो उन्होंने अपने को अस्पताल में पाया।
1: पास ही के पलंग पर जासूस भी पड़ा था, पूरा कमरा पुलिस की गिरफ्त में था। पृथ्वी चाहते तो जासूस पर गोली चला सकते थे, मगर गदर पार्टी ने शपथ ली थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को मारना नहीं है।
2: पृथ्वी को अस्पताल से और 80 लोगों को उनके अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लाहौर जेल में डाल दिया गया और मुकदमा चला लाहौर में बगावत करने की साजिश का।
1: अच्छा जानती हो तारिक, पृथ्वी सिंह को तो पता ही नहीं था कि अमेरिका से उनके दल में कृपाल सिंह नाम का एक जासूस शामिल हो चुका है और वही सब जानकारियां पुलिस को दे रहा था। और हाँ, विद्रोह निश्चित 23 फरवरी 1915 को होना था, मगर उसके पहले ही सब गिरफ्तारियां हो गई।
2: हाँ, और मुकदमा चलता रहा, सब ने मिलकर निश्चय किया कि 7 लोग विद्रोह की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे और बाकी सबको फांसी की सजा से बचा लेंगे।
1: हाँ, निर्णय तो उनका ठीक था, पर 7 लोगों के द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद भी अदालत ने 24 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और बाकी को काले पानी की उम्र कैद।
2: मगर इतिहास जनता के भारी विरोध को देखते हुए बाद में वाइसराय काउंसिल ने फैसला बदल दिया। 24 में से केवल उन्हीं 7 लोगों को फांसी की सजा दी गई जिन्होंने अपना जुर्म कबूला था, बाकी को भी काले पानी की सजा दे दी गई।
1: और जानती हो वे 7 लोग कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी?
2: कौन
1: वे थे? करतार सिंह सराबा, बख्शीश सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, भूरा सिंह, हरनाम सिंह और जगत सिंह।
2: अंडमान की जेल में उन पर भारी अत्याचार हुए जिनका भारत में काफी विरोध हुआ। सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी कैदियों को अंडमान की जेल से हटाकर हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए।
1: और हाँ, पृथ्वी सिंह को मद्रास की राजामुंद्री जेल में रखा गया और जानती है उनके हिस्ट्री टिकट पर क्या लिखा था?
2: क्या?
1: बहुत खतरनाक है, सुधरना असंभव, बहुत होशियारी से संभालने की जरूरत है।
2: हाँ, और पृथ्वी ने इसे सिद्ध भी कर दिया चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर।
1: क्या बात है।
2: हुआ यूं कि बाबा पृथ्वी सिंह को खतरनाक कैदी मानकर मद्रास की राजामुंद्री जेल से कलकत्ता की जेल में भेजने का निर्णय हुआ। दो अन्य क्रांतिकारी और 3 सिपाहियों के साथ रेलगाड़ी से भेजा गया।
1: अच्छा।
2: पृथ्वी ने संडास जाने का बहाना किया और सिपाहियों ने हथकड़ी खोल दी और मौका पाकर पृथ्वी ने संडास की खिड़की से छलांग लगा दी और पुलिस को चकमा देकर भाग निकले।
1: और जानती हो, पूरे 8 बरस तक पुलिस उनको ढूंढती रही मगर वो कहीं नहीं मिले। 1923 से लेकर के 1930 तक वे सौराष्ट्र के भावनगर में गुप्तवास में रहे मगर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से उन्होंने जारी रखा।
2: और जानते हो इतिहास, चंद्रशेखर आजाद के बुलाने पर वो इलाहाबाद जा पहुंचे जहां 2 क्रांतिकारियों के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई।
7: पृथ्वी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि 2 बार ब्रिटिश सरकार के गाल पर तमाचे जड़ने के बाद भी आप अपनी छाया भी उसे छूने नहीं दे रहे हैं।
9: भाई जी, इस प्रशंसा और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। सच तो ये है कि हम सभी एक ही रास्ते के पथिक हैं। आज्ञा कीजिए, आपने मुझे किस लिए याद किया?
7: आप तो जानते हैं, हमारे साथी भगत सिंह दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद जेल के अंदर है। फिर हमारे कई साथी कमजोरियों के शिकार होकर सरकार से मिलते जा रहे हैं। अतः लगता नहीं है कि हमारा आंदोलन सफलता से आगे चल पाएगा।
9: बहू जी, तो फिर मैंने क्या करना है?
7: भगत सिंह जी चाहते हैं कि अब आतंकवाद टेररिज्म नहीं होगा, अब तो बोल्शेविक मेथड से हिंदुस्तान में क्रांति करनी होगी। इसके लिए एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस जाकर इस क्रांति की स्टडी करके आए और यहाँ आकर इसकी तैयारी कराएं।
9: मैं तैयार हूँ। मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे आप और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जी काम करने का मौका मिलेगा।
7: हमारी पहली भेंट के उपलक्ष्य में मैं 11 गोलियों का एक ये ऑटोमेटिक पिस्टल दल की ओर से आपको भेंट करता हूँ। रूस आप कैसे पहुँचेंगे ये व्यवस्था आपको ही करनी होगी।
9: जी, इस बहुमूल्य भेंट के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इस बात की इजाजत चाहता हूँ कि रूस जाने से पहले जी सरकार के गाल पर एक और तमाचा जड़ता जाऊँ।
7: जड़ते जाओ, जय हिंद।
1: और ये तमाचा था बंबई के भीड़ भरे स्थान लैमिंगटन रोड के थाने पर अंधाधुंध गोलीबारी का, मगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया गया। और जानती हो वो कैसे छूटे?
2: कैसे?
1: जादू के जोर से। हुआ ये कि उन दिनों काबुल जेल की कोठरी काल कोठरी के नाम से मशहूर थी, रोज 1-2 कैदी मर जाते थे। पर योग और कसरती बदन के कारण पृथ्वी पर उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोगों में तो ये बात फैल गई थी कि पृथ्वी बड़ा जादूगर है, और ये बात जेलर के साले को भी मालूम पड़ गई। तो फिर क्या था, पृथ्वी सिंह से मिलने जा पहुंचा जेलर का साला।
10: पृथ्वी सिंह जी, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है। लोग कहते हैं मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कुछ कीजिए ना।
1: फिर क्या था, पृथ्वी ने देखते ही समझ लिया कि ये मानसिक बीमार है। सो उन्होंने जमीन से कुछ दूबा तोड़े और मंत्र पढ़ने का नाटक किया। दूबा साले को देकर के कहा कि जा, ताबीज में बंद करके इसे गले में पहन लेना, देखना तुम प्रतिदिन स्वस्थ होते जाओगे और दुश्मन जादूगर समाप्त हो जाएगा। ये पृथ्वी सिंह का एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जेलर का साला ठीक होता गया। उसने पृथ्वी सिंह को रिहा कराने में भारी मदद की।
2: रिहा होने के बाद बाबा पृथ्वी सिंह वर्धा आश्रम में गांधी जी के साथ रहे 1942 से 1947 तक, और आजादी के संघर्ष में काम करते रहे। और आजाद भारत में भी वो 25 बरस तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे।
1: सन 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 5 मार्च 1989 को ये महान क्रांतिकारी देशभक्त दुनिया से कूच कर गया।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी को। कनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आज़ाद हिंद के स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: मैं जानना चाहूँगी कि एक बच्चे, एक एडल्ट और बुज़ुर्ग की डाइट क्या होना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए?
2: अगर हम जनरली देखें तो हर एज कैटेगरी में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे लिए ग्रोथ को प्रमोट करता है। और हम एक थाली की बात करें, जनरलाइज्ड अगर हम किसी एज कैटेगरी की बात नहीं भी करते हैं, तो हमारी थाली का प्रपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि थाली में 50% हमारा वेजिटेबल्स और सैलड होना चाहिए। देन 1/4 हिस्से में हमारी थाली में प्रोटीन होना चाहिए, और बचे हुए हिस्से का हमें बैलेंस करना है हमारे कार्बोहाइड्रेट से और हमारे जो मिनरल्स विटामिंस हैं एंड प्रोबायोटिक्स हमारी थाली में होना चाहिए। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में अगर हम वेजिटेरियंस की डाइट देखें तो उसमें हमारी दालें, एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध के बने हुए सारे प्रोडक्ट्स, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें ये फैट्स में आती हैं, ये भी हमें डेली बेसिस पे लेना है। इसके बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें अंडे, चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के सोर्सेज में आती हैं। और वेजिटेरियंस में दालें, इसके अलावा हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो किसी भी प्रकार की हरी सब्जियां, ये सारी उसमें शामिल होती हैं, सैलड्स में भी। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना हम कलरफुल हमारी प्लेट को रख सकते हैं उतना हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में ज़्यादा जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में दाल, चावल, ये सारी चीज़ें, अनाज, मोटा अनाज, ये सारा कुछ शामिल होता है।
1: अब मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटे अनाज और साधारण अनाज किस तरह से अलग होते हैं और इनके खाने के क्या फ़ायदे हैं, खासकर मोटे अनाज?
2: मोटे अनाज जो हैं ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करते हैं, और साधारण अनाज क्योंकि थोड़ा सा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन्हें हम डायबिटिक्स को भी देना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये खाते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिससे हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है।
1: अच्छा।
2: और मोटे अनाज खाने का ये फ़ायदा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इन्हें रोगी को भी दे सकते हैं, उनसे उनकी हेल्थ और इम्प्रूव होती है, क्योंकि सबसे अच्छा डायबिटीज़ इससे क्योर होती है। दूसरा कि जब हम मोटे अनाज खाते हैं तो हमें स्लो एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है और हमें बार बार भूख नहीं लगती है।
1: अब आप हमें ये बताएं कि मोटे अनाज क्या होते हैं और मोटे अनाज को खाने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही ये भी बताएं कि बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए मोटे अनाज की मात्रा कितनी होना चाहिए।
2: मोटे अनाज में शामिल हैं जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारे जो अनाज हैं ये मोटे अनाज में शामिल होते हैं।
1: जी।
2: इनको खाने की वही मात्रा है 20 से 30 ग्राम बच्चों के लिए, 40 से 50 ग्राम एडोलेसेंट एज के लिए।
1: जी।
2: वैसे ही हम 20-20 ग्राम बढ़ा के इसको खा सकते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए भी मात्रा एडोलेसेंट एज की ही मात्रा के बराबर होती है, क्योंकि बुज़ुर्गों में एज के साथ उनका पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। महिलाओं के लिए भी रागी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उन्हें फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसके वो सप्लीमेंट्स लेती हैं अलग से, तो अगर वो मोटे अनाज शामिल करती हैं जैसे बाजरे की खिचड़ी या रागी का हलवा, ये सारी चीज़ें अगर वो ऐड करती हैं तो उन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और आयरन इनटेक भी उनका कम्प्लीट होगा। वैसे ही छोटे बच्चों को भी हमें मोटा अनाज देना चाहिए जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म एनर्जी मिले, और बच्चे भी जैसे माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में या फिर आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं जिसकी वजह से वो एज से पहले ही काफ़ी वेट गेन कर लेते हैं, या कुछ बच्चे जो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं जिनका एज के साथ उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, स्टंटेड ग्रोथ है, जो अब अभी हमारा न्यूट्रिशन वीक का मोटिव भी है कि माल न्यूट्रिशन को कैसे खत्म करना है। तो ये रेसिपीज बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में मोटे अनाज से रेसिपीज बना के खिलाई जाए, जैसे चीला बना के खिलाया जाए, या फिर जो जंक फूड वो पिज्जा उधर बाहर खा रहे हैं तो हम मूंग की दाल का पिज्जा बना के उन्हें अगर खिलाते हैं, चटनी लगा के आप जो मेयोनीज की जगह उसे, तो ऐसी रेसिपीज अगर हम ऐड करते हैं तो मोटा अनाज हम इंक्लूड कर पाएंगे डाइट में।
3: जो किशोर अवस्था की जो हमारी बच्चियाँ होती हैं, किशोर होती हैं, और उनका मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है या हो चुका होता है, तो बहुत पेनफुल होता है वो, तो उसके लिए ये किस तरह से सहायता करता है मोटा अनाज, और ये कितनी मात्रा में उनको हम दे सकते हैं?
2: मोटे अनाज में खासकर अगर हम रागी की बात करें तो उसे हमें स्टार्टिंग से ही, जब से एक गर्ल का पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो रागी का अगर टेस्ट किसी को डेवलप नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़े ड्राई फ्रूट्स, रागी, गुड़, घी के साथ उसका एक लड्डू बना के रख सकते हैं, जो कि हमें डेली इवनिंग में उस गर्ल को देना चाहिए, जिससे उसका कैल्शियम और आयरन इनटेक पूरा हो। और भी एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है, अगर हम डेली एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ बचपन से अगर लड़की को शाम को खिलाते हैं जिसके पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए, तो उसको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा।
3: अभी जैसे आपने जंक फूड की बात की थी, तो जंक फूड के साथ साथ आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड भी चल रहे हैं और बच्चे ने बहुत पसंद करते हैं, तो ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं?
2: आजकल जंक फूड जो है ये सबको ही पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। पर ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं ये हमारी स्किन को, हेयर को, हमारे स्पेशली गट को खराब कर रहे हैं
3: जी।
2: हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सारी बीमारियों का जड़ जो भी है, सारी बीमारी की उत्पत्ति हमारे पेट से हो रही है। अभी हम जो भी चीज खा रहे हैं वो हमारे पेट पे जाती है, इसके बाद हमारा हेयर फॉल होता है, हमारी स्किन खराब होती है, हमारा पेट भार है, वजन बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, सारी चीजें हमारी पेट से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि जंक फूड थोड़ा बहुत खाना उचित है, हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं। बाकी बच्चे क्योंकि उनकी एज है, वो ये देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को इन्हीं सारी अच्छी चीज़ों से जो घर की है उसी से ही मिक्स एंड मैच करके रेसिपी बना के उन्हें देना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा सा जंक फूड से अवॉइड कर सके।
3: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जंक फूड को हम रिप्लेस किस तरह से कर सकते हैं, और बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, दिन भर में कितनी मात्रा में उसे मिलेट्स लेना चाहिए?
2: दिन भर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, जनरली सभी लोगों के लिए यंग एज से लेके ओल्ड एज तक, कि हमें उसको 30 से 50 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। तो उसमें अगर हम कोशिश करें तो हम अगर हमारी 30 से 50 ग्राम में हमारा 20 ग्राम मिनिमम मिलेट्स हम ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा हैक हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम जो हमारी रोटी बना रहे हैं उसमें अगर हम 20-30% उसमें मिलेट का आटा मिक्स करते हैं हमारे गेहूं के आटे में, तो एक छोटा सा है कि हम मिलेट्स डेली बेसिस पे ऐड कर पाएंगे।
3: क्योंकि मोटा अनाज जो होता है, जो साधारण अनाज है, खाने की हैबिट है हम लोगों की, तो रिप्लेस इतने जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे कर सकते हैं हम।
2: इसीलिए मैंने आपको यही बताया कि क्योंकि अभी हमें रोटी और चावल खाने की आदत है, गेहूं की रोटी हमारे सभी के घर में स्टेपल डाइट है, तो हमारी स्टेपल डाइट को एकदम मिलेट से रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत टफ है। तो हम धीरे धीरे उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम गेहूं के आटे में मिलेट का आटा ऐड करना स्टार्ट करें, हम जो चावल की खिचड़ी बनाते हैं उसमें हम एक मेजर पोर्शन बाजरा या फिर ज्वार ऐड करना स्टार्ट करें, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके उसको रिप्लेस कर पाएंगे।
3: बहुत अच्छी बात बताई, और साथ ही ये जानना चाहूंगी कि आपने खाने के बारे में तो बताया, अब पानी के विषय में और बताएं कि पानी दिन भर में कितना पीना चाहिए?
2: पानी वैसे तो हम कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए जी, बट ये डिपेंड करता है कि किसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और वो किस एज कैटेगरी में भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो मेजरली 8 ग्लास तो मिनिमम पीना ही चाहिए, अगर कोई जिम वर्कआउट करता है या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, फिर क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। अगर वो थोड़े शुष्क एरिया में रह रहा है तो फिर भी उसको 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए।
3: और आजकल ये ठंडा गर्म पानी का भी चल रहा है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, तो ये कितना उचित है?
2: गर्म पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। गर्म पानी हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, अच्छे से हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है, तो उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना अच्छा है।
3: दिन भर यदि गर्म पानी पिया जाए तो?
2: दिन भर गर्म पानी पीना ठीक नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे भोपाल में हम अभी हैं, तो भोपाल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। फिर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की तासीर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीते रहो दिन भर तो वज़न कम होता है, ऐसा नहीं होता। अगर किसी की तासीर गर्म है और वो दिन भर गर्म पानी पीता है तो ये उसको नुकसान करेगा।
3: जो लोग घर में रहते हैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन दोनों ही लोगों की डाइट में क्या अंतर होना चाहिए?
2: जो लोग एक्सरसाइज करते हैं
3: जी
2: और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनके डाइट में सबसे बड़ा रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का
3: जी,
2: क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है
3: जी।
2: तो हमें सबसे मेजर इस पे ध्यान देना है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना होना चाहिए। पहले हम डिस्कस करते हैं जो इंसान वर्कआउट नहीं करता, जो एक्सरसाइज नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ दिन भर अपने घर पे बच्चों पे ध्यान देती हैं, अपने हस्बैंड पे ध्यान देती हैं, घर का काम करती हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? हम ज़्यादातर 3 बार खाना खाते हैं
3: जी,
2: तो हमारा नाश्ता हमें मेजरली अंकुरित रखना चाहिए। हम उसमें मूंग की दाल का चीला ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमें उससे प्रोटीन मिले। कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कोई अंडे की रेसिपीज ऐड कर सकता है उसमें जिससे उसे प्रोटीन इनटेक मिले। लंच टाइम में, लंच के और नाश्ते के बीच में हम एक प्लेट सैलेड या फिर एक प्लेट फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इस बीच में आप एक ग्लास छाछ भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल जाए। लंच के टाइम पे जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी थाली कैसी दिखनी चाहिए लंच में, कि हमारी आधी थाली में हमारी सब्जी और सैलेड होना चाहिए, बचे हुए आधी थाली का 1/3 हिस्से में हमारा एक कटोरी दही हो सकता है जिसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप उसमें अलसी डाल सकते हैं, आप उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं अच्छे फाइबर इनटेक के लिए। बचे हुए सेकेंड हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए जिसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम साधारण अनाज और हमारे मोटे अनाज को, मतलब गेहूं चावल और मिलेट्स को मिक्स कर पाए। और एक बचे हुए हिस्से में आपकी जो भी सब्जी है, छोले हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए छोले राजमा ये भी एक प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन है। एंड डिनर हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सोने के कम से कम 3 से 4 घंटे के पहले कर पाएं और जितना हल्का हो सके उतना हल्का ले पाएं। तो हम मोटे अनाज की खिचड़ियां ले सकते हैं, चीले भी ले सकते हैं। और हफ्ते में 1-2 दिन जैसी हमारी दिनचर्या है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन हम अनाज स्किप भी करें रात को
3: जी।
2: जैसे उसमें हम ले सकते हैं कि हम वेजिटेबल सूप बना लें, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन के लिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग या फिर मीट ले ले, और वेजिटेरियन है तो पनीर या टोफू ऐड कर सकता है वो अपने सूप के साथ।
3: मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्या सभी को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए?
2: बिल्कुल सभी को अपनी एज के हिसाब से और अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों को हम देखते हैं स्कूल में स्पोर्ट्स होता है उनका, वो बाहर खेलने जाते हैं, ये उनके लिए एक्सरसाइज है
3: जी।
2: उनसे थोड़े बड़े बच्चों की बात करें क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो उन्हें जब भी समय मिलता है वो आधे घंटे की वॉक कर सकते हैं। जैसे जो 10th 12th वाला जो पीरियड होता है जिसमें बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वो पढ़ते पढ़ते वॉक कर सकते हैं, रात को अगर वो पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो पेरेंट्स के साथ ही वॉक पे चले गए, थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया, ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐड करने से उनका ब्रेन और शार्प होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज करती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो हमारा स्ट्रेस को कम करता है, हमारे ग्रोथ हॉर्मोन को इनक्रीज करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है। वैसे अगर हम देखें कि हाउसवाइफ्स को तो अगर वो घर से नहीं निकल पाती हैं या वो सुबह वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, से काफ़ी महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह मैं लंच बनाने में बिजी हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो वो शाम के टाइम पे कोई वीडियो लगा के डांस कर सकती हैं, एरोबिक्स कर सकती हैं, जो भी उन्हें पसंद है वो कोई एक फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम हाफ एन आवर की तो ऐड करना ही चाहिए। बाकी जो लोग जिम जा सकते हैं उन्हें जिम जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा कोई वर्कआउट नहीं है, स्पेशली फीमेल्स को अगर वो वक्त निकाल सकती हैं तो उन्हें जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए।
3: मैडम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन चलते चलते मैं आपसे यही एक बात दिमाग में आ रही कि आजकल बहुत से लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं, सप्लीमेंट लेना कितना उचित है, इसके विषय में कुछ बताएं।
2: सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल ठीक है अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, और फिर सप्लीमेंट्स की कुछ कैटेगरीज भी हैं, जैसे पहली कैटेगरी है प्रोटीन्स।
3: जी जी,
2: तो वे प्रोटीन आपने सुना होगा, वैसी प्लांट प्रोटीन्स भी आते हैं आजकल मार्केट में, अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं, ऑथेंटिकेटेड है, और आप डेली रिक्वायरमेंट अपनी नेचुरल फूड से जब आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, किसी दिन आप बिजी हैं, आपके घर में वो फूड ग्रुप नहीं बना है जिसमें प्रोटीन इनटेक है, तो आप अपनी बॉडी को एक स्कूप वे प्रोटीन दे सकते हैं। हमें डेली भी उसकी आदत नहीं डालनी है। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि आपने अपनी बॉडी को एक सप्लीमेंट किया है, एक रिप्लेसमेंट दिया है नेचुरल फूड ग्रुप का, बट ये हमारी लाइफ में पूरी तरीके से हमेशा कभी भी नेचुरल फूड ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरीज आती है जो टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिंस की, ओमेगा 3 की, और वैरायटीज ऑफ विटामिंस की आती है, विटामिन सी डी, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, तो ये सारे सप्लीमेंट्स लेना ठीक है। और जो आपका कंसर्न है ये पूछने का कि इनसे लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है, जो सप्लीमेंट जैसे स्टेरॉइड्स लेना या लो क्वालिटी के प्रोटीन इंटेक लेना, या फिर पूरी तरीके से ही कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो नेचुरली नहीं लेके सिर्फ दिन भर वो ये सप्लीमेंट से ही अपना पूरा प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सिर्फ मील रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं कि आप खाना ना खा के सिर्फ सप्लीमेंट ले, तो ऐसा फॉलो करना ठीक नहीं है। हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली ही हमारा डाइट में प्रोटीन और सारे मल्टीविटामिन्स वहीं से पूरे करें। किसी दिन नहीं होता है तो उसको लेना भी कोई बुरा नहीं है।
3: बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की उसका फायदा हमारे श्रोता अवश्य उठाएंगे। मैडम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस विषय पर आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।
3: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी पोषण आहार विशेषज्ञ कनक भट्ट जी। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र दीप्ति। अब हमारी पूरी टीम को दे अनुमति, सुनते रहें 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद लंदन से न्यूयॉर्क आए। वहां उनका व्याख्यान, शिक्षा और पुस्तक रचना का कार्य शुरू हुआ। उनके व्याख्यान से सर्वत्र एक महान उत्साह की सृष्टि होती थी, जिसका वर्णन करते हुए न्यूयॉर्क के सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपने 19 जनवरी 1896 के अंक में लिखा था।
1: आज के न्यूयॉर्क के समाज में स्वामी विवेकानंद नाम के किसी स्वामी ने जन मंडली को मुग्ध कर रखा है, और इन लोगों में धन एवं विद्वता का अभाव हो ऐसी बात नहीं। ये नाम है भारत से आए मटमैले रंग के एक सज्जन का, जो पिछले वर्ष भर से इस महानगरी में प्राच्य धर्म, दर्शन तथा साधना के कुछ रूपों का प्रचार करते हुए यशोकीर्ति की उपलब्धि करते रहे हैं। पिछली सर्दियों में 5th Avenue के एक प्रमुख होटल के स्वागत कक्ष में उनके भाषण होते रहे। स्वयं तथा अपनी विषय वस्तु के प्रति उच्चतर समाज की काफी स्वीकृति पा लेने के बाद अब वे सर्वसाधारण में प्रचार करने को उत्सुक हैं, और इसी उद्देश्य से हार्डमन हॉल में प्रति रविवार को निःशुल्क एक व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रयास काफी सफल रहा है।
2: स्वामी जी की कक्षाओं तथा व्याख्यानों की जो प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध हैं, उनके लिए हम मुख्यतः गुडविन के ही ऋणी हैं। परंतु उस काल के व्याख्यानों का जो धारावाहिक लेखमाला ब्रह्मवादीन पत्रिका के 8 अंकों में प्रकाशित हुआ था, उसका कुछ अंश स्वामी जी ने स्वयं लिखकर भेजा था। कृपानंद ने उनका टंकन किया। इसके लिए कृपानंद ने श्रीमती बुल से आर्थिक सहायता लेकर $5 मासिक भाड़े पर एक टाइपराइटर ले लिया था।
0: कृपानंद ने ब्रह्मवादीन पत्रिका में लिखा था,
3: उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहने वालों की सर्वदा बढ़ती हुई संख्या तथा उनके रविवारीय सार्वजनिक व्याख्यानों में आने वाली श्रोताओं की भारी भीड़ इस बात का सूचक है कि उनके उपदेशों ने लोगों के मन में कैसा व्यापक आग्रह पैदा कर दिया है। इसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण ये है कि वेदांत संबंधी साहित्य की मांग बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे लोगों के मुख से संस्कृत शब्द उच्चारित हो रहे हैं जहाँ से हम उन्हें सुनने की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष तथा इसी प्रकार के अन्य शब्द अमेरिकी भाषा में अपना लिए गए, और शंकराचार्य एवं रामानुज के नाम बहुतों के लिए हक्सले तथा स्पेंसर के समान ही सुपरिचित हो चले हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत संबंधी पुस्तकों के पीछे दौड़ रहे हैं। मैक्स मुलर, कोलब्रुक, डायसन, बनोफ तथा हिंदी दर्शन पर अंग्रेजी में लिखने वाले सभी लेखकों की किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं।
0: उन्हीं दिनों डॉक्टर स्ट्रीट ने स्वामी जी से संन्यास लिया। वे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समाज में सुपरिचित थे, इसीलिए चारों ओर खलबली मच गई। पत्र पत्रिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर संवाद छपने लगे। एक ने लिखा था,
1: जो लोग स्वामी विवेकानंद के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, उन लोगों के जीवन में कल्याण साधन करने की स्वामी जी में असीम क्षमता है। ये घटना इसी बात का प्रमाण है, पहले जो लोग दूर से ही स्वामी जी को केवल प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे, अब उनमें से भी कोई कोई उनके अनुरागी भक्त हो गए हैं, और दीक्षा तथा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करने लगे हैं। 20 फरवरी को इनमें से अनेक लोगों को स्वामी जी से मंत्र दीक्षा मिली। अमेरिकी जनसाधारण का इन दिनों स्वामी जी के साथ बड़ा अपनत्व हो गया है।
0: इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कृपानंद ने विनोद पूर्ण शैली में लिखा था,
3: भारत को चाहिए कि वह स्वामी जी पर अपने स्वामित्व का दावा अभी स्पष्ट कर ले। यहां के लोग अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विश्वकोश के लिए उनकी जीवनी लिखकर उन्हें अमेरिकी नागरिक का दर्जा प्रदान करने ही वाले हैं। जैसे होमर का जन्मस्थान होने का सम्मान पाने के लिए 7 नगरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, वैसे ही संभव है भविष्य में 7 देश हमारे आचार्य देव पर अपनत्व का दावा करें और इस प्रकार भारत को अपने एक सर्वश्रेष्ठ संतान की जननी होने के गौरव से वंचित कर दें।
0: सिर्फ 1-2 नहीं, अनेकों अमेरिकी वासियों ने स्वामी जी के बारे में, उनके व्याख्यानों और भाषणों के बारे में संवाद पत्रों, पत्र पत्रिकाओं या संस्मरणों में लिखा था। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवियत्री श्रीमती एमा हवीलर विलकॉक्सी भी उनमें से एक थीं। स्वामी जी से मुलाकात के बारे में याद करके उन्होंने लिखा था,
4: एक वर्ष पूर्व एक दिन शाम को मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र एक ब्लॉक की दूरी पर भारत से आए दर्शन के प्रचारक एक विवेकानंद नामक व्यक्ति का भाषण होगा। कौतूहलवश हम यानी मैं और मेरे पति भी वहां गए और श्रोताओं के बीच बैठकर भाषण सुनते हमें 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को एक अत्यंत सूक्ष्म सजीव तथा अद्भुत जगत में उन्नीत महसूस किया और हम लोग व्याख्यान के अंत तक प्रायः सांस रोके मंत्रमुग्ध से बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर हम नए साहस, नई आशा, नए बल, नए विश्वास के साथ दैनंदिन जीवन में लौट गए। मेरे पति बोले, ईश्वर और जीवन के बारे में यही धारणा तो मैं ढूंढता फिर रहा था और इसके बाद महीनों तक वे मुझे साथ लेकर स्वामी विवेकानंद के मुख से प्राचीन धर्म की व्याख्या सुनने और उनके अद्भुत मन से निस्तृत सत्य तथा आशाप्रद एवं शक्तिदायी विचारों का संग्रह करने जाते रहे।
2: उन दिनों अमेरिकी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हवीलर उन भयंकर दिनों को याद करके लिखती हैं।
4: वे उस महान आर्थिक संकट के भयंकर जाड़ों के दिन थे जब बैंक फेल हो चुके थे, कंपनियों के शेयर फटे गुब्बारों के समान नीचे उतर रहे थे, व्यापारी लोग निराशा की अंधेरी घाटी से होकर गुजर रहे थे और पूरी दुनिया ही उलट पलट गई सी प्रतीत हो रही थी। कभी कभी चिंता और अनिद्रा में कई रातें बिताने के पश्चात पतिदेव मुझे साथ लेकर स्वामी जी का व्याख्यान सुनने जाते और फिर बाहर निकलकर जाड़े की अंधियारी रात में सड़क पर चलते हुए मुस्कुराहट के साथ कहते,
5: स्वामी जी बोल रहे थे ना कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे बड़ी शांति मिली, मेरा अशांत मन शांत हो गया है, अब कल से मैं अपनी सामान्य दिनचर्या कायम कर सकूंगा, अब मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। उस व्यक्ति में गजब का हीलिंग पावर यानी उपचार करने की शक्ति है, लोगों को अवसाद से, मानसिक तनाव से पल भर में उबार कर आनंद के द्वार पर खड़ा कर देते हैं।
2: हवीलर दंपत्ति सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इस अद्भुत धर्म का अध्ययन करना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन के वे कायल हो गए। बाद में उन्होंने लिखा,
4: विवेकानंद हमारे बीच में एक संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें किसी नए विश्वास में रूपांतरित करने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने ही विश्वास में प्रतिष्ठित रहो। मैं मेथोडिस्ट को एक बेहतर मेथोडिस्ट, प्रेसिबिटेरियन को एक बेहतर प्रेसिबिटेरियन और यूनिटेरियन को एक बेहतर यूनिटेरियन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने व्यवसायी को बल दिया, चंचल स्वभाव की सामाजिक महिला को थोड़ा रुक कर सोचने को मजबूर किया, कलाकार को नई प्रेरणा दी और पत्नी एवं माता, पति एवं पिता के प्रति लोगों में एक बेहतर एवं पवित्रतर कर्तव्य बोध का संचार।

0: दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। बड़े दिन यानी क्रिसमस के उपलक्ष में श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी आमंत्रण स्वीकार कर बोस्टन गए। वहां कैम्ब्रिज की महिलाओं द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने भारतीय नारी जाति का आदर्श विषय पर एक सुंदर व्याख्यान दिया। वहां की महिलाएं इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने स्वामी जी को बिना बताए कलकत्ते में उनकी माँ को धन्यवाद देकर पत्र लिखने का विचार किया। बालक ईसा और मैरी माता के एक चित्र के साथ उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा।
1: जगत के कल्याण की जननी, मेरी माता के दान स्वरूप ईसा मसीह के आविर्भाव का दिन हम आज उत्सव के आनंद में बिता रही है। अपने बीच में आपके पुत्र को पाकर आज हम आपका श्रद्धा के साथ अभिवादन कर रही हैं। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से भारत में मातृत्व के आदर्श के संबंध में भाषण देकर उन्होंने हमारे नर नारी और बच्चों का महान उपकार किया है। उनकी मातृ पूजा श्रोताओं के हृदय में शक्ति व उन्नति की उच्चाकांक्षा जगा देती है। आपकी संतान में आपके जीवन व कार्य का जो प्रभाव प्रकट हुआ है उसकी सम्यक रूप से उपलब्धि करती हुई हम आपकी सेवा में अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट कर रही है। भ्रातृत्व व एकता के जो नियंता है उस ईश्वर का मंगल आशीर्वाद समग्र पृथ्वी पर फैल जाए। हृदय में इस आकांक्षा को लेकर आपका जीता जागता आदर्श उन्हें कार्य क्षेत्र में सदा अनुप्राणित करें, यही हमारी दुआ है। इस बात के साथ ही हमारी कृतज्ञता आप स्वीकार करें।
2: बोस्टन से डिट्रॉइट होकर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौट आए। वहां उन्होंने वेदांत चर्चा और योग की शिक्षा के लिए एक स्थायी केंद्र बनाने का निश्चय किया।
0: इधर इंग्लैंड से बार बार निमंत्रण आने लगा। ये पहले से ही निश्चित था कि स्वामी जी इंग्लैंड से भारत लौटेंगे। तदनुसार शिष्य व भक्तों के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने स्थायी रूप से न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। प्रसिद्ध धनी श्री फ्रांसिस एच लेगेट महोदय गुरुदेव की सम्मति व इच्छा के अनुसार इस सोसाइटी के सभापति बने। भगिनी हरिदासी को स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर योग शिक्षिका नियुक्त किया। स्वामी कृपानंद, अभयनंद, योगानंद तथा कुछ ब्रह्मचारी प्रचारक नियुक्त हुए।
2: असाधारण दानशील कुमारी मैरी फिलिप, आर्थर स्मिथ, श्री व श्रीमती वाल्टर गुडायर तथा प्रसिद्ध गायिका कुमारी एमा थर्सबी आदि न्यूयॉर्क के नामी शिष्य व शिष्याएं उत्साह से समिति का कार्य चलाने लगे। शिष्य वर्ग की सम्मति व अनुरोध से स्वामी जी ने अपने गुरु भाई सारदानंद जी को शीघ्र इंग्लैंड की ओर यात्रा करने के लिए पत्र लिखा। इंग्लैंड से इस स्वामी को न्यूयॉर्क में भेजने का वचन देकर स्वामी जी ने 15 अप्रैल सन 1896 ईस्वी को फिर से लंदन की ओर प्रस्थान किया।
0: सन 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वे रीडिंग में स्थित स्टर्डी के मकान पर गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को लिखा।
3: यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। समुद्र पीड़ा से बचने के लिए मैंने स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर ली थी। आयरलैंड के बीच से होकर तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों को देखते हुए मैं एक चक्कर लगाया और अब पुनः रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा आदि के बीच हूं। दूसरे सन्यासी भी यहां हैं। इस समय हम लोग ग्रंथों के संपादन में लगे हुए हैं। रास्ते में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। यात्रा मेरे जीवन के समान ही अत्यंत नीरस, एक रस तथा गद्यमय रही। जब मैं अमेरिका के बाहर जाता हूं तभी उसके प्रति अधिक प्रेम उमड़ता है। जो भी हो, जीवन का अब तक जितना अंश बीता है उसमें वहां बीते कुछ वर्ष ही सर्वोत्तम रहे हैं।
0: अमेरिका से आचार्य देव का पत्र पाकर स्वामी सारदानंद बिना विलंब इंग्लैंड में उपस्थित हो गए थे और अप्रैल मास के प्रारंभ से स्टर्डी साहब के अतिथि के रूप में निवास करते हुए पूर्व स्थापित आलोचना समिति में धर्म का उपदेश दे रहे थे। स्वामी जी अप्रत्याशित रूप से उन्हें स्टडी साहब के मकान पर देख आनंद विभोर हो उठे। कहना ना होगा कि शारदानंद जी भी बहुत समय से लापता नरेंद्रनाथ को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। आचार्य देव उत्सुकता से आलम बाजार मठ व दूसरे श्री रामकृष्ण भक्तों का कुशल समाचार जानकर निश्चिंत हुए।
2: शारदानंद और स्वामी जी ने लंदन के सेंट जॉर्ज लेन में कुमारी मुलर व श्री स्टर्डी के अतिथि के रूप में रहते हुए पूर्ण उद्यम व उत्साह से प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद के फिर वापस आ जाने का शुभ समाचार सुनते ही सैकड़ों स्त्री पुरुष उनका दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने के लिए आने लगे। समाचार पत्रों में उनके कार्य प्रणाली की विस्तृत खबरें प्रकाशित होने लगी। मई मास के प्रारंभ से स्वामी जी नियमित रूप से शिक्षा दान व प्रश्नोत्तर कक्षाओं को चलाने लगे और ज्ञान योग पर भाषण देने लगे। मई महीने के बाद में उन्होंने भक्ति कर्म और योग के संबंध में कुछ उत्कृष्ट भाषण दिए। क्लब सभा समिति ड्राइंग रूम इत्यादि में भाषण देने के लिए वे प्रतिदिन बुलाए जाने लगे। श्रीमती एन ए बेसेंट द्वारा आमंत्रित होकर स्वामी जी ने उनके एवेन्यू रोड स्थित भवन में भक्ति पर भाषण दिया।
0: श्रीमती मार्टिन नाम की एक धनी महिला ने अगले दिन स्वामी जी को अपने घर पर भाषण देने के लिए बुलाया। उन्होंने वहां आत्मा के संबंध में भारतीयों की धारणा विषय पर एक भाषण दिया। 14 जून के द लंडन अमेरिकन नामक संवाद पत्र में छपा था,
4: स्वामी जी ने हिंदू धर्म को केवल जड़ या अंध पौतलिकता के अपवाद से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एक उन्नत व समुज्वल भाव में प्रतिष्ठित कर दिया है कि उसके प्रति मानव जाति की श्रद्धा हुए बिना नहीं रह सकती। बुधवार के दिन बारिश होते हुए भी काफी संख्या में भद्र पुरुष व महिलाएं श्रीमती मार्टिन का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई थी। यहाँ तक कि राज परिवार के भी कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से इस सभा में उपस्थित थे।
2: उन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक स्मरणीय घटना घटी, वो है विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात होना।
0: विशेष रूप से आमंत्रित होकर स्वामी जी ने ऑक्सफोर्ड में जाकर 28 मई को विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।